प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: बुधवार 20 मई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का।
1: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमहरा से। नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार राधा। मुश्रस में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की जा रही है। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मुश्रस ने एक रिपोर्ट आम की। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के इस 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मॉरिशनों को काम मिला है। कल राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी

0: इतनी कमज़ोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपए थे। कई हफ्तों से एमोरस के सीईओ ने राष्ट्रीय विमान कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए ही है। लिंक्डइन पर उन्होंने एमोरस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंज स्ट्रैटेजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंदियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। विदेश में भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। जगह जगह लोगों को इसे बर्दाश्त करने के तरीके तलाशे हुए देखे जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: आम हालत तक हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह सवेरे कुछ बारिश होगी और बाद में मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद कुछ बादल घिराएंगे उत्तर और पश्चिम में और रह रहकर बारिश भी होगी। आज रात के दौरान ऊंचे इलाकों में वर्षा होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दिन के दौरान समुद्र की हालत बेहतर होगी लेकिन आज सुबह दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 24 से 26, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:39 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius, Radio Mauritius.
3: घोर की बेला, ताज की भरी शुरुआत।
4: एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। रेडियो मॉरिशस पर भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर बुधवार 20 मई घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:04 हो चुके हैं। सुमिता की ओर से प्रणाम स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया दिन निकल चुका है तो चलिए नई उम्मीदों, नई आशाओं के साथ इस दिन का आरंभ करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है तो सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, जहाँ तक हो सके असहायों की मदद कीजिए, जहाँ तक हो सके एक दूसरे का साथ दीजिए। ज़िंदगी यही है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और ज़िंदगी के हर पल को जीना मत भूलिए। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ आज के इस भोर की बेला प्रोग्राम को हम आरंभ कर रहे हैं। मन में यही कामना लिए कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। बता दें कि कुछ क्षणों में हम बढ़ने वाले हैं कार्यक्रम सनातन धारा की ओर। उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आपके लिए हम चलाएंगे। 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार एमबीसी रेडियो पर। तो आज है बुधवार और बुधवार की इस भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम से। सनातन धारा मंदिर परिषद, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।
5: मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम सनातन धारा, जहां धर्म एवं संस्कृति का संगम होता है। सनातन धारा

पिबत भागवतम रसमालयम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय विनम्रता, एक ऐश्वर्य गुण। विनम्रता एक ऐश्वर्य गुण है, विनम्रता परमात्मा गुण है। परमात्मा तो अनंत गुणों का सागर है, उसके गुणों की न कोई गिनती है न सीमा। फिर भी जो संत महात्मा उसका साक्षात्कार कर चुके हैं, उन्होंने उसके गुणों का बखान अपनी अपनी शैली में किया ही है। दया, क्षमा, करुणा, ज्ञान, प्रेम, चैतन्य, आनंद आदि उसके ऐसे गुण हैं जिनकी चर्चा हम सब सदा से सुनते आए हैं, परंतु उसका एक ऐसा भी गुण है जो अपेक्षाकृत कर्म चर्चित है। वह गुण है नम्रत्व। नम्रत्व जिससे हम प्रचलित भाषा में विनम्रता कहते हैं। विनम्रता का तात्पर्य है अहंकार, अभिमान, घमंड करने जैसे गुण अपने पास होते हुए भी अहंकार का न होना। दूसरे शब्दों में अपने गुण, प्रभाव, संयोग्यता, सामर्थ्य आदि के प्रति विस्मृत सा रहना। व्यवहार में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना उच्च पद स्तर या प्रभावशाली होता है, उस तक पहुंचना या उसे अपनी फरियाद सुनाना उतना ही कठिन होता है। परंतु आश्चर्य देखिए कि जो करतूत अकर्तूत अन्यथा करतूत समर्थ है, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, उस परमात्मा को तुच्छ से तुच्छ जीव भी अपनी पुकार सुना सकता है, और वह भी उस तुच्छ जीव के पुकार न केवल सुनता है अपितु उसकी सहायकता के लिए दौड़ा चला आता है। वह कहानी तो व्याख्यात ही है कि छोटे छोटे पक्षियों का एक जोड़ा एक घोंसले में रहता था। एक दिन एक शिकारी आया और उसने उनके घोंसले पर बाण साधना किया। भयभीत पक्षी घोंसले से बाहर भी नहीं उड़ सकते थे, क्योंकि वह उनका चीर शत्रु बाज बैठा था। असहाय पक्षी प्राण रक्षा के लिए प्रभु को पुकारने लगे। उनकी आर्त पुकार प्रभु ने सुन ली और तत्काल विश्लेष सर्प, जो विषैले सर्प है, के रूप में आकर के शिकारी के पांव में डस दिया। शिकारी डगमगा गया, निशान चूक गया।

कान घोंसले पर न लगकर बाज को जा लगा। एक साथ दोनों शत्रु ढेर पक्षियों को मिला जीवन दान। इतना महान परमात्मा अपनी सारी महानता बुलाकर दो नगण्य से जीवों की रक्षा के लिए पहुंच जाता है। यही तो है उसकी विनम्रता। इसीलिए कहते हैं, भगवान का स्तुति करते समय अगर विनम्र हो करके, नम्र हो करके पुकारेंगे तो भगवान श्रवण करता है, आपके सहायता करता है, आपके मनोइच्छित फल प्राप्त करता है। इसीलिए कहते हैं, भगवान का स्तुति ही सर्व परोपरि है। न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भ्राता, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। प्रभु ऐसे बस जाओ मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे न मुझको तुझ में। इसलिए भगवान को मन में बैठाना, और भगवान किस प्रकार से मन में बैठता है, विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भावना के साथ। अगर आप भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आप में ही बैठ जाता है, आपके सहायता के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए, आपके मन को पवित्र करने के लिए करता है। परमात्मा स्वयं विनम्र है और उसे विनम्रता अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है, संसारिक जीवन चरित्र में श्री राम जब लक्ष्मण जी के सहारा करते हैं तब लक्ष्मण जी इसका सारा श्रेय प्रभु को देते हैं। लक्ष्मण जी के यह विनम्रता प्रभु को भा जाती है। लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी सभी सूरवीर, पराक्रमी, अपराज्य, परंतु सभी में विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई। तभी तो सब प्रभु के हृदय में स्थान पा सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं अर्जुन के सारथी थे। उनके साथ उन्होंने उनकी कृपा से पांडवों की विजय सुनिश्चित थी। परंतु युद्ध में विजय के लिए भगवान ने अर्जुन को रणचंडी माँ दुर्गा की आराधना करने का उपदेश दिया। अर्जुन की आराधना से प्रसन्न होकर के जब माता प्रकट हुई तब उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, स्वल्पेनैव तु कालेन शत्रुं जयसि पांडव, नरसस्त्वमसि दुर्भयं नारायण सहायवान। अर्जुन, तुम स्वयं दुर्दर्श योद्धा हो और उस पर तुम्हें नारायण श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त है, अतः कुछ ही समय में तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। अर्थात भगवान विजय का निमित्त माँ दुर्गा की कृपा को बता रहे हैं और माँ विजय का निमित्त नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण को बता रही है। भगवान हो या भगवती, दोनों ही परमात्मा स्वरूप है और दोनों ही विजय का श्रेय स्वयं न लेकर एक दूसरे को दे रहे हैं। यह है विनम्रता। इस प्रकार लंका के युद्ध से पहले महर्षि अगस्त्य प्रभु श्री राम को सूर्य की आराधना कर उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। तब प्रभु यह नहीं कहते कि मैं तो स्वयं ही परमात्मा हूं,

0: मेरा तो अवतार ही रावण का वध करने के लिए हुआ है, मुझे किसी के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है। वे तत्काल ऋषि वर्य की आज्ञा शिरोधार पर आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा सूर्य की आराधना करती हैं। इस प्रकार परमात्मा अपने चरित्र से सदा विनम्रता की ही शिक्षा दी है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसके कारण हम जीवित कहलाते हैं, वह आत्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण विनम्रता ही नहीं, उन सभी गुणों का धारक है। जो गुण परमात्मा में है, अंतर इतना ही है कि मन बुद्धि अहंकार के आवरणों के कारण उनका प्रागट्य नहीं हो रहा है। स्मरण रहे, सभी सद्गुणों का प्रागट्य सत्व प्रधान बुद्धि की विद्यमानता में ही होता है। राजस तामस बुद्धि में अधिकतर दुर्गुण का ही पोषण होता है। विनम्र व्यक्ति सभी को प्रिय होता है, यहाँ तक कि अहंकारी और घमंडी व्यक्ति भी विनम्र व्यक्तियों का साथ ही अधिक पसंद करते हैं। विनम्र व्यक्ति को सभी की सद्भावनाएं प्राप्त होती है। उस पर कभी बुरा समय आ जाए तो सभी को दुख होता है और सब उसके प्रति हृदयपूर्ण शुभकामनाएं और सहायता करते हैं। विनम्र व्यक्ति को मनुष्य का ही नहीं, पितरों का, देवताओं का, सिद्धियों का और गुरुओं का, प्रति का, परमात्मा का, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, ऐसा वचन कहा है कि किस प्रकार से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा।

0: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: 6:20 हो रहे हैं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी मोताबा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। विलाज दे मोताबा, मोताबा के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 20 मई को सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।
2: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
0: कहते हैं हमारे जीवन में शुरुआत का बड़ा ही महत्व है। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत में हम पूजा प्रार्थना करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं,

सकारात्मक विचार रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक और शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे आचरण भी अच्छे होने चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसलिए जिस भी अच्छे कार्य को हम करने का सोच रहे हैं, करने वाले हैं, उससे पहले हमें मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि मन के भीतर अगर सब कुछ अच्छा होता है तो आसपास भी सब कुछ अच्छा होने लगता है, और जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई तो वास कर ही नहीं सकती। तो बस मन में अच्छे विचार रखिए, अच्छे विचारों से अच्छे कर्म होते हैं, और अच्छे कर्मों से जीवन में अच्छे फल मिलते हैं, और जब जीवन में अच्छे फल मिलते हैं तो जीवन जो है अच्छाई की ओर आगे बढ़ते रहता है, और जीवन में जो भी कुछ हम चाहते हैं फिर वो प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने जीवन से चाहते क्या है। हम अपने जीवन में ही कभी कभार बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ऐसे भी चाहिए, हमें वैसे भी चाहिए। ऐसे में तो हम एक चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना, एक समय में एक ही बात को सोचें, एक समय में एक ही बात को करें, तब उस बात को हम पूरी तरह 100% अपनी श्रद्धा और निष्ठा से पूरा कर पाएंगे, और समय का सही उपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ते। क्योंकि समय का यदि हम सम्मान नहीं करेंगे तो आगे चल के समय भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो चलिए, भोर की बेला इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और सवेरे से आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। 7 बजे के बाद डेडिकेशंस में हम आपके मैसेजेस को ज़रूर शामिल करेंगे। एक बार फिर से नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये नया दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, नए अवसर लेकर आए, नई चुनौतियों के साथ साथ उन चुनौतियों को सामना करने की शक्ति भी ईश्वर आपको प्रदान करें। क्योंकि जब जीवन में चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस को सामना करने का साहस होना बहुत आवश्यक होता है, वरना फिर हम जीवन में कहीं पीछे न रह जाए। तो चलिए इसी के साथ इस गाने की ओर बढ़ते हैं, समय बड़ा बलवान, नितिन मुकेश जी की आवाज़ में। इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 6:30 बजे के पूरे समाचार की ओर। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार और आदाब, सुबह 6:30 बजे हैं।

पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मुर्शिद में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने रिपोर्ट आम की। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए, जो 48 बिलियन रुपए थे। कल राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस पर ये जानकारियां दी। 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज। एयरमोर्शस की सीईओ ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंडियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। और भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। नमस्कार। राधा। मुर्शिद में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की।

0: जा रही हैं। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने रिपोर्ट आम की आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मॉरिशनों को काम मिला है। अंजलि से रतन फुलचन, यचना मिश्रा।
1: मॉरिशस में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9,92,500 लोग हैं। इनमें से 5,87,200 लोग आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, यानी श्रम बल भागीदारी दर 59.2% है। देश में 33,500 बेरोजगार दर्ज किए गए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, 19,400 महिलाएं और 14,100 पुरुष। 16 से 24 वर्ष के आयु अकेले 11,700 बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, खासकर उद्योग और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारी सबसे अधिक काम करते हैं, औसतन 41.3 घंटे प्रति सप्ताह। तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, विशेष रूप से होलसेल और रिटेल व्यापार, रेस्टोरेंट और परिवहन सबसे अधिक आय वाला क्षेत्र है, जहां औसत मासिक आय 38,400 रुपये है। वेतन के संदर्भ में औसत मासिक आय 37,200 रुपये है, पुरुषों की औसत आय 40,600 रुपये है, जबकि महिलाओं की 33,100 रुपये।
0: राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दीं। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरी वजहों से इतनी बढ़ी है। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए, जो 48 बिलियन रुपये दर्ज हुए थे। लुवीना सूफी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: 2024 में मॉरिशस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI निराशाजनक रहा, जो 33 बिलियन रुपए तक पहुंचा और 2023 की तुलना में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि 2025 में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई, जिसे मुख्य रूप से ब्रिटिश बैंक एक्सिस द्वारा अफ्रेशा बैंक में बड़ी हिस्सेदारी लेने से बढ़ावा मिला। सरकार अब गुड़गांव में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और निवेश आकर्षित करने के लिए नए गोल्डन वीजा ढांचे पर दाव लगा रही है। दूसरी ओर 2014 से 2024 के बीच 4 स्थानीय बैंकों, सिल्वर बैंक, SBM, डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस और मोबैंक की बैलेंस शीट से लगभग 25 बिलियन रुपए गायब होने की बात सामने आई है। ये स्थिति गैर निष्पादित ऋण यानी NPLs, बकाया वसूली न होने वाले कर्ज और बट्टे खाते में डाले गए ऋण के कारण बनी है। मोबैंक के मामले में विशेष रूप से लगभग 3 बिलियन रुपए की नकारात्मक इक्विटी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री ने इस पर बैंक ऑफ मॉरिशस की निगरानी भूमिका में गंभीर विफलता की ओर इशारा किया है, जिसे अत्यधिक ढीला माना गया, जिससे बैंकों ने जोखिमपूर्ण और संभवतः धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में प्रवेश किया। सरकार ने इसके जवाब में बैंक ऑफ मॉरिशस अधिनियम और बैंकिंग कानून में व्यापक सुधार की घोषणा की है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के एक विशेषज्ञ को सुपरविजन विभाग को मजबूत करने और पिछली खामियों की जांच के लिए शामिल किया जाएगा।
0: कई हफ्तों से मॉरिशस के CEO ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए है। लिंक्डइन पर उन्होंने मॉरिशस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंदियों पर दोबारा एक्सेस करना पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। शैली नियपन, यचना मिश्रा।
1: कई संभावित उपायों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें फ्लीट का आधुनिकीकरण, हवाई नेटवर्क का पूर्ण पुनर्गठन, सेवा में सुधार, लागत में कमी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना शामिल हैं। अपनी प्रकाशित टिप्पणियों में आंद्री विल्जन ने कंपनी के भीतर मौजूद

0: आंतरिक चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कई वर्षों की अस्थिरता, कई नेतृत्व परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के दौरान प्रशासनिक अवधि के बाद कंपनी के भीतर अविश्वास और प्रेरणा की कमी की संस्कृति की बात की। सीईओ ने यह भी कहा कि वे नेतृत्व, मेरिटोक्रेसी और जिम्मेदारी पर आधारित एक गहरा सांस्कृतिक परिवर्तन शुरू करना चाहते हैं। संचालन स्तर पर एमॉर्शियस कुछ छोटे विमान जैसे एयरबस A321LR या बोइंग 737 मैक्स को शामिल करने पर विचार कर रही हैं, ताकि जोहान्सबर्ग, मुंबई और क्वालालंपुर जैसे क्षेत्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाई जा सके। कंपनी वर्तमान में सीबरी APG कंसल्टिंग फर्म के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीतिक अध्ययन के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रही है, जो अगले 10 वर्षों के लिए उसके नेटवर्क और बेड़े को यानी फ्लीट को निर्धारित करेगा। एमॉर्शियस के पास फिलहाल 11 विमान हैं और दिसंबर 2026 से 3 नए एयरबस A350 के आगमन की योजना है। योजना में अंतर्राष्ट्रीय कोडशेयर साझेदारियों को भी मजबूत करना शामिल है। कंपनी के पास वर्तमान में 14 कोडशेयर समझौते हैं और वह वैश्विक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए इन्हें और बढ़ाना चाहती है। ये रणनीति अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। कई घोषणाओं को अभी बोर्ड और संबंधित प्राधिकरणों की आधिकारिक मौजूदगी मिलना बाकी है।
1: नेशनल वेयरहाउस की स्थानांतरण परियोजना के तहत देश के मुख्तलिफ इलाकों में भंडार केंद्रों को कायम किया जाएगा। वितरण प्रणाली के पुनः आयोजन के सिलसिले में ये कदम उठाया जा रहा है। नए संगठन का मकसद संबद्ध संस्थाओं में सप्लाई को आसान बनाना है। इस परियोजना पर सबकी अलग अलग राय है। निर्मा नारायण रेड्डी की ये रिपोर्ट।
0: खेतिहरों के प्रतिनिधि अमरजीत बिगू के अनुसार इस निर्णय से पहले उनके प्रतिनिधियों से कोई परामर्श नहीं किया गया। उनका मानना है कि यह नया उपाय कई किसानों पर वित्तीय प्रभाव डाल सकता है और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने की आशंका भी है। वे बताते हैं, उधर सुरक्षा नहीं, हम अपना सामान वहां भेजने में हिचकिचा रहे हैं। जब भी कोई नई बिक्री स्थल खुलता है तो दाम कम हो जाती हैं, खेतिहरों को नुकसान होता है। इसका संबंध खेतिहरों और विक्रेताओं से भी है। नीलामीकर्ताओं की प्रतिनिधि शमिदा अमृत के अनुसार, हालांकि पहले से कोई परामर्श नहीं किया गया था, फिर भी नीलामीकर्ताओं ने इस नए उपाय के संबंध में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के कुछ फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन यह किसानों के लिए कुछ लाभ भी ला सकता है। वे बताती हैं, ये निर्णय हमारी सलाह के बगैर लिया गया, लेकिन हम सरकार का सहयोग देंगे। दोनों के फायदे और नुकसान हैं। अभी के लिए एक ही जगह है जहां होलसेल है। अगर अन्य जगहें होंगी तो दामों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। वाहनों को लेकर, आवाजाही को लेकर उन्हें फायदा होगा। अपने इलाके में भी उन्हें नेशनल होलसेल मार्केट का ही दाम मिलेगा। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले हफ्तों में इस नए उपाय को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा।
1: पुरानी जेंडर इक्वालिटी मंत्री कल्पना कुंजू शाह ने अपने वकील के जरिए कौफू रिश्ते में CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग पर एतराज़ जताया जो पुलिस ने प्राप्त की। कल पोम्पलमुस जिला अदालत में उन्होंने सुनवाई के बाद ये बात कही। कल्पना कुंजू शाह पर चोरी का इल्ज़ाम है और वो अपनी बेगुनाही का दावा करती हैं। पुलिस IT यूनिट से कांस्टेबल बेग से मांग की गई कि वो पिछले 19 सितंबर को घटी इस घटना की तस्वीरें अदालत में पेश करें। प्रतिरक्षा वकील आइवन कोलेंडावेल्यू ने इसे पेश करने से मना किया, ये कहकर कि पहले ये पता करना चाहिए कि वीडियो असली हैं। मामले को अगले 11 अगस्त के लिए स्थगित किया गया। पूर्व मंत्री पर 2,000 रुपये लागत कॉस्मेटिक पैदावारों की चोरी करने का आरोप दर्ज है। सऊदी अरब में हज अदा करने गए करीब 50 मुर्शिदों को

0: अजीजिया में होटल से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके लिए नए होटल का बंदोबस्त किया गया। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर मोहम्मद शामाद अयूब साहब ने बताया कि उन्होंने खुद हज मिशन के साथ हाजियों के लिए नया होटल ढूंढा और हमारे हमवतन इत्मीनान से वहां रह रहे हैं और ज़ियारत कर पा रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद हमारी टीम शहजाद गोहन ने उनसे बात की, अयूब साहब को सुनते हैं।
1: Alors, au niveau du ICC, nous, ce qu'il nous fait, nous sommes intransigeants. Nous pas fin compromettre, nous fin exiger qui sans l'hôtel. Nous pas fin d'accord qui, ben, j'ai voulu voyager, une venir, maintenant, à ce qui pour l'attendre, pour aller nettoyer l'hôtel, pour l'autre. Nous exiger qui l'opérateur, licence l'hôtel. Et pour nous faire ça, ce qu'il nous fait, nous fait travail un petit peu qui, en dehors, nous ambite, c'est-à-dire nos juridictions, c'est nous allons ensemble, nous prenons un représentant de Ban Hadji, nous prenons nos services providers, et maintenant, MyCC, nous faisons les tours de Azizia, nous allons visiter au moins un 7 à 8 hôtel pendant toute une journée. Là, moi, j'ai l'information qui tout, il rentre dans l'ordre, et nous faisons droit qui c'est Ban Hadji là, qui tout ce qui passait comme qu'ils ne sont pas certains, l'idée est à eux et qu'ils viennent dans meilleure disposition pour votre continu, votre hajj, pour votre focus, le côté spirituel.
0: पर्यावरण पुलिस कचरों के फेंके जाने के संदर्भ में सख्त रवैया जारी रख रही है। गुडलैंड्स में फेंके कूड़ों में से मिली एक रसीद से पता चला कि हरकत के पीछे कौन है। इसी तरह पुलिस एक एक बात पर ध्यान दे रही है। गए दिनों में कई कार्रवाइयां चलाई गई और लोगों को कंट्रावेंशन भी दिया गया। संतना पोस्नो, यचना मिश्रा।
2: पर्यावरण मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अब अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी संयोग भी सबूत बन जाता है। अक्सर अवैध कचरा फेंकने से प्रभावित क्षेत्र हैं। निर्माण मलबे के बीचों बीच मिला एक साधारण रसीद पर्चा पर्यावरण पुलिस को एक संदिग्ध प्रदूषक तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ। ये घटना गुरुवार 14 मई की है। निगरानी अभियान के दौरान अधिकारियों ने ताज़ा फेंका गया निर्माण कचरा पाया। जांच के दौरान उन्हें मलबे के बीचों बीच एक रसीद मिली। इसी सुराग के आधार पर जांचकर्ता रिजर्वर रोड के एक निवास तक पहुंचे। पूछताछ में उसने कथित तौर पर अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसे ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया और निर्धारित समय के भीतर क्षेत्र की सफाई करने का आदेश दिया गया। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस कड़ी निगरानी का कारण अवैध कचरा फेंकने से जुड़े खतरे हैं, जो चिकुनगुनिया और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों के फैलाव को बढ़ावा देते हैं, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कार्रवाई अभी भी जारी है। तैयारूश में एक ट्रक मालिक की पहचान एक स्थानीय निवासी की शिकायत के बाद की गई, जिसने इलाके में अवैध कचरा फेंके जाने की सूचना दी थी। वही भादो में एक चालक को जंगल वाले क्षेत्र में हरा कचरा फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तीनों मामले में आरोपियों पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया और संबंधित स्थानों की सफाई करने का उन्हें आदेश भी दिया गया।
0: भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। जगह जगह लोगों को इसे बर्दाश्त करने के तरीके तलाशे हुए देखे जा रहे हैं। बहुत सी जगहों में इस गर्मी की वजह से लोग बेहोश भी हुए हैं। इसराइल ने लेबनान के दक्षिण में हवाई हमले किए। कम अज कम 19 लोगों की मौत हुई, उनमें बच्चे और महिलाएँ शामिल। ये हमला एक घर पर किया गया। थाईलैंड ने वीज़ा को लेकर कुछ मुल्कों के लिए नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। सन 2024 से 93 देशों से आने वाले पर्यटकों को 60 दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ताकि थाईलैंड की अर्थनीति में मज़ीद योगदान हो। लेकिन अब कुछ देशों को 30 से ज़्यादा दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की अर्ज़ी भेजनी पड़ेगी। उनमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटे

घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह सवेरे बारिश होगी और कुछ जगहों में मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद उत्तर पश्चिम उत्तर में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। आज रात ऊंचे इलाकों में बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समंदर खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाली लगूनों में।

डॉक्टर की हालत में सुधार आएगा, लेकिन आज सुबह दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 24 से 26, साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:39 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश है। मुर्शस में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट। सन 2015 में यह आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मुर्शस ने रिपोर्ट आम की। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरी वजहों से इतनी बढ़ी। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपए दर्ज थे। कल राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरीशस पर ये जानकारियां दी। 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज, एयर मॉरीशस के सीईओ ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव का विजन आम किया। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंडियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। और भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादीन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, शोक समाचार सुनिए। शिवाला रोड मोगू में 47 साल की 47 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शर्मिला रामा नाइक, श्रीमती शर्मिला रामा नाइक पैदाइशी नाम रागू जो काजल के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके पति विक्रम रामा नाइक के घर शिवाला रोड मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोगू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। काली माई रोड होशनुआ में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड श्री देवदत्त गुलजौ की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके बेटे अजय गुलजौ के घर काली माई रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। प्रूडम रोड रिविया डे जोंगी में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड श्रीमती नंदरानी आराके पैदाइशी नाम पुरनू जो रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थे आज 11 बजे इनके घर प्रूडम रोड रिविया डे जोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। एवेन्यू सैन लुई प्लेजेंस रोजिल में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मांती तोमा पैदाइशी नाम बंसरूपन जो रूमिला बंसरूपन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनके घर एवेन्यू सैन लुई प्लेजेंस रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। एवेन्यू बुगेनविलिए तमाखे में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्री लाल देव जगन्नाथ जो पोतना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। और मुसलमान VOS कास्कावल के रहने वाले थे। अर्थी कल डेढ़ बजे इनकी बेटी करुणा जगन्नाथ रंजीब के घर एवेन्यू बुगेनविलिए तमाखे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री विशाल गुलुआ जो विशाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पुलिस सर्जन थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनकी पत्नी नीरू नंदरम के घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मो की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रेजिडेंस रामदोनी बासन कतरबोन में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड श्रीमती वमला देवी आपादू पैदाइशी

0: वेंकैया, जो वमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थे आज दो बजे इनके घर रेजिडेंस रामदुनी बासन काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आर्सेनल प्रीमियर लीग चैंपियन, 22 सालों का लंबा कारावास पूरा हुआ। फर्स्ट प्रीमियर लीग टाइटल इन 22 इयर्स। मैनचेस्टर सिटी के ड्रॉ मैच से आर्सेनल चैंपियन बना। बोर्नमुथ 1 मैनचेस्टर सिटी 1। फर्स्ट हाफ में बोर्नमुथ के लिए एल जूनियो क्रूपी का गोल अर्लिंग अलॉन्ड ने इंजरी टाइम में इक्वलाइज किया। मतलब सिटी का चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर। बोर्नमुथ पहली बार के लिए यूरोप में खेलेगा। बोर्नमुथ का ड्रॉ मैच आर्सेनल को टाइटल और लिवरपूल को चैंपियंस लीग फुटबॉल दिलाता है। बोर्नमुथ लिवरपूल से केवल 3 अंक पीछे है, पर लिवरपूल का गोल डिफरेंस है +10 और बोर्नमुथ का +4। बोर्नमुथ के लिए यूरोपियन फुटबॉल मुबारक हो, पर चैंपियंस लीग में या यूरोपा लीग में इसके लिए इंतजार करना होगा। आखिरी मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ है। अगर जीत हुई और लिवरपूल की हार ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ, वो भी 6 गोल के गोल डिफरेंस से, तब चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। दूसरा रास्ता है अगर आज एस्टन विला यूरोपा लीग जीत जाए और प्रीमियर लीग में 5वें पोजीशन पर आए, मतलब एस्टन विला की हार और आखिरी मैच में और लिवरपूल की जीत, तब जाकर द चेरीज चैंपियंस लीग का स्वाद चखेंगे। बधाई आर्सेनल को, बधाई बोर्नमुथ को। एक 22 साल बाद प्रीमियर लीग चैंपियन, दूसरा 127 साल बाद उसके क्लब हिस्ट्री में पहली बार यूरोप में। लंदन की एक टीम प्रीमियर लीग चैंपियन तो दूसरी टीम खतरे में। टोटनहम हॉटस्पर के लिए रिलेगेशन का खतरा अभी बरकरार है, क्योंकि कल लंदन की ही टीम चेल्सी ने उसे 2-1 से हराया। 1 अंक चाहिए था, 1 ड्रॉ काफी था स्पर्स के लिए, पर चेल्सी भी यूरोपियन फुटबॉल चाहता है अपने आने वाले नए कोच, नए मैनेजर ज़ावी अलोंसो के साथ। फर्स्ट हाफ में चेल्सी 1-0 से आगे था, एंजो फर्नांडेज का गोल, फिर सेकेंड हाफ में एंड्रू सांतोस का गोल, चेल्सी 2-0 से आगे, फिर रिचार्लिसन का गोल, फाइनल स्कोर चेल्सी 2 टोटनहम हॉटस्पर 1। अब टोटनहम हॉटस्पर का आखिरी मैच अपने होम मैदान में है एवर्टन के खिलाफ। प्रीमियर लीग सर्वाइवल रिलेगेशन से बचने के लिए चाहिए केवल 1 अंक, 1 ड्रॉ। टोटनहम हॉटस्पर की हार से वेस्टहैम यूनाइटेड के बचने का चांस है। वेस्टहैम यूनाइटेड का आखिरी मैच अपटन पार्क में लीड्स के खिलाफ है। प्रीमियर लीग टाइटल सस्पेंस तो नहीं रहेगा, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग में जाने के लिए और रिलेगेशन से बचने के लिए सस्पेंस आखिरी दिन, आखिरी मिनट तक। सो आखिरी दिन ब्राइटन का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ। ब्राइटन के लिए यूरोपियन फुटबॉल की संभावना है। बर्नली वुल्व्स दोनों रिलेगेट हो चुके हैं। क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला आर्सेनल से होगा। आर्सेनल को ट्रॉफी मिलेगी उसी दिन। फिर फुलहम न्यूकासल यूनाइटेड, लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड, मैनचेस्टर सिटी एस्टन विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट बोर्नमुथ, सन्डरलैंड चेल्सी, टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन, वेस्टहैम यूनाइटेड लीड्स, ये इस प्रीमियर लीग सीजन के आखिरी मैच होंगे। साउथैम्पटन को प्ले ऑफ फाइनल से निकाल दिया गया है, एक्सपेल्ड फ्रॉम फोर स्पाइन। साउथैम्पटन का जासूस मिडलसब्रो के ट्रेनिंग ग्राउंड में फोटो लेते हुए, शूटिंग करते हुए दिखा गया था। स्पाई गेट का मामला था। साउथैम्पटन वालों ने स्वीकार किया कि उनका स्टाफ मिडलसब्रो के ट्रेनिंग ग्राउंड में था। ऐसे में साउथैम्पटन आउट, मतलब फाइनल हल और मिडलसब्रो के बीच होगा, पर साउथैम्पटन ने अपील की है। टेनिस, कार्लोस अल्काराज इंजुरी के कारण फ्रेंच ओपन और विंबलडन में नहीं खेल पाएगा। अल्काराज ने कहा रिकवरी ठीक चल रही है, पर वो खेलने के लिए फिट नहीं है। अभी फ्रेंच ओपन के क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं। क्रिकेट, आईपीएल में युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी का जलवा जारी है। कल वैभव 93 रन बना पाया केवल 38

गेंदों में 38 बॉल्स 93 रन्स, 7 चौके 10 छक्के, कमाल का बैट्समैन है 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। उसकी धुआंधार बैटिंग के बल पर राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्लेऑफ में जाने के चांसेस अभी तक है राजस्थान रॉयल्स के लिए। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। राजस्थान रॉयल्स का आखिरी मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा। अभी राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पे है, पंजाब किंग्स से 1 और चेन्नई सुपर किंग्स से 2 अंक ऊपर। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, आर्सेनल के द गनर्स प्रीमियर लीग टाइटल जीत गए। मैनचेस्टर सिटी का ड्रो मैच, मतलब आर्सेनल चैंपियन। बधाई हो, मुबारक हो, द गनर्स चैंपियन बन गए। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: बुधवार 20 मई घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:04। रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवेरे सवेरे। और चलिए, म्यूजिकल प्रोग्राम है सुबह का नजराना, अभी से लेकर 9 बजे तक चलेगा। आपको पता ही है, खूबसूरत एवरग्रीन गाने तराने आपके लिए हम चलाते ही है, ढेर सारी बातें, आपके डेडिकेशंस, और बस ऐसे ही ये सफ़र हम यादगार बनाएंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। तो सुप्रभात आप सभी को, एक बार फिर से दिल से आपका हम स्वागत करते हैं। सवेरे सवेरे बिजी होने के बावजूद आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और सिर्फ जुड़ते ही नहीं हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं। तो चलिए, ऐसे ही खूबसूरती से आज भी ये सफ़र शुरू हुआ है, और कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अपने आप में अच्छा ही होता है। तो चलिए, ये दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, ऐसी कामना हम करते हैं। और सुबह का नजराना इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं चिंतन से, हम सुनेंगे जिसे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जैसे काटा हुआ चंदन का वृक्ष सुगंध को नहीं छोड़ता, वैसे ही दरिद्र हो जाने पर भी कुलीन व्यक्ति सुशीलता आदि गुणों को नहीं छोड़ता।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सवेरे के 7:10 यहाँ पर हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। सीईबी शिमेग्रेनिया के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 21 मई को दोपहर के एक बजे से शाम के 5:30 के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही रोजहिल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, रोजहिल के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक एवेन्यू हाजी आलामान, सिस्टर मारी क्लेमोंस, एडोल्फ दे प्लेविट्स, रात्सितातान दे साजाल यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 20 मई को यहाँ पर सुबह के नौ से शाम के साढ़े पाँच बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी दो विज्ञप्तियाँ सीईबी की ओर से।
2: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

जी हाँ, आपका भी बेशुमार प्यार हमें यहाँ पर मिल रहा है जिसे समेटने की हम कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अब बारी है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना, 7:40 से शामिल करेंगे आपके डेडिकेशंस। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो सवेरे से हमें मिल रहे हैं आपके ढेर सारे मैसेजेस। 8:00 आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 हम लेकर आएंगे आ खेल खेले हम। 8:30 आप सुन पाएंगे परिवार नियोजन इस कार्यक्रम को मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। 8:50 पर किरण जानकी से आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को। और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 9:00 आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10:00 होगा समाचार, उसके बाद आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। 11:00 होगा समाचार, उसके बाद सैदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। दोपहर के 12:00 विश्वा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 प्रीति

की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम दोपहर के 1 बजे, तमिल भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी आरसी, 2:45 बजे गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता से, 2:30 बजे से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद ये कार्यक्रम जारी रहेगा, सुपहर के 4 बजे शिरीष से आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम विविधा, 5 बजे समय होगा फारी की प्रस्तुति में खेतीबाड़ी इस कार्यक्रम का, 5:15 बजे से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में, 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर, 6:30 बजे हक्का भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे डेविड द्वारा, 7 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे युवराज सेन, 7:30 बजे राजेंद्र की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में प्रोग्राम, 7:50 पर मराठी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे नितिन बापू से गीत गंगा, 8:10 पर अनीता प्रस्तुत करेगी भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम, 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब, 9:00 से 11:00 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में, 11:00 बजे आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को, और 12:00 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की। जी हाँ, भरपूर मनोरंजन यहाँ पर होता है MBC रेडियो के ज़रिए, रेडियो मॉरिशस के ज़रिए, और अभी के लिए खूबसूरत गानों का ये जो कारवा है इसे हम आगे ले जाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। सरगम पल का ये तराना है मुकेश साहब की आवाज़।

0: एक्चुअली लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम वाकई में भूलना चाहते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम भूल कर भी नहीं भूल पाते हैं। ज़िंदगी अजीब सी होती है, कभी कभार ऐसा लगता है ना कि कुछ हो चुका है जिसे हम भूल जाए तो जीवन में आगे बढ़ पाए, लेकिन ऐसी बातें भूलना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभार किसी चीज़ को याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, जीवन है खट्टी मीठी अच्छी बुरी बातों से जो है ज़िंदगी जो है आगे बढ़ते रहती है, चलते रहते हैं। और चलिए चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते आप भी हमसे मिल रहे हैं, यहाँ पर आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आपसे सवेरे सवेरे बात हो जा रही है। और ऐसा होता है ना कि सवेरे सवेरे किसी अपने से बात हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो जाए जो आपके पूरे दिन की जो है नज़रिए को बदल दे, आपके सोचने के तरीके को बदल दे, जीवन में आपके पॉजिटिविटी लेकर आए, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है भला। तो चलिए, आज का दिन बहुत ही शुभ हो आप सभी के लिए। जिनसे भी आप मिले हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलिए, सारी दुख सारी परेशानियां जो है हंसने से कहते हैं आधी कम हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी में जो भी हालात क्यों न चल रहे हों, जैसे भी परिस्थिति से आप क्यों न गुजर रहे हों, मुस्कुराना कभी मत भूलिएगा।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

चलिए, अलबेला फिल्म का ये बड़ा ही पॉपुलर सा गाना काफ़ी दिनों बाद हमें मौका मिला तो हमने आप लोगों के लिए चलाया और बहुत से लोगों को ये गाना पसंद भी आया, तो धन्यवाद लता जी चितलकर और साथियों की आवाज़ों में ये गाना था। और जब ये गाना रिलीज़ हुआ था उस समय ये मॉडर्न गाना था, जैसे अभी के समय में हम गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता है ना कि पुराने गाने अच्छे थे, अभी के गाने काफ़ी एडवांस है, काफ़ी जो है समय से काफ़ी आगे हैं। तो ये गाना जब रिलीज़ हुआ था तो लोगों के ऐसे विचार थे, और आज देखिए गाना अपने आप में एक आइकॉनिक तराना है। और चलिए, 7:40 हो चुके हैं और यहाँ पर जो है आपके डेडिकेशंस का जो सिलसिला है वो भी शुरू होता है। ऐसे तो फ़ोन कॉल्स तो बहुत सारे आते ही हैं, लेकिन आजकल मैसेजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाते हैं आपके ढेर सारे और लंबे लंबे मैसेजेस हैं। और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि सभी मैसेज को हम समय देकर पढ़ें। तो चलिए, आज अगर आपका जन्मदिन है या कोई ख़ास मौका है, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के साथ, सो हमारी पूरी टीम की ओर से, रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये जन्मदिन जो है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे और हमारा साथ देते रहे। और चलिए, यहाँ पर शैला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शैला जी कह रही, अगला गाना हो जाए पति साजन के नाम, पति साजन के नाम और साथ में बेटे विकास के लिए। सुबह हमने संगम फिल्म का गाना चलाया जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। कह रही, जब संगम फिल्म रिलीज़ हुई थी तो तब वो बस 13 साल की थी और फिल्म देखने की ज़िद कर रही थी, तो उनकी माँ ने उनको कहा था कि लड़कियाँ फिल्में देखने नहीं जाती हैं। चलिए, वो भी एक ज़माना था जहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ होती थी, और फिर भी उन पाबंदियों को पार करके आज हम बहुत आगे निकल आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

बहुत उन्नति, बहुत तरक्की, बहुत प्रगति हमने कर ली है। तो चलिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पुरानी बातें याद दिला देते हैं, तो ये गाना शीला जी के लिए ऐसा ही था। लीला जी बहुत शेरी से साथ दे रही है, कह रही पिछले सप्ताह मैंने बहुत कोशिश की, मेरा फ़ोन नहीं लगा, लेकिन आज लग गया ना शीला जी। लीला जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार भरे साथ के लिए। प्यारी सुमी जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। नमस्कार बेटा, उत्तम सुमारू का जन्मदिन है, और ओके उत्तम जी आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मामा माला और पापा सूर्यदेव की ओर से। और तीन भाई है, कृष्ण है, सुयांश है, श्रीवन है, तीन बच्चे हैं, शिरवानी, दक्ष, कशिश, सभी सुमारू परिवार की ओर से आपको उत्तम जी जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, यहाँ पर माला जरी जी आपको भी गुड मॉर्निंग कैसी है आप? आज मैं पिकनिक जा रही हूँ अपने सभी सीनियर सिटीजन्स के साथ। ओके चलिए, अच्छी बात है, ये एक अच्छा है ना कि हम रिटायर हो जाते हैं, एक उम्र में आ जाते हैं, तो घूमने फिरने का मौका मिलता है उनके साथ जिनके साथ हमने काफ़ी लंबा समय बिताया है। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत घूम लेना अच्छी बात है, शेयर कर लेना अपनी अच्छी बात है, एक दूसरे से बातें हो जाती है, दिल का हाल कह पाते हैं। तो चलिए, आप के सीनियर सिटीजन्स की पूरी टीम के लिए अगले गाने को हम डेडिकेट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप का ये जो सफ़र है वो बहुत ही सुहाना हो और यादगार हो। ऐसे फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, मौका मिलेगा तो इस गाने को हम ज़रूर चलाएंगे जो आपने कहा है। और यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा गुड मॉर्निंग मैसेज आया है, लेकिन जिसने ने मैसेज भेजा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ओके, ये है साधना जी, रिवेदे क्रियोल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी आपके इस प्यारे मैसेज के लिए। और ये अगला मैसेज है, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, जो सत्य का साथ देता है परमात्मा उसका साथ देता है। बिल्कुल सही कहा अनिता जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इन सुंदर पंक्तियों के लिए। और अगला गाना आपके नाम, करुणा के नाम, अमृता के नाम, आपके सभी दोस्तों के लिए, सभी सहेलियों के लिए। तो चलिए, ये तराना चल पड़ा हमारे सभी प्यारे सुनने वालों के नाम। कहते खुशी ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, और दुख ऐसी चीज़ है जो बांटने से कम होती है। तो चलिए, जहाँ तक हो सके इस खुशियों को

चलिए, खुशी का मौका होता है और औरों की खुशियों में शामिल होकर ये खुशी जो है और भी बढ़ जाती है। तो चलिए, यहाँ पर नाती अंश, 9 साल के हो रहे हैं, आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं अंश। आपकी दादी सरोज की ओर से, मामा संजना, पापा नितिन की ओर से, आपके नाना नानी की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, सभी चाचा की ओर से, सभी पूरे परिवार की ओर से, खासकर कृषि है, अर्नव है, खुशी है, सभी रघु परिवार की ओर से अंश आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शोभा जी वाकवा से साथ दे रही है, गाना जाता है श्रवीना और अनुषा के नाम, और आपके सभी दोस्तों के लिए काजल और शर्वीन की शादी है, आप दोनों को शुभकामनाएं आई है। सभी लच्छू परिवार की ओर से थ्रियोले से, पापा क्रिसुन है, मामा नंदा है, सभी लच्छू और सभी रामचंद परिवारों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर मैसेज है इंदिरा लौटन जी की ओर से, नमस्कार सुबह का नाम, ओके बहुत बहुत धन्यवाद। लंदन से सभी गोपी सिंह परिवार के नाम अगला गाना जाता है, और इंदिरा जी यही गाना आपके लिए भी। हाँ, यहाँ पर अगला मैसेज आया है लक्ष्मी जी आपकी ओर से, बॉम्बू से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल ठीक हैं, और अगला गाना आपके नाम, आपके पूरे परिवार के नाम हम करेंगे। और यहाँ पर सूरज जी हमारा साथ दे रहे हैं थ्रियोले से, अगला गाना सूरज जी आपके नाम, प्रणाम आपको भी और थ्रियोले के आपके पूरे परिवारों के लिए। राइट, यहाँ पर 100 साल पहले, ओके आपके पति के नाम अगला गाना, ओके हम कोशिश करेंगे इस गाने को चलाने की। गाना जाता है प्रेमिला रामफल जी आपके नाम, जो कटरबोन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और प्रेमिला जी ये गाना आपकी ओर से आपके पति राजेश के नाम और सभी रामफल परिवारों के लिए। तो जितने भी सुनने वाले जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, कोई ख़ास मौका है, ये अगला तराना आप सभी के नाम।

तो जी हाँ, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं, और इसी गाने के साथ जो है यहाँ पर हम आपके नाम ये डेडिकेशन करते हैं। यहाँ पर उषा जी ब्रह्मस्थान से हमारा साथ दे रही है, कह रही है हम भी हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। और चलिए, यहाँ पर दामाद अरविंद कोन्हैया का जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं अरविंद जी। आपकी सासू माँ इंदिरा और ससुर मनोहर की ओर से लेस्कालिये से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आई है। पत्नी है संजना, बच्चे हैं वर्धिनी, नीरव, सभी कोन्हैया परिवार की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई यहाँ पर। और यहाँ पर अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी मैसेजेस शामिल करते हैं। विश्वानी डुमन साथ दे रही है, सभी को शुभ दिन कह रही है। और यहाँ पर अगला मैसेज आया है, जिन्होंने मैसेज भेजा है उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि आप कौन हैं। तो शुभ बुधवार आपको भी, हैप्पी वेडनेसडे। और चलिए, इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचार और शोक समाचार की ओर। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते ऐसी कामना हम करते हैं, और मिलते हैं सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में।

आवाजा समाचार सुना जा। मुर्शस में बेरोजगारी के दर में लगातार गिरावट नोट करल जात बाते। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% रहेला और गत बरीस 5.7% दर्ज हुएला। काल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस एगो रिपोर्ट आम कर लेबा आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के हई 17वें संस्करण में जाहिर होता कि एक तरफ 16 से 24 साल के उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज़्यादा प्रभावित रहेला, लेकिन दूसर तरफ एगो साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मुर्शन के काम मिलेला। कल राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां देवे रहल बाते। गत सरकार के तहत केंद्रीय बैंक के निगरानी उतना कमजोर रहेला के करीब 4 स्थानीय बैंक में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कमती पर गल। ई रकम टॉक्सिक लोन्स राइट ऑफ और दूसर तथ्यों के वजह से इतनी बढ़ेला। पिछली गत बरीस इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश करल कर रहल जोन 48 बिलियन रुपया बाते। एमर्शस के सीईओ राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव लाए के अपन विजन आम करेला। ई विजन आवत 10 बरिस खातिर बा। लिंक्डइन पर उ एमर्शस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रेटजीज के जानकारी देले बा। मकसद आमदनी के बढ़ाए के है, मंदियों में एक्सेस और भविष्य के वृद्धि के समर्थन करे के है। विदेश में भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस करल बाते। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के दर्ज हुआ था। जगह जगह लोग एकर बर्दाश्त करे के तरीका तलाशे हुए देखे लंजा। तय रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Kalimai Road Roshnoami, Charkuri Chauberiske 86 ans, Shri Deudat Guljo, Shri Deudat Guljo, Gujargal Havan in Karmati, Ajik Bajin Karbeta, Ajay Guljo ke Ghare, Kalimai Road Roshnoa se Utaki and Tim Sanskar Khatir, Roshnoa ke Shamshan Bhumile Javal Jai, cremation today at 1 pm. Prudhomme Road Rivia des Anguilles, Metin Kuri Chauberiske 66 ans, Shrimati नंदरानी आराके श्रीमती नंदरानी आराके पैदायशी नाम पोर्नू जो नरानी के नाम से जस्ती जाना जात रलन गुजर गल हवन इनकर माती आज 11 बजे आज 11 बजे इनकर घरे फ्रीडम रोड रिविया दे जोंगी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांव बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 11 AM एवेन्यू बुगेनविलिये तमारे में तीन कोरी 11 बरिस के 71 ans श्री लाल देव जगोनत जिन पत्नी के नाम से जस्ती जाने जाते रहलन और जिन मुसलमान VOS कास्कावल के वासी रहलन गुजर गल हवन इनकर माती काल 1:30 इनकर बेटी करुणा जगोनत रंजीव के घरे एवेन्यू बुगेनविलिये तमारे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM एवेन्यू सेल्वी प्लेजेंस रोजिन में 2 कोरी 10 बरिस के 70 ans श्रीमती मांती तोमा पैदायशी नाम बंसरूपन जन रूमिला बंसरूपन के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर गल हवन इनकर माती आज एक बज के आधा इनकर घरे एवेन्यू सेल्वी प्लेजेंस रोजिन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौन लिव्यू के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM शिवाला रोड मुंगू में 2 कोरी 7 बरिस के 47 ans श्रीमती शर्मिला रामा नाइक पैदायशी नाम राघू जैन काजल के नाम से जस्ती जाना जात्र गुजरकल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर पति विक्रम रामा नाइक के घरे शिवाला रोड मोंगू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोंगू के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे 2 PM रेजिडेंस रामदुनी बासन 4 बोन में 3 कोरी 15 बरिस के 75 ans श्रीमती वमला देवी अपादू पैदायशी नाम वेंकैया जिन वमला के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजरगल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर घरे रेजिडेंस रामदुनी बासन 4 बोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे 2 PM रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 2 कोरी 9 बरिस के 49 ans श्री विशाल गुलुआ जन विशाल के नाम से जस्ती जाना जात रहलन और पुलिस सर्जेंट रहलन गुजर गल हवन इनकर माती आज ग्यारह बजे इनकर पत्नी नीरू नंदराम गुलुआ के घरे रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ग्रीष्मों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे 11 AM शोक ग्रस्त परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट करत है जा

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सवेरे के 8:13 रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो जरूरी विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सीबी मोताबा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। मोताबा में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 20 मई को सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच यहाँ पर आज मोताबा में जो है मोताबा गांव में जो है आज बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से सुबह के 9 से शाम के 4 बजे के बीच। साथ ही एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए। रोजिल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, रोजिल के खासकर आवेन्यू हाजी अलामान, सिस्टर मारी क्लेमोंस, एडोल्फ दे प्लेविट्स, रातसितातान दे साजाल, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी आज बुधवार 20 मई को सुबह के 9 बजे से शाम के 5:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी दो विज्ञप्तियाँ सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आप सभी का स्वागत है। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 8:15 बज रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। और आ खेल खेले हम, इसकी शुरुआत होती है सुबह के नजराना के इस दूसरे घंटे में। आपको पता ही एक छोटा सा प्रश्न होता है जहाँ पर हम लेकर आते हैं और आप हमारे साथ अपने जवाब के साथ जुड़ते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारा सवाल ध्यान से सुनिए। आज है बुधवार 20 मई। आज विश्व भर में दो खास दिन मनाए जा रहे हैं। आप उन दोनों में से किसी एक भी दिन का नाम हमें बता सकते हैं। अगर दोनों जानते हैं तो दोनों ही बताएं। एक जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री से, थोड़ा सा नाप तोल से जुड़ा हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और एक जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अब आज दो दिन मनाए जा रहे हैं विश्व भर में, 20 मई को इन दिनों को मनाया जाता है, तो उन दोनों में से किसी एक दिन का नाम भी आप हमें बता सकते हैं। या दोनों जानते हैं तो दोनों बताइए। 4028085 है नंबर हमारा, और सवाल करते ही आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पर बजने लगे हैं। चलिए पहले श्रोता से मिलते हैं। हेलो नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कौन है?
1: मैं देवी हूँ जी।
0: देवी जी कैसी है आप?
1: ठीक हूँ। और
0: बिल्कुल ठीक है जी, और बताइए क्या है जवाब?
1: बीज है मधुमक्खी।
0: ओके, पूरा ठीक से बताइए, मधुमक्खी क्या?
1: हाँ मधुमक्खी ना।
0: हाँ हाँ, मधुमक्खी क्या?
1: और हनी मधुमक्खी मतलब बीज।
0: अच्छा, हम समझ गए, चलिए कोई बात नहीं।
1: हनी मद
0: जी, बहुत धन्यवाद देवी जी, आपने कोशिश की इसके लिए धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हमने पूछा आज दो खास दिन मनाए जा रहे हैं, तो सिर्फ जवाब एक शब्द का तो हो नहीं सकता ना। मधुमक्खी दिवस है या क्या है, मतलब आप उस पूरे सेंटेंस को, उस पूरे वाक्य को

0: अच्छे से बताएंगे तो जो सुन रहे हैं उनको भी पता चलेगा ना कि सही जवाब क्या है। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते। कौन है जी? कैसी है शोभा जी? बिल्कुल ठीक है। और क्या है जवाब शोभा जी? ओके, आपकी आवाज बड़ी धीरे से आ रही है, क्यों? हेलो, अब ठीक है? अब ठीक है, बताइए फिर से बताएं।
1: मेरा पहला जवाब है वर्ल्ड बी डे।
0: ओके,
1: और दूसरा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे।
0: ओके, दोनों दिन के बारे में कुछ जानती है, कुछ बताना चाहेंगी?
1: उतना तो नहीं।
0: ओके, चलिए कोई बात नहीं, आपने दोनों जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, शुभ दिन। ऐसा होता है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो इससे हमारा भी जो है, हम भी शायद किसी सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर इसके बारे में ढूंढते हैं खोजते हैं तो इससे हमारा भी जनरल नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि हम भी जब इस प्रोग्राम की तैयारी करते हैं तो हमें भी तैयारियों की ज़रूरत होती है, अपने आप को प्रिपेयर करके आना होता है, तो इस ये ऐसे सारी चीज़ें हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
2: हेलो नमस्ते
0: जी, कौन है?
2: मैं आशा।
0: आशा जी, कैसी है आप?
2: ठीक है, और आप?
0: बिल्कुल ठीक। आशा जी कहाँ से बोल रही है?
2: मैं हाईलैंड से बोल रही हूँ।
0: ओके, और कैसी है आप?
2: अच्छी।
0: ओके, और क्या है जवाब?
2: वर्ल्ड बी डे।
0: वर्ल्ड बी डे, ओके, और दूसरा बताना चाहेंगे?
2: मेट्रोलॉजी डे।
0: ओके, चलिए आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी, दोनों दिन के बारे में कोई जानकारी है, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ जोड़ना चाहेंगे? अच्छा, चलिए आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4028085 पर यहाँ पर एक मैसेज आया है। ओके, डेडिकेशन का है, अभी डेडिकेशंस तो नहीं है पर फिर भी आप हमें जो है फरमाइशें भेज रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सवाल किया था, चलिए एक और श्रोता, हमने सवाल किया था, आज 20 मई है, आज दो खास दिन मनाए जा रहे हैं विश्व भर में, आप को अगर इनकी जानकारी है तो आप हमें बताएं। हेलो नमस्ते।
3: हेलो नमस्ते बहन
0: जी। नमस्कार, आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
3: धनेश्वर चुवा जवील।
0: धनेश्वर जी बताइए क्या है जवाब आपके पास?
3: ग्लोबली आज वर्ल्ड बी डे।
0: ओके,
3: एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे।
0: ओके, धन्यवाद धनेश्वर जी, भाई धनेश्वर जी, और कुछ जोड़ना चाहेंगे इन दोनों दिनों के बारे में?
3: हाँ, तो जो कुछ है तो मैंने बोल दिया, अब जितना कुछ है तो आप जोड़ दीजिए।
0: बहुत धन्यवाद जी। चलिए आपको शुभ दिन हम कहेंगे।
3: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। चलिए आज जितने भी लोगों ने भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, आज दो विशेष दिन मनाए जा रहे हैं। पहला तो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जो हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। ये दिन माप विज्ञान के महत्व को उजागर करता है और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है जो है यहाँ पर। और दूसरा जो दिन है वो है वर्ल्ड बी डे, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस। और मधुमक्खी सिर्फ शहद बनाने का कार्य नहीं करती हैं, ये बल्कि हमारे पर्यावरण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जितने भी लोगों ने भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगभग सभी लोगों ने सही सही जवाब दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस छोटे से क्विज को हम समाप्त करते हैं, और ये जो अगला तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं।
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं। और चलिए, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में अब समय हुआ है हम सुने कार्यक्रम परिवार नियोजन। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मिस्टर भोगन, तो आइए उनको सुनते हैं।

नमस्कार श्रोताओं, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय निर्धारित है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है और इस संदर्भ में ये प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं, इस साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय है परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण, यानी कि फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। वैश्विक असमानताओं के लगातार बढ़ते विस्तार को देखते हुए इस वर्ष का आयोजन इस बात पर प्रकाश डालेगा कि आवश्यक सेवाएं तक पहुंच, डिजिटल कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में असमानताएं परिवारों को कैसे प्रभावित कर रही है और बच्चों के जीवन के संभावनाओं को कैसे आकार दे रही है। लगातार बनी रहने वाली असमानताएं तकनीकी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक रुझानों के साथ मिलकर परिवारों पर बढ़ता दबाव डाल रही है और पीढ़ियों से चली आ रही अभाव की चक्रीय प्रक्रिया को और मजबूत कर रही है। परिवार सामाजिक विकास के केंद्र में है। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां में जिनमें परिवार बनते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं, गरीबी के पैटर्न्स, मानव पूंजी विकास, उत्पादकता और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। पर्याप्त सहायता प्रणालियों के अभाव में छोटे बच्चों वाले परिवारों को अक्सर गरीबी में गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इसी उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे बच्चों के विकास पर, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। परिवार सामाजिक जीवन का केंद्र है और अपने सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करना, शिक्षा प्रदान करना और बच्चों और युवाओं को सोशलाइज होने में सहायता करना और जवान और वृद्धों का देखभाल के केंद्र में रहता है। परिवार का एक अद्वितीय भूमिका है बच्चों के देखभाल में। जिन परिवारों में मानवीय मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़, प्यार और रिस्पेक्ट को महत्व देते हैं, वहाँ बच्चे सही मार्ग पर अपना रास्ता चुनते हैं। और अगर परिवार में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं, घरेलू हिंसा, सेपरेशन, तलाक, तो इसका बच्चों पर नकारात्मक असर होता है और वे कभी कभी गलत संगत के चपेट में आसानी से आ जाते हैं। बच्चे सीमेंट की तरह होते हैं, जैसे कि गीले सीमेंट पर जिस तरह के निशान आप छोड़ते हैं वो निशान पूरे उम्र के लिए मजबूत हो जाते हैं। बच्चा वही करना और बोलना सीखता है जो उसके आसपास हो रहा होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु से बच्चे की नींव ढलती है और ये माता पिता पर निर्भर होता है कि आप बच्चे को किस प्रकार के वातावरण प्रदान कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास क्या है। बच्चों के विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट उनके जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तन। डेवलपमेंट उम्र से संबंधित चरणों में विकसित होता है। डेवलपमेंट अनुक्रमित चरणों में होता है। इसका ये मतलब है कि एक बच्चा डेवलपमेंट के एक कदम बिना डेवलप हुए पार नहीं कर सकता। हर एक चरण में बच्चा कुछ सीख

सीखता है और आगे बढ़ता है। विशेष रूप से बच्चों के डेवलपमेंट के 5 क्षेत्र हैं, जो कि शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक है। एक व्यक्ति यानी कि एक बच्चा एक या अधिक क्षेत्रों में विकास की एक निश्चित अवस्था में फंसा हो सकता है। यौन शोषण या उपेक्षा बच्चों के विकास को धीमा कर सकता है। शारीरिक विकास वो सब क्षमता यानी कि कॉम्पिटेंसीज है, जैसे कि चलना, दौड़ना, फेंकना, उठना और खाना। शारीरिक विकास के 2 भाग होते हैं, जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो क्षमता है जहाँ बड़े मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स का उपयोग होता है, जैसे कि बैठना, चलना, खींचना इत्यादि। फाइन मोटर स्किल्स वो क्षमता है जहाँ छोटे मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे कि हाथों और उंगलियों से कुछ उठाना, पेंसिल से लिखना या चम्मच से खाना। भावात्मक विकास बच्चे का वो क्षमता है जिससे वो अपने भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर सकता है। सामाजिक विकास बच्चे में वो डेवलपमेंट है जिससे वो दूसरों से संवाद कर सकता है और स्वतंत्र बन सकता है। बौद्धिक विकास वो विकास है जिससे उसके सोच विचार विकसित होता है और वो समझ पाता है उसके आसपास क्या हो रहा होता है। मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास के 4 चरण बताए हैं, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चा वातावरण के माध्यम से स्वयं और वास्तविकता का समझ हासिल करता है। वो अपने और अन्य वस्तुओं के बीच अंतर करना सीखता है। फिर दूसरा चरण है प्री ऑपरेशनल यानी कि 2 से लेकर 4 साल तक। बच्चा अभी तक अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होता है और वे चीज़ों को सिंपल तरीके से वर्गीकृत कर सकता है, जैसे कि सब लाल ऑब्जेक्ट्स। अगला चरण है कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि 7 से लेकर 11 साल तक। बच्चे का अब्स्ट्रैक्ट सोच डेवलप होता है इस स्टेज में। और फिर चौथा चरण है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 11 से लेकर 16 साल तक। इस स्तर पर बच्चा निगमनात्मक तर्क और काल्पनिक में क्षमता प्राप्त करता है, यानी कि उसका अब्स्ट्रैक्ट सोचने की क्षमता एक एडल्ट के समान धीरे धीरे होता है। जैसे कि हमने पिछले रेडियो प्रोग्राम में आपसे कहा था, परिवारों में टेक्नोलॉजी का सीधा असर देखा जाता है। आजकल के जीवन में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत चीज़ सीखते हैं और अपना काम, मीटिंग, वीडियो कॉल इत्यादि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी ओर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल गलत परिणाम दिखा सकता है, खासकर बच्चों के विकास में। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत माँ बाप और बच्चों के बीच में बहुत ज़रूरी है। माँ बाप बच्चों से हर तरह की बात करने में शर्माएं या हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा सही ढंग से सही और गलत के बीच में अंतर नहीं समझ पाएगा। अगर बच्चों को किसी तरह की उत्सुकता है तो ये ज़रूरी है कि आप उनको पेशेंस के साथ उस विषय में उनसे खुलकर बात करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे टेक्नोलॉजी या दोस्तों के ज़रिए से जानकारी हासिल करेंगे, जो कि कभी कभी मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ये भी देखा जाता है कि अभी ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार यानी कि सिंगल पेरेंट फैमिली है, और जब माता पिता काम करते हैं तो कुछ बच्चे अकेले रहते हैं और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत हाथ में फंस जाते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ जानकारी चाहिए तो माता पिता अपने बच्चों के साथ इंटरनेट पर उस जानकारी को ढूंढ सकते हैं, ताकि वे बच्चे को समझा सके। चलिए जानते हैं कौन से कारण हैं जो कि बच्चों के विकास को अफेक्ट कर सकता है।

0: एक्चुअली जहाँ पर प्यार होता है, अपनापन होता है, एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान होता है, वहाँ पर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। अभी के लिए 8:50 हो चुके हैं। समय हुआ है हम बढ़े हमारी धरोहर इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे किरण जानकी जी से।
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने एगो विश्व धरोहर पर बात करब जा। कहे कि हम हमेशा बोलीला धरोहर जोन है वो खाली एगो इलाका, एगो विशेष देश खातिर नहीं रहेला, धरोहर विश्व भर खातिर बहुत ज़रूरी है। और हर एगो धरोहर पर जोन ख़ास तौर पर विश्व विरासत सूची में शामिल है, ओकर पर ध्यान देला से ओकर संरक्षण कैसे होवेला, इस सब बात पर गौर करला से और उ लोग के जोन उत्तम व्यवहार आचार बा, बेस्ट प्रैक्टिस, ओकर पर ध्यान देवब जा, तो हमने के अपन देश में कैसे चाहिए हमने के जोन राष्ट्रीय धरोहर बा ओकर पर काम करे के ई सब के प्रेरणा मिलेला। तो चलो पेरिस के एगो जोन आइकॉन है ओकर एगो विशेष जगह है नोत्रदाम गिरजाघर, जहाँ पर कुछ समय आगे आग लगल रहल, ओकर पर ध्यान देवब जा। ये एगो विश्व विरासत स्थल है और 2019 में ही यहाँ पर एगो बृहद आग लगल और ये विश्व विरासत स्थल आंशिक तौर पर बर्बाद हो गल रहल और एके पड़ल रहल बंद करके एकर पर फिर से काम करेंगे। और एके खड़ा करे में कितने जतन लगल, कितने जो गैर सरकारी संगठन बा उ लोग अपन अपन सहयोग दिलन जा। नोत्रदाम

0: कैथेड्रल के निर्माण 1163 में होल रहल और 1345 में ई समाप्त होल रहल। नोट्रडाम कैथेड्रल दुनिया भर में फ्रांसीसी गोटिक आर्किटेक्चर के सबसे परिष्कृत उदाहरण में गिनल जाला। नोट्रडाम के मतलब है हमनी के महिला और फ्रांकोफोन देश में कैथोलिक कैथेड्रल इमारत के यही नाम से अक्सर संबोधित करल जाला। ये विरासत जगह पर बहुत आर्टवर्क फर्नीचर और गोथिक डिजाइन के कितने मूल्यवान आइटम भी बा और पर्यटक लोग के ई कैथेड्रल में मुफ्त में जाके ओकर विजिट करके हमेशा से इजाजत रहल। यहाँ के प्रार्थना सभा में भी भाग लेवे के सब कोई के इजाजत रहल। नोट्रडाम के चारों बगल जब देखबा तो होटल और रेस्तरां बा जहाँ से नोट्रडाम के सुंदर नज़ारा ओकर पूरा रूप सकबा देखे। नोट्रडाम पेरिस के संरक्षण और पुनर्निर्माण के सुचारू प्रगति पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों अपन खुशी जताइले रलन और वो वादा करले रलन कि 2024 में एक भगत लोग खातिर फिर से खोला जाए और ई सच में साकार होल। और आज नोट्रडाम के ई गिरजाघर के बहुत तकनीकी बहुत बारीकी रूप से संरक्षण करल गल और कितने बरिस बाद एकर मौलिक रूप फिर से देवल गल ओकर ऊंचाई के फिर से ख्याल रखल गल। एकर ऊंचाई 96 मीटर ऊंचा है 96 मीटर ऊंचा और ई जगह के फिर से बनावे खातिर सब जितना भी रिसोर्स रहल संसाधन रहल उ सब लगावल गए और ई आग के बाद सकब्जा बोले कि 834 मिलियन यूरो जोन दान में मिलल और बड़ा बड़ा जोन बिलियनेयर टाइकून हवन जा फ्रांस के अंदर उस सब के सहयोग से एकर पुनर्निर्माण बहुत ही नियमित रूप से पूरा होल और आज फिर से ई दुनिया खातिर खोल देवल गल बा। तो एकर से यही बात सामने आवेला कि जहाँ पर विरासत जहाँ पर धरोहर के बात चलेला वहाँ पर खाली एगो देश एगो सरकार के जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर एगो व्यक्ति जे अपन तरीका से सके एकर में योगदान देवे उ लोग सबके भूमिका के बहुत मानल जाला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: तभी आप सुन रहे थे हमारी धरोहर। इस कार्यक्रम को किरण जानकी जी को धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे इस भोजपुरी गीत की ओर और सुबह का नजराना कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। सवेरे से आप हमारे साथ जुड़े रहे साथ देते रहे धन्यवाद। आगे भी साथ देते रहिएगा और उम्मीद करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर भी और साथ ही रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। तो ज़रूर जुड़िए आज की चर्चा इस प्रोग्राम से। हमें दीजिए आज्ञा। हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है सुमेरा, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुमेरा।
1: नमस्कार और आदाब। मुशरस में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की जा रही है। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मुशरस ने रिपोर्ट आम की। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मॉरिशनों को काम मिला है। अन्य खबरों में कल राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी है। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपए दर्ज थे। कई हफ्तों से एमोरशस के सीईओ ने राष्ट्र विमानन कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए है। लिंक्डइन पर उन्होंने एमोरशस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना है, मंडियों पर दोबारा एक्सेस पाना है और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना है। पुरानी जेंडर इक्वालिटी मंत्री कल्पना कुंजू शाह ने अपने वकील के जरिए काफू रिश्ते में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पर एतराज जताया जो पुलिस ने प्राप्त की। कल पोम्पलुमु जिला अदालत में उन्होंने सुनवाई के बाद ये बात कही। कल्पना कुंजू शाह पर चोरी का इल्जाम है और वो अपनी बेगुनाही का दावा कर रही हैं। पुलिस आईटी यूनिट से कांस्टेबल बेग से मांग की गई कि वो पिछले 19 सितंबर को घटी इस घटना की तस्वीरें अदालत में पेश करें। प्रतिरक्षा वकील आइवान कुलेंडावेलू ने इसे पेश करने से मना किया, ये कहकर कि पहले ये पता करना चाहिए कि वीडियो असली है। मामले को अगले 11 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया है। और विदेश में भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। जगह जगह लोगों को इसे बर्दाश्त करने के तरीके तलाशे हुए देखे जा रहे हैं। और इसराइल ने लेबनान के दक्षिण में हवाई हमले किए, कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, उनमें बच्चे और महिलाएं शामिल। ये हमला एक घर पर किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: बुधवार 20 मई आज की तारीख और आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। इसका सीधा प्रसारण इस वक्त रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ इसका सीधा प्रसारण एमबीसी के तीसरे चैनल पर आप देख पा रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी आज के इस कार्यक्रम को आप फॉलो कर पा रहे हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। और हर बुधवार की तरह आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य पर, कुछ ऐसी ज़रूरतमंद बातों के साथ आज जुड़ेंगे। और आज हमारी जो मेहमान है, दो ऐसी विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं बलदीप जी आई हैं यूके से और वे एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हैं और वे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साथ ही साथ वे ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी में बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ वे एक सदस्य हैं इंटरनेशनल ब्रीद वर्क फाउंडेशन की। और आज के इस कार्यक्रम में वे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, उनको आमंत्रित किया गया है अभ्यास, जी हाँ अभ्यास जो है इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस द्वारा वे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी मिस निवेदिता गरोड़िया जो भारत की हैं और यहाँ पर अभ्यास बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस की एक सदस्य हैं। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक पर जो 11 मई से 17 मई तक मनाया गया। और बिल्कुल आज के समय में मेंटल हेल्थ कितनी आवश्यक है और आज तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव का सीधा प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ रहा है।

0: और ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कुछ ऐसा कुछ हम कर रहे हैं जो गलत हो रहा है जिसके कारण हम ये तनाव को हैंडल नहीं कर पा रहे, इन सारी बातों पर आज के इस कार्यक्रम में हम खुलासा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं बलदीप जी का, जिनको सभी लोग प्यार से बल कहते हैं। बल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: एंड साथ ही साथ निवेदिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू रत्ना जी।
0: और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में मैं बलदीप जी से यही पूछना चाहूँगी कि बलदीप जी, मेंटल हेल्थ, जो हमारा माइंड है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, उसका मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है?
1: मेंटल हेल्थ है आपका साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल वेलबींग जो होता है। आप कैसे फील करते हैं, आप कैसे इमोशन को
0: हैंडल
1: करते हैं
0: जी।
1: और आप कैसे बिहेव करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं या आप रिस्पोंड करते हैं। और अगर आप रिस्पोंड करते हैं, इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो मेंटल हेल्थ इज अबाउट जो आपको आपका बिहेवियर कैसा है, आपका इमोशन हैंडल कैसा है,
0: मतलब आप स्ट्रेस के मोमेंट में, इस सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ये जरूरी हो जाता है। और हमारा जो फिजिकल हेल्थ है और हमारा जो मेंटल हेल्थ है, क्या वो आपस में कनेक्टेड है?
1: जी बिल्कुल, वो फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ एकदम कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा सिस्टम एक है।
0: अच्छा,
1: हम देखते हैं सेपरेट लेकिन एक सिस्टम है।
0: हाँ।
1: क्योंकि केमिकल्स जो है स्ट्रेस के, वो बॉडी में भी बहुत होते हैं और माइंड में भी होते हैं। सो एक का इम्पैक्ट दूसरे पर होता है। सो ऐसे सोचिए कि 30% ऑफ लोग जिसको फिजिकल डिजीज है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी है।
0: okay.
1: क्योंकि वो टुगेदर होती हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, तो आपको मोर चांस है कि आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है।
0: ओके okay. और जब हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक की बात करते हैं, तो ये दिन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वीक का ऑब्जेक्टिव क्या है?
1: अवेयरनेस कि हम आप हमारा ध्यान ले आए कि हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सो हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में ये बात करते हैं कि डिप्रेशन कैसे होता है, एंग्जायटी कैसे होता है, स्ट्रेस कैसे दिखता है। तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ हमारे पास भी वो सिम्टम्स है, शायद हमको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए या हमको कोई स्पेशलिस्ट से बात करना पड़ेगा। और वो अवेयरनेस से आपको पता लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है और हमको कुछ करना चाहिए।
0: okay.
1: वो उसके ये रीज़न है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक होता है।
0: बिल्कुल, मैं हमारे श्रोताओं को ये भी बता दूं कि बलदीप जी जो हैं, वो एक पीएचडी स्टूडेंट है, अभी उनका रिसर्च चल रहा है नर्वस सिस्टम रेगुलेशंस और लाइफस्टाइल मेडिसिन में। और साथ ही साथ मैं ये सवाल भी ज़रूर पूछना चाहूँगी बलदीप जी, मैंने कई बार सुना है ऐसे कहते हुए लोगों को दैट इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके, तो इस शब्द का या इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है?
1: अवेयरनेस, हम अगेन जैसे हमने बोला है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक के बदले, वैसे ही हम आप हमारा अवेयरनेस लेके आते हैं कि हम ठीक नहीं हैं, या
0: ये जानना
1: जरूरी
0: है।
1: हमको अगर हम नहीं पहचानते तो हम देखते नहीं है कि प्रॉब्लम है। लेकिन अब हम जब हम अवेयरनेस लेके आ सकते हैं कि हाँ एक प्रॉब्लम है, हम कुछ कर सकते हैं,
0: यानी ये जानना जरूरी है जब हम कुछ बिहेवियर में रिएक्ट करते हैं या उसका रिएक्ट इट्स नॉट लाइक नॉर्मल नहीं है, तो ये हमें ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए दैट ये कुछ गलत हो रहा है।
1: वो अगर हम नहीं सोचते हैं कि नहीं हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ
1: पाएंगे, उसका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि हमको प्रॉब्लम है,
0: प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल,
2: इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं।
0: हाँ जी,
2: इट्स ओके नॉट टू बी ओके में कई बार स्पेसिफिकली यूथ एंड अडल्ट में एक चीज देखी जाती है कि हम अपने जितने भी इमोशंस हैं या जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम अपने तनाव में हैं, इन सभी चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा हम सप्रेस कर लेते हैं या रोक लेते हैं, हम बोल

0: नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या जब हम चाहते हैं कि एक्सप्रेस करें तो हमें लगता है कोई हमें जज करेगा,
1: बिल्कुल,
0: कोई हमें देख लेगा, कोई बोलेगा कि अरे इसको तो एंजाइटी है, ये तो स्ट्रेस में,
1: मतलब
0: ये
1: हमें हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम है पर हम नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं।
0: तो दैट्स व्हाई ये बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ ओके टू बी नॉट ओके, एंड इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प, गो आउट, स्पीक आउट। प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत
1: इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं और हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। तो कई बार अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि आप सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे या सिचुएशंस में से सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक वो बल्क अप करने के बजाय स्पीक आउट करना बहुत जरूरी है।
2: जी, बहुत जरूरी,
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि हम जब हम इमोशंस सप्रेस करते हैं या इवन रिप्रेस करते हैं, जब दबा देते हैं, तो वो हम डीप्रेस कर रहे हैं।
1: हाँ,
2: वो डीप्रेस
1: खत्म नहीं हुआ है
2: जी, वो डीप्रेस करके वो फिर फिजिकल डिजीज भी बन सकता है, क्योंकि हम होल्ड करते हैं वो इमोशन को।
1: बिल्कुल,
2: सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सप्रेस करें, हम उसके बाद उसके बदले हम बात करें या किससे भी बात करें, या फिर एक्सप्रेस करें, अगर एंगर है या सैडनेस है या ग्रीफ है, कि हम एक्सप्रेस कर सकें सेफली और लेट इट गो।
1: हाँ, या बिल्कुल, जैसे इजी लेना है उसको, बहुत ज़्यादा पकड़ के या झकड़ के नहीं रखना है। मेरा अगला सवाल यही होगा बलदीप जी, क्या तनाव के कारण यानी स्ट्रेस के कारण क्या मानसिक बीमारी हो सकती है?
2: जी बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस जैसे हमने बताया है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हमारे लिए बहुत गुड है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो होता है, हमारे केमिकल्स चेंज हो जाते हैं। जब केमिकल्स चेंज हो जाते हैं तो हम रिएक्ट करने लगते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है ऑफ हो जाता है।
1: अच्छा,
2: हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑफ हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो हमारा जो केमिकल्स बहुत प्रो इन्फ्लेमेटरी रहते हैं, तो हमारी बॉडी ब्रेक डाउन होने लगती है।
1: जी जी,
2: और वो मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, क्योंकि हम जैसे हमने कहा था, हम बिग पिक्चर नहीं देख सकते, हम फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पे हम ध्यान
1: देते हैं।
2: जब हम ज़्यादा ध्यान प्रॉब्लम पर देते हैं, हमको जैसे सोल्यूशन नहीं दिख रहा है,
1: सिर्फ
2: प्रॉब्लम दिख रही है, तो वो रिन्यूमरेट करते हैं, वो बार बार वही सोचते हैं, तो हमारे दिमाग पर असर पड़ता,
1: मतलब
2: है,
1: मतलब हम ऑप्शंस नहीं देख पाते, हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि छोटा स्ट्रेस ठीक है बड़ा स्ट्रेस के बजाय, तो इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा एलैबोरेट एग्जांपल्स के दे सकते हैं?
2: या जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हम हमारी बॉडी को पुश करते हैं, पुश कर हम स्ट्रेस में लेके जाते हैं, और जब हम रेस्ट करते हैं वो स्ट्रेस नीचे वापस आता है, तो हम हमारे रेस्ट सिस्टम में जाते हैं। अगर हम वो एक जैसे मसल है, हम स्ट्रेस में लेंगे और फिर रेस्ट में जाएंगे, जितना ज़्यादा ये कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस रेजिलियंस बढ़ता है।
1: ओके,
2: कि कोई भी एनी टाइम हम स्ट्रेस में जाएंगे तो हमारा सिस्टम बहुत जल्दी रेस्ट में आएगा। लेकिन जब हम ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं माइंड और बॉडी में, तो जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, हमारे केमिकल्स चेंज हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: सो एक केमिकल है एड्रेनलिन, वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन बन जाता है, जो हमारे टिश्यूज को ब्रेक डाउन करता है हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये सब होता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हम देखते नहीं हैं कि हमारी एक्चुअली बॉडी ब्रेक डाउन कर रहा है। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे लिए नहीं गुड है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हमारे लिए गुड है,
1: जो हम एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कर सकते हैं।
2: सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, माइंडफुल एक्सरसाइजेस करते हैं,
1: बिल्कुल
2: एनी ऑफ दोज, वी पुश आवरसेल्व्स,
1: यानी हमको अपने आप को थोड़ा उसके लिए तैयार करना
2: जी,
1: है
2: जी,
1: बिल्कुल yeah. बिल्कुल, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, जिम वर्कआउट्स करते हैं, तो ये हमारी जो बॉडी में जो स्ट्रेस की क्षमता है उसको किस तरह से हम कंट्रोल

0: कर सकते हैं फिजिकली, हम किस तरह से कोई भी आने वाला स्ट्रेस होता है उसके लिए कैसे हम अपने बॉडी को तैयार कर सकते हैं, ये हमें एक्सरसाइज द्वारा प्रदान किया जाता है। सो मैं निवेदिता से पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य जो है, क्या हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, और अगर करता है तो किस रूप से, यानी क्या बीमारियां होने के चांसेस हैं?
1: जी ये करता है, बिल्कुल करता है। जैसे कि हम एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। ब्रेन हमारा समझ लीजिए एक बड़ी मशीन है और हमारा शरीर एक मैदान है।
0: ओके
1: ठीक है, अब हम शरीर के इस मैदान समझ लीजिए या एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली बारम्बार कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि बाहर से डिमांड बहुत आ रही है तो इसको प्रोडक्शन बढ़ाना है।
0: हाँ,
1: तो वो मशीन जो थी ऊपर ब्रेन,
0: हाँ,
1: उसने अपने दो सोल्जर्स को या कह दीजिए दो केमिकल्स को भेजा अपने शरीर में,
0: हाँ,
1: कि जाओ तुम उनकी मदद करो और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाओ ताकि बाहर की तरफ हम उसको और भेज सके। इसका एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि जो केमिकल्स जो बालजी ने मेंशन किए कि ये केमिकल जो शरीर में उतरते हैं जब ब्रेन रिलीज करता है अपनी बॉडी में, तो वो आपके शरीर को एक तरीके से एक अलर्ट मोड पे डाल रहा है जो कि आपका प्रोडक्शन हाई करेगा। बट अब ऐसा हो गया है कि बाहर से इतना स्ट्रेस, बाहर का है नहीं एक्चुअली, बाहर हर एक चीज़ स्ट्रेस ही होती है, अगर हम उसको देखेंगे स्ट्रेस की तरह तो वो स्ट्रेस ही होगी। बाहर से इतना डिमांड आता है कि शरीर कभी रिलैक्स ही नहीं होता।
0: सही बात।
1: या शरीर, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई रेस्ट ही नहीं है, तो क्या होता है वो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है या जो ब्रेन रिलीज कर रहा है केमिकल, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता है।
0: मतलब एक तरह से आपका बॉडी थक भी रहा है लेकिन उसको रेस्ट
1: नहीं मिल रहा है
0: बिल्कुल भी।
1: तो अब उससे क्या हो रहा है, जो केमिकल जो एक्सेस प्रोड्यूस हो गए वो शरीर के अंगों को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि एक बार स्मोक कर लिया चलो ठीक है, दो बार कर लिया, बट अब कॉन्स्टेंटली आप कर रहे हैं तो कैसे लंग्स के ऊपर धीरे धीरे धीरे उसका
0: प्रभाव पड़ता है। सही बात।
1: वैसे ही उन केमिकल्स का भी काम है कि जितना वो बढ़ता जाएगा शरीर में उतना आपके बॉडी को स्ट्रेस देगा, आपके
0: आपके जो ऑर्गन्स हैं बिल्कुल, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा,
1: रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इन सब को। तो यस, स्ट्रेस आपके शरीर पे देता है तनाव और आपके शरीर के डिजीज को बढ़ाता है। इसीलिए इस शरीर को पहले आपको रिलैक्स करना है और एक्सरसाइज मोड पे डालना है ताकि बॉडी का रिदम बने, तब जाके आपका शरीर रेडी होगा कुछ स्ट्रेस तनाव लेने के लिए और कुछ तरीके से उसको रिस्पॉन्ड। हर बार रहेंगे उसमें तो कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए आपको रिलैक्स होना, ब्रेथ पे आना बहुत जरूरी है।
0: यानी ब्रेथ जो है वो आपको ब्रेक देता है, आपको रिलैक्स मोड पर लाता है और फिर आपको तैयार करता है कि आप और स्ट्रेस को हैंडल कर सको। जैसे इतना आसान शब्दों में आपने समझाया, जैसे बिल्कुल आज के समय में आपने देखा होगा, मैं और एक एग्जांपल यहाँ शायद जोड़ सकती हूँ, जैसे हम कंप्यूटर पर काम करते हैं और कंप्यूटर में फाइल्स डाउनलोड होती जा रही हैं, आप ट्रैश में नहीं फेंक रहे हो उसे, तो एक टाइम आएगा जब आपका कंप्यूटर क्रैश होगा, यानी आपकी मेमोरी डाउन हो जाएगी, आपका फिजिकल लेवल जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा और एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पर हम बीमारियों का ढांचा बन जाएंगे। और बिल्कुल ये एक बहुत साधारण सी बात है जो हर इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में आपने डिप्रेशन जैसे शब्द सुने होंगे, स्ट्रेस जैसे शब्द हम आए दिन सुनते रहते हैं। मैं यहाँ पर बलदीप जी से पूछना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेस है, चिंता है, हम डिप्रेशन भी इसमें शामिल करते हैं, ये तीनों शब्दों में डिफरेंस क्या है?
2: इतना भी डिफरेंस नहीं है। सो स्ट्रेस जो है, हमने बोला है कि गुड स्ट्रेस भी है और बैड स्ट्रेस भी है। और हमारे पास गुड स्ट्रेस चाहिए फंक्शन करने के लिए, प्रोडक्टिव बनने के लिए। और जो बैड स्ट्रेस है, जब वो बैड स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और हम इमोशन नहीं मैनेज कर सकते, वो इमोशन हम सप्रेस कर करके वो डिप्रेशन बन जाता है। सो वो डिप्रेशन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के कारण होता है। जो दूसरा आपने बोला था,
0: चिंता, स्ट्रेस, हाँ जी बिल्कुल,
2: स्ट्रेस, डिप्रेशन, और एक और
1: ओवरथिंकिंग,
0: बिल्कुल।
2: ओके, ओवरथिंकिंग होता है जब आप स्ट्रेस मोड में रहते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आप एकदम
0: नैरो हो जाते हैं,
2: नैरो फोकस

0: फोकस हो जाते हैं. नैरो फोकस होने के कारण हम ओवर थिंक, वो ही रिन्यूमरेट करते रहते हैं, वो ही ओवर थिंक करते रहते हैं, क्योंकि हम बाहर स्ट्रेस के बाहर नहीं आ सकते और बिग पिक्चर को नहीं देख सकते.
1: मतलब हम सॉल्यूशन
0: फोकस नहीं है,
1: दैट इज व्हाट, यानी सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेस,
0: वो स्ट्रेस, वो चिंता देख रहे हैं. लेकिन अगर हम रेस्ट कर सकें और स्ट्रेस के बाहर निकल सकें, तो फिर हम बिग पिक्चर देख सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. यानी जैसे बलदीप जी बता रहे हैं कि स्ट्रेस को हम इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि उसके बाहर का सोल्यूशन हम नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही फोकस पर कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा थका देता है. और जैसे आपने कहा, निवेदिता जी ने जैसे कहा कि ब्रीदिंग्स के माध्यम से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रिलैक्स मोड पर लाना बहुत ज़रूरी है. जैसे आप पूरे दिन को काम करते हो और रात को जाके घर जाकर सो जाते हो, ये एक तरह से आपको बूस्टअप करता है, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है. चलिए लेते हैं गीत का ब्रेक. और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक पर, जो 11th ऑफ मई से लेकर 17th ऑफ मई, यानी 11 मई से लेकर 17 मई तक मनाया गया, उस पर आज का ये कार्यक्रम आधारित है. एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में.

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम, और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक पर। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ ऐसा कहा और एक बहुत हंसी का सेशन हुआ यहाँ पर। जैसे हम पहले के ज़माने में, मैं समझती हूँ 70-80 years 80-90 साल पहले स्ट्रेस नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं, और अगर किसी को हो जाए तो कहा जाता था कि भाई इनको तो शाही बीमारी हुई है। और मैं ज़रूर बलदीप जी से ये पूछना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेस है ये आया कहाँ से, आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
2: जी, स्ट्रेस हमारे पहले सिस्टम में थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हमको स्ट्रेस चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस नहीं लेते थे तो हम जो टाइगर है हमको हम उससे फाइट नहीं कर सकते,
1: या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती थी,
2: फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, हम या तो फाइट करते या दौड़ते। सो वो हमारा इनेट स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, ये पहला रिएक्शन है हमारी बॉडी में, और ये हमारे को चाहिए क्योंकि हम सर्वाइवल के लिए बने हैं।
1: सही बात।
2: सो years and years हुए हैं कि हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। लास्ट 50 years में हमारा स्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है, और जैसे हम फिजियोलॉजी बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, सेल्युलर स्ट्रेस है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमारे सेल्स में है, बॉडी में है।
1: बिल्कुल।
2: और डिफरेंट स्ट्रेसेस हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दे सकते हैं। सो जो फूड हम खाते हैं, अगर वो प्रोसेस्ड फूड है, वो हमारी बॉडी को सेल्स में वो नई न्यूट्रिशन मिलता, वो स्ट्रेस हो जाते हैं। सो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हमारे अंदर है। अगर हमारे फोन्स को देखते रहेंगे, वो EMF जो डिवाइस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज होती है फ़ोन की, वो हमारे बॉडी को सेल्युलर स्ट्रेस देते हैं। जो हम नींद सोते नहीं हैं प्रॉपरली, हमारे डिफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ऑफ हो जाता है, लो हो जाता है, और हमारी बॉडी को स्ट्रेस मिलता है। सो हमारे स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं। जैसे हम मूव नहीं होते हैं, हमारा स्ट्रेस रेजिलियंस नीचे है, हम खाते नहीं हैं प्रॉपरली जो फूड हमारे बॉडी के लिए गुड है, नरिशिंग है।
1: मतलब जैसे कहते हैं ना कि 15-20 मिनट्स आपको अच्छे से बैठकर खाना चाहिए, आजकल ऐसा है कि कॉन्शियसली
2: करते नहीं है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: हम बहुत अनकॉन्शियसली सब कुछ कर रहे हैं,
1: जल्दी जल्दी खाना है, जल्दी जल्दी टीवी खाते हुए काम करते हैं, या तो फिर खाते हुए टीवी देख रहे हैं,
2: या हम बैठ कर कॉन्शियसली नहीं कुछ कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ऐसे खा रहे हैं कि हमारी, जैसे हमने बोला, बॉडी को स्ट्रेस मिल रहा है। सो जितना स्ट्रेस हम बिल्ड कर रहे हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेस हमारे माइंड पर पड़ता है।
1: ट्रू।
2: इसके लिए हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। सो एक और चीज़ है जो स्ट्रेस हम बचपन से बिल्डअप करते हैं, सो थ्रू ट्रोमास, थ्रू स्टोरीज, पैटर्न्स, जो हमारे हेरेडिटरी है पैटर्न्स, वो सब स्ट्रेस बन जाते हैं। सो हमारी बॉडी पर एक अमाउंट का स्ट्रेस रहता है, लेकिन जितना हम अक्यूमुलेट बाहर से हम करते हैं, हमारा कैपेसिटी यहाँ पर है। सो जब एक और स्ट्रेस ऊपर से आ जाता है, हम रिएक्ट करते हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम पीछे बैठ के रिस्पॉन्ड कर सकें।
1: सही बात।
2: क्योंकि हमारे पास दिखता

0: है कि हम और टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कर सकते हैं.
1: हाँ, मतलब वो चॉइसेस पर हम ध्यान नहीं
0: जी,
1: देते.
0: जी या
1: बिल्कुल.
0: सो हम रिएक्ट करने लगते हैं. सो ये काम है, सांस का काम ये है कि हम कितना स्पेस दे सकते हैं कि हम रिएक्ट ना करें, लेकिन वो जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है वो नीचे करें, तो को सो हम कैपेसिटी से रिस्पॉन्ड कर सकें.
1: मतलब सोचने का आपको टाइम मिलता
0: जी,
1: है, जैसे आप बता रहे हैं कि वो पॉज जरूरी है. जब एक चीज हो रही है तो वो पॉज नहीं दे पाते और हम लोग कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं. तो ये एक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि ये पॉज लेना बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, सांस लेना बहुत जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि जब कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है, पहली चीज जो हम नहीं करते वो है सांस. सांस नहीं लेते. मैं समझती हूँ हमारी जो सांसें हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्टेंड हो जाएंगी. निवेदिता, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी?
2: जो गैप क्रिएट करने की बात हुई है या जो पॉज करने की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बन गई है आज के समय में. हम बहुत जल्दी हर एक चीज़ में नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, हम हर एक चीज़ में बोलना चाहते हैं, अपने इनपुट्स देना चाहते हैं, या फिर समझ लीजिए कि हमें वहाँ पहले होना है. एक स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस जैसे कि तनाव या एक प्रेशर होता है पीछे कि करना है करना है करना है, ये हमेशा पीछे लगा रहता है. तो इसका एक बेसिक अगेन एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं, या बेसिक डिडक्शन क्या है कि मुझे जैसे कि किसी व्यक्ति ने बहुत कुछ बोला, उस व्यक्ति की मेरे शरीर में एक मेमोरी छप गई है, इम्प्रेशन छप गई है. अब वो व्यक्ति जब वापस मुझे मिलेगा या वैसा ही व्यक्ति मुझे मेरी लाइफ में आगे कोई मिलता है, तो मेरे जो बॉडी के इम्प्रेशन है वो शरीर के केमिकल से मिलते हैं. जब ब्रेन रिलीज करता है कि अरे ये व्यक्ति गुस्से में मेरे को कुछ बोल गया है तो मेरे अंदर भी गुस्सा, तो गुस्से के केमिकल्स और उन मेमोरीज को जब मिलता है तो वो इमोशन बनते हैं, उसे कहते हैं इमोशंस. अब जब वो इमोशंस एक्टिवेट होने लगते हैं, हाई होने लगते हैं कि गुस्सा भरने लगता है, तो वो आपके इमोशंस थॉट्स में बदल जाते हैं कि हाँ अब आपको वो विचार बना रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये सिचुएशन
1: मतलब
2: ऐसा है.
1: भले आपके सामने ना हो पर उसका ख्याल हमेशा दिमाग पे रहता है.
2: इसी से क्या होगा कि वो थॉट अब पूरी तरह से आप पे हावी हो गया है.
1: ट्रू,
2: मतलब कि अब आप वो थॉट आपके जिब्वा पे लाएंगे या एक्शन पे लाएंगे, आप कुछ फेंकेंगे या गाड़ी की डोर को बहुत जोर से
1: तोड़ेंगे,
2: कुछ भी एक्शन आ गया, बोल दिया, तो उसको बोलते रिएक्शन. आपने रिएक्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड. तो अब हमारा जो थॉट है और हमारा जो एक्शन है उसके बीच में एक गैप बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हम समझ ले कि अगर ये नहीं करते हैं तो हम बाद में गिल्टी हो गए कि मैंने मेरे बॉस को
1: मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कर दिया. नहीं, सही बात है, बिकॉज हम कई बार गुस्से में कहते हैं ना कि हमने गुस्से में बहुत नुकसान कर दिया. मतलब जैसे वो रिएक्शन का जो टाइम है ना, हम उसके बीच में पॉज नहीं देते. एक्शन और रिएक्शन के बीच में वो पॉज आना बहुत ज़रूरी है.
2: तो वो थॉट और एक्शन के बीच में गैप कैसे आएगा? जब आप एक अवेयरनेस लाएंगे. अवेयरनेस कैसी आएगी कि जैसे कुछ भी हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत एंगर आ रहा है, मुझे सैडनेस आ रही है, तुरंत अपनी एक लंबी गहरी सांस ली, उसे रोक लिया, वहाँ एक गैप ला ली कि सांस को भर के रोका और सांस छोड़ के फिर से रोका. तो सांस के बीच में गैप आ गया, मतलब आपके थॉट्स के और एक्शन के बीच में भी गैप आ ही गया है.
1: मतलब आप उसको ब्रिज नहीं कर रहे हो, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो. जो इमोशंस जो हो सकता है कि उस टाइम पर नेगेटिव इमोशंस या जो भी नेगेटिव थॉट्स या जो भी गुस्से वाला या सैडनेस वाला जो भी इमोशंस डेवलप हो रहा है, आप उसको शांत कर रहे हो.
2: Exactly.
1: उसको एम्पावर नहीं कर रहे हो, जो आपके दिमाग को बिल्कुल शांत रखता है. और मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी बलदीप जी से, अभी थोड़ी देर पहले हम ब्रीफिंग सेशंस में बात कर रहे थे, आपने कहा ना कि बहुत तरीके हैं जिसके कारण हमारे शरीर में स्ट्रेस होता है, और जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जैसे खाना खाना या नींद ना आना या ये सारी चीज़ें, इस पर भी थोड़ा सा आप एलैबोरेट करें.
0: ये ना एक डिसिप्लिन है, मेडिसिन का डिसिप्लिन है, लाइफस्टाइल मेडिसिन. उसमें 6 पिलर है. वो 6 पिलर है कैसे हम खाते हैं, क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, कैसे मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. तीसरा है हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं. चौथा है हम सोते कैसे हैं, हमारी रूटीन नींद की कैसे है, हाइजीन, वो से स्लीप हाइजीन कहते हैं. फिफ्थ है हमारे रिलेशनशिप्स कैसे है. रिलेशनशिप्स

0: अगलों के साथ और ऑल्सो रिलेशनशिप हमारे साथ, हमारी बाउंड्रीज कैसे है, हम कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को. और सिक्स्थ है सब्सटेंस अब्यूसेस, कि हम मैनेज कैसे करते हैं सब्सटेंस अब्यूसेस को. सो इसमें हमने पेपर लिखा था कि स्ट्रेस जो है अंडरलाइंग पिलर है सबके लिए. अच्छा. अगर हम स्ट्रेस नहीं मैनेज करते तो हम खाते नहीं राइट, हम मूव नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम सब्सटेंसेस के लिए जाते हैं, हम सोते नहीं करेक्टली और हमारे रिलेशनशिप सफ़र करते हैं. सो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. और स्ट्रेस को मैनेज करना जैसे सांस के लिए
1: जी.
0: सो अगर वो स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो कोई भी पिलर से बिल्डअप हो सकता है. अगर हम राइट नहीं सोते हैं वो भी स्ट्रेस को इम्पैक्ट करता है. अगर हम खाते नहीं राइट तो वो इनसाइड हमारे सिस्टम को स्ट्रेस देता है, तो हमारे केमिकल्स फिर ऊपर आते हैं. सो खाना कॉन्शियसली कुक करना, कॉन्शियसली खाना जो अर्थ से प्लांट फूड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: क्योंकि उसमें फ्रूट्स और जो नेचुरल
0: न्यूट्रिएंट्स काफ़ी है हमारे हमारे ग्रोथ हमारे वेजिटेबल्स से. जो हम अब खाते हैं वो बहुत प्रोसेस्ड है, उसमें तो कोई लाइफ नहीं है.
1: और जैसे मतलब फ्रिज में से निकाला, जल्दी से गर्म किया और खाया, बिकॉज
0: आपने न्यूट्रिएंट्स को तो किल कर दिया है.
1: सो
2: माइक्रोवेव
0: जी,
2: रेफ्रिजरेटेड, ओवरकुक्ड, इवन कुकर में बनाया हुआ खाना भी आपके लिए आज के समय फ्री, क्योंकि आप प्रेशर कर रहे हो उसे कि जल्दी बन जाए वो.
1: मतलब उसको नेचुरली उसको नहीं पकने दे रहे हैं.
2: पहले के जमाने में हम कुकर वुकर नहीं होता था, पहले हम लोग ओपन मिट्टी के बर्तन में, ओपन एयर में, सूर्य के नीचे बनाते थे उसको. तो वो सब चीज़ें नहीं है. कुकर हो गया, अवन हो गया, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का खाना, कैंड फूड, पूरा सुपर मार्केट में देख रही हूँ कि हर एक चीज़ ऐसी भरी हुई है.
0: जी, या सो इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान दें कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं, और कैसे हम कॉन्शियसली बैठ के खाते हैं. सो वो एक है. स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है. स्लीप हम उठते और सोते कैसे हैं. सो उठते, जब हम उठते हैं, जब हम धूप को देखते हैं, वो हमारा कोर्टिसोल जो स्ट्रेस केमिकल है वो बढ़ता है, एकदम हाई हो जाता है.
1: अच्छा.
0: लेकिन जैसे डे जाता है आपका स्ट्रेस केमिकल नीचे आता है, आपका मेलाटोनिन ऊपर, जो स्लीप हार्मोन है, वो ऊपर जाता है. सो हम रियली नाइसली स्लीप कर सके रात को. जो हम 3-4 बजे सवेर को उठते हैं, 2-3 बजे, और हमारा माइंड ऑन रहता है, हमारा मेलाटोनिन लेवल बहुत लो है. क्योंकि हम सुबह को कॉफ़ी ले लेते हैं, सन को नहीं देखते हैं. सो आर्टिफिशियल कोर्टिसोल है.
1: देर तक जागना और देर तक सोना.
0: जी जी.
1: तो ये एक हेल्थ को कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो यही सारी जो गलतियां हैं हम आए दिन करते हैं. Absolutely. जैसे आप बता रहे हो कि खाना प्रोसेस्ड बहुत हो गया है. हालांकि हम मॉरिशस में ट्रॉपिकल आइलैंड पर रहते हैं और यहाँ पर जो ताज़ी सब्जियाँ हैं, ताज़े फल हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं. लेकिन हम आज के लाइफ में फास्ट फूड की ओर ज़्यादा दौड़ रहे हैं. कहीं ना कहीं आए दिन हमने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं और आए दिन हम ये लोगों को बताते रहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है. पर कहते हैं ना कि कई बार हमारी ज़बान को जो अच्छा लगता है वही हमारा मन वहीं पर दौड़ता है. मतलब जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है हम उसी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं. और अभी थोड़ी देर पहले बलदीप जी हमें एक इतना अच्छा एग्जांपल दे रही थी कि एक बोल में रखी हुई है बहुत सारी चॉकलेट और एक तरफ रखा है एप्पल. हालांकि ये सब जानते हैं कि एप्पल बहुत ज्यादा हेल्दी है, पर हमारा ध्यान भागता है बिल्कुल चॉकलेट की ओर. तो ये हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है.
0: अगर हम एक बार करें तो वो ठीक है, लेकिन हम बार बार वही करते रहे तो वो हैबिट, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन, वो हमारे बॉडी को ब्रेक डाउन करता है.
1: बिल्कुल.
0: अगर हम एप्पल को चूज कर सकें और एवरी नाउ एंड देन हम चॉकलेट ले लें, कोई नुकसान नहीं होता है.
1: बिल्कुल. जैसे बैलेंस में आप
0: बैलेंस में
1: बैलेंस में लो ओकेजनली. पर हमारा होता है उल्टा कि हम ओकेजनली एप्पल खाते हैं और रूटीन हमारा बन चुका है चॉकलेट. तो यहाँ पर नुकसान है. बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है. चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि स्मार्ट कुकिंग और किस तरह से कम समय में हेल्दी खाना तैयार होना चाहिए, किस तरह से वो हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम ना दे,

इन सारी छोटी छोटी बातों पर और थोड़ी और ज्यादा चर्चा करेंगे एक गीत के ब्रेक के बाद। वैसे आपको बताते चले, हमारे तकनीक पर हमारा सहयोग दे रहे हैं कादिया जी, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट इस वक्त है दीपशिका, और हमारे साथ प्रोड्यूसर रितेश मोहाबिये जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ, बस बने रहें, 10 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा।

यहाँ निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब सर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगाने से क्या होगा। जब घर के बेटा

होगा अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम आज हमारे साथ ऐसे मेहमान जो आए हैं यूके से, बलदीप जी और निवेदिता जो है अभ्यास की एक सदस्य और आज हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं ज़रूर निवेदिता से

0: बिना अभी हमारा रूटीन हम लोग नहीं लग कर पाते. क्यों कॉन्शियस ईटिंग ज़रूरी है? आपको नहीं पता कि वो भोजन किस मानसिकता से प्रिपेयर किया गया है. True. क्या इमोशंस उस भोजन में हैं, क्या वाइब्रेशंस उन भोजन में हैं. तो आप खा तो रहे हैं बट आप उन इमोशंस को भी ग्रहण कर रहे हैं अपने शरीर में, और उसी से ही वो आप बन भी रहे हैं. बाहर जा रहे हैं कुछ खा रहे हैं या किसी ये भी कैसे भी हाथ का बना के खा रहे हैं. दो मदर्स कुक फूड इज ऑलवेज लव्ड कुक फूड, मतलब अपनी माँ का हाथ का खाना
1: सबसे केयरिंग से बनाया जाता है. बिल्कुल.
0: बट कई बार ऐसा होता है कि हम हर बार नहीं खाते हैं, वो कहीं ऐसी चीज़ है. तो हमारे इमोशंस उन भोजन उस भोजन को इम्पैक्ट ना करे, किसी और के इमोशंस उस भोजन को इम्पैक्ट ना करे. हमारे जो इमोशंस है वो 60-70% कम हो जाएंगे अगर हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं इन 5 स्टेप्स से. सो आपको करना कुछ नहीं है. जब भी आप भोजन कर रहे हैं, आपके 3 टाइम के मील्स ले रहे हैं, आपको हमेशा पहला डाइनिंग टेबल अवॉइड करना है.
1: ओके.
0: नीचे बैठ के भोजन करना,
1: जो पहले पद्धति हुआ करती थी, प्राचीन पद्धति,
0: नीचे शुरू करना है. कि पहला स्टेप है, पहले तो नीचे आ जाओ, क्रॉस लेग करके बैठिए, आराम से बैठिए. कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, टेक अ सपोर्ट, कुछ ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ आराम से बैठ सको. उससे क्या होगा, पैरों में सर्कुलेशन नहीं होगा ब्लड का, तो जो बचा हुआ सर्कुलेशन है वो आपके एब्डोमेन, आपके
1: डाइजेस्टिव
0: अग्नि में होगा. तो जठराग्नि में जब अगर अग्नि बढ़ती है तो डाइजेशन बहुत जल्दी होने लगता है, पाचन तुरंत होने लगता है. ये बहुत ज़रूरी है कि हम नीचे बैठ के भोजन करना फिर से शुरू करें. साइंस कहता है बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है. सेकेंड पॉइंट है, दूसरा स्टेप कॉन्शियस ईटिंग का है, टेक अवे ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस. आपके जितना भी फ़ोन, मोबाइल, टीवी, कॉन्वर्जेशंस, गॉसिप्स हम कॉर्पोरेट में देखते
1: थोड़ी देर के लिए, मतलब 10 मिनट के लिए उसको दूर करें.
0: कॉन्वर्जेशन ऑन वाइन, कुछ भी ऐसे हम करते रहते हैं, खुद के थॉट्स, अकेले बैठे हैं तो मन में विचारों को एंटरटेन करेंगे कि अच्छा ऐसे अच्छा वै, सबको दूर कर दो. टेक अवे ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस, सबको डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दो. भोजन आ गया है, अब उधर ये दूसरा फोकस, दूसरा स्टेप है
1: जी,
0: कि अपने डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना है, थॉट्स भी नहीं. तीसरा स्टेप है, आपका जब भोजन आ जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट विथ प्रेयर. हमेशा प्रार्थना से शुरू करें.
1: एक थैंक्स गिविंग होना बहुत जरूरी है.
0: एग्जैक्टली. कि आप ग्रेटफुल हैं, आप ग्रेटिट्यूड में, आप उसके लिए कृतज्ञ है कि आपको ये भोजन मिलता रहा.
1: सही बात.
0: और उसी से आपकी वाइब्रेशंस भी शांत होंगी, मन का विचार शुद्ध होगा और उस भोजन में भी वही विचार जाएंगे.
1: True.
0: जिससे आपको शक्ति मिल रही है, शारीरिक और मानसिक. इसलिए तीसरा स्टेप है हमेशा प्रार्थना करना, भोजन मंत्र या जो भी मंत्र आपको आता है. चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियस ईटिंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, हम लोगों ने भोजन किया है बहुत अलग अलग तरीके से, चम्मच से, हाथ से, चॉपस्टिक से, या फोक, नाइफ, कटलरी, बहुत इन सबको अलग
1: हाथों से,
0: हाथों को भी अगेन नहीं यूज़ करके, पूरी फिंगर्स नहीं यूज़ करनी है, हमें यूज़ करना है सिर्फ ये 3 फिंगर. जो नहीं देख पा रहे उनके लिए मैं बताती हूँ, आपकी रिंग फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर और आपका थंब, इन ही फिंगर को आपको यूज करके भोजन को उठाना है और लेना है, उठाना है और लेना है. आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है उसको आप टच भी नहीं करेंगे फूड में, टच भी नहीं. इससे क्या होगा, आप पहली बार कभी चॉपस्टिक उठाते थे कैसे अवेयर हो जाते कि अरे मेरे को भोजन कैसे उठाना है, पहली बार फोक यूज करते थे,
1: आपका माइंडफुलनेस आप ईटिंग करोगे तब.
0: तो इसी से आप अपने आप को पैटर्न में ब्रेक करते हो कि कुछ छोड़ो, बाजू में सब हटाओ, पहले मुझे इस 3 उंगली से कैसे खाना है वो. इसलिए आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ ये अपान मुद्रा कहा जाता है, अगेन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. तो ये आपका 4th स्टेप कि आपको इन्हीं 2 फिंगर और थंब को मिला के भोजन करना है हमेशा.
1: बिल्कुल.
0: अगर टूट गया तो वापिस आ जाओ, इसी से करो, कोई चारों 5 उंगलियों को मिला के नहीं करेंगे. 5वां जो लास्ट है वो है क्रिएट अ गैप. जो हम गैप की बात कर रहे थे वो भोजन से भी हो सकता है, कि आप जब भी एक मोरसल या एक
1: निवाला
0: लेते हैं तो उसके और दूसरे निवाले के बीच में गैप होना बहुत जरूरी है. हम करते क्या, ग्रीडी, खुद ही की थाली में ग्रीडी बन जाते
1: हैं, जल्दी जल्दी मतलब खाना है. कई बार ऐसा होता है कि मतलब अभी हमारे पास होते नहीं है टाइम, अब मतलब 2 मिनट में हमें खाना सारा खत्म करना है. exactly. खाया पचाया, मतलब चबाया भी नहीं ठीक से. कई बार हमारी आंतों पर ही हम बहुत ज्यादा जोर दे देते हैं.
0: तो उससे क्या करना है, एक गैप क्रिएट करना है आपको. सिंपली एक बार मोरसल लिया,

0: अच्छे से चबा लिया, उसकी टेस्ट ली, टेक्सचर लिया, उसका स्मेल लिया, और फिर क्योंकि वो 10 मिनट जो भोजन कर रहे हो वो आपका फ्यूचर बना रहे हैं, वो आपका हर एक चीज बना रहे। तनाव में करोगे
1: वही होगा।
0: आराम से करोगे कुछ अच्छे क्रिएटिव आइडियाज, 60-70 % इमोशंस निकलेंगे।
1: बिल्कुल सही,
0: बहुत जरूरी है इन 5 स्टेप्स।
1: बहुत बढ़िया कहा निवेदिता जी। और साथ ही साथ बलदीप जी को भी मैं पूछना चाहूंगी, आप बता रहे थे कि किस तरह से वो पॉजेस क्रिएट करना है। हम लोग लगभग आज के प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं, तो कम शब्दों में और इसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे, क्या मैसेज देंगे आप हमारे श्रोताओं को?
2: ये हमने आइडेंटिफाई किया है ये आज की कॉन्वर्सेशन से कि पोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पोज हो सकता है हमारे सांस के साथ, और अगर हम सांस ले सकते हैं पोज में, वो है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग बहुत मशहूर है, सब करते हैं, फ्रॉम नेवी, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, यू नो, सब करते हैं पोज लेके आने लेने के लिए। और वो होता है 4 सेकंड इनहेल करना, 4 सेकंड सांस रोकना,
1: होल्ड करना,
2: 4 सेकंड एक्सहेल करना, और 4 सेकंड होल्ड करना। वो बॉक्स बन जाता है।
1: बिल्कुल सही।
2: सो अंदर सांस लीजिए 4 सेकंड, होल्ड करिए 4 सेकंड, बाहर ले आइए 4 सेकंड, और होल्ड करिए 4 सेकंड, और करिए 4 टाइम्स। सो 4-4-4 हो जाता है
1: जी।
2: वो सिर्फ 4 टाइम्स करने से आपका एकदम स्टेट बदल जाता है। हम आप जाते हैं स्ट्रेस के दूर, और काम,
1: बिल्कुल मन शांत होने लगता है,
2: शांत में।
1: बिल्कुल, बिल्कुल
2: जी, वो पोज बहुत इम्पोर्टेंट है, और अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर
1: मैं समझती हूँ हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, पर ये आपने जिस तरह से कहा, मैं एक बार बिल्कुल इसको दोहराना चाहूंगी। जैसे बलदीप जी ने बताया कि ये आप कहीं पर भी कर सकते हो, आप गाड़ी ड्राइव करते हुए भी कर सकते हो, काम के दौरान भी आप ये कर सकते हो। यानी 4 सेकंड्स आपको सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड उसे होल्ड करना है, 4 सेकंड आपको उसे बाहर निकालना है, और 4 सेकंड उसे फिर होल्ड करना है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक, बहुत ही सिंपल तरीका, आप खुद करके देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये आपकी मानसिक तनाव को, आपकी शारीरिक तकलीफों को किस तरह से धीरे धीरे करते हुए ये नियंत्रण में लाता है। ये पॉज लेना बहुत आवश्यक है, और जैसे हमने शुरू में बताया 11 मई से 17 मई के बीच मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक, और इसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन शैली को बदलने में उतारें, तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जीवन बिता सकते हैं। बलदीप जी, जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे?
2: मारा यही मैसेज है कि जो ये पोज हमने बात की है,
1: हाँ,
2: ये 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड बॉक्स ब्रीदिंग का, ट्राई करिए एक बार एवरी आवर।
1: अच्छा।
2: सो 12 बजे 1 मिनट के लिए, 1 बजे 1 मिनट, सो ऑन द आवर, एवरी आवर स्टॉप एंड डू द बॉक्स ब्रीदिंग, जस्ट 4 टाइम्स, एंड सी, देखिए कि ये आपके मेंटल हेल्थ को कैसे चेंज करता है।
1: सही।
2: क्योंकि यही सांस ने आपको अवेयरनेस ले आएगा कि आपका मेंटल हेल्थ कैसे है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल, जो भी तनाव है, तनाव को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपने शरीर को तैयार ज़रूर कर सकते हैं उस तनाव को किस तरह से हैंडल करना है, और तनाव के एक्शन में हम किस तरह का रिएक्शन देते हैं। बस यही है ज़िंदगी। और आज के इस कार्यक्रम में बलदीप जी आपको, और निवेदिता जी आपको, और साथ ही साथ अभ्यास की पूरी इंस्टीट्यूट को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और बेशक हमारे सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम बता दें, आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिला है काद्या जी का, साथ ही साथ दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और हमारे साथ बने रहे रितेश मुहाविया, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहे। आने वाले दिनों में और ऐसे कई प्रोग्रामों को लेकर हम उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: चलिए अभी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रौदाब। कल राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी हैं। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तौर विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपए थे। कई हफ्तों से मॉरिशस के सीईओ ने राष्ट्र विमानन कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए हैं। लिंक्डइन पर उन्होंने एयर मॉरिशस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंदियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। पर्यावरण पुलिस कचरों के फेंके जाने के संदर्भ में सख्त रवैया जारी रख रही है। गुडलैंड्स में फेंके कूड़ों में से मिली एक रसीद से पता चला कि हरकत के पीछे कौन है। पुलिस एक एक बात पर ध्यान दे रही है। गए दिनों में कई कार्रवाइयां चलाई गई, 3 लोगों को कंट्रावेंशन दिया गया है। नेशनल वेयरहाउस की स्थानांतरण परियोजना के तहत देश के मुख्तलिफ इलाकों में भंडार केंद्रों को कायम किया जाएगा। वितरण प्रणाली के पुनः आयोजन के सिलसिले में ये कदम उठाया जा रहा है। नए संगठन का मकसद संबद्ध संस्थाओं में सप्लाई को आसान बनाना है। इस परियोजना पर सबकी अलग अलग राय है। विदेश में इसराइल ने लेबनान के दक्षिण में हवाई हमले किए। कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, उनमें बच्चे और महिलाएं शामिल। ये हमला एक घर पर किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। ओल्ड ट्राफोर्ड लेन लेस्पेरांस कोचे मिलिटिया में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड श्री अंबिका दत्त सुखलाल जो सुगान के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। आज साढ़े तीन बजे के घर ओल्ड ट्राफोर्ड लेन लेस्पेरांस कोचे मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस कोचे मिलिटिया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM एवेन्यू कॉर्डिनल नंबर 5 पाई पोर्ट लुई में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड बीबी जहाइमुन जिनाली जो मिस कानाऊ के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। जो मिस कानाऊ के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 11 बजे इनके घर एवेन्यू कॉर्डिनल पाई इसे उठाकर दफनाने के लिए पाए का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू डेट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:04। आज है बुधवार 20

इसमें रेडियो मॉरिशस पर हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में, और अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। ऐसे सवेरे से ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। श्रोताओं, जीवन में हमें कभी कभार जाने अनजाने में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में ना कभी हमने सोचा होता है, ना जिसके बारे में हमें जानकारी होती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो है, मन में विश्वास हो तो हर मुश्किल का सामना हम दृढ़ता से कर सकते हैं। और जब भी कोई मुश्किल या कोई परेशानी, कोई संकट आता है तो ईश्वर तो होते ही है ना अपने भक्तों के साथ, इसलिए ईश्वर पर सदा विश्वास बनाए रखना चाहिए। कहते हैं, जीवन में कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, ईश्वर सदैव

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और श्रोताओं, अभी के लिए समय हुआ है हम बढ़े कार्यक्रम विनय अंजलि की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में।
2: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।

प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप एक भजन का रसास्वादन करें, फिर आज के कार्यक्रम में पंडिता प्रेमिला शिरतन जी का संदेश सुनेंगे।

0: श्रोताओं, हम पंडिता प्रेमिला जी का अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज का संदेश प्रस्तुत करें।
1: ओम इंद्र श्रेष्ठाणि द्रविणानि देहि चेत

इंद्र श्रेष्ठ धन दान दे यशकारी स्वरूप बलवर्धक सौभाग्य प्रद और आनंद स्वरूप चित दक्षता निरोग मन वाणी मधुर कर दान उत्तम दिन को प्राप्त कर पावे सब वरदान। सम्माननीय श्रोतागण सादर नमस्ते। श्रोताओं ऐश्वर्यशाली प्रभु से हमारी विनती है कि हमें श्रेष्ठ सर्वोच्च उत्तम कोटि का धन बल ज्ञान तेज वीर्य प्रदान करती रहे, सुबुद्धि सुकौशल प्रदान करें ताकि सौभाग्य एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे। इन्हीं धनों से हमें सब प्रकार से पुष्ट कीजिए ताकि मन खुशियों से झूम उठे। प्रभु हमें उस धन की चाह है कि प्रेम की मोतियों की वर्षा होती रहे। आपके मंगल मिलन में वरदानों की इतनी झोली भर जाए कि आपके उपकारों आभारों में गदगद मन आपके गुणों को गाते नहीं थकेंगे। शरीर की निरोगता से बल बढ़ाते हुए वाणी की मधुरता पाने की विनय है, जिससे हम यज्ञ कर दिन दुगुने और रात चौगुने खूब फले फूले, जो हमारे लिए सर्वोत्तम उपहार की भेंट रहे। हम इस आशीर्वाद मंत्र से अति प्रशंसनीय धन श्रेष्ठानि द्रविणानि की इच्छा है, दक्षस्य कर्म करने की सामर्थ्य की चितिम प्रसिद्धि को दीजिए, जो यश कीर्ति से सौभाग्य पा सकें। आप प्रभुवर से धनों की पुष्टि की विनय है। रई नाम पोषणम, जिसे धार्मिक आर्थिक धनमाद देखने को मिले, बलवर्धक अंगों की तनु नाम अहिंसा को पाने की ललक है। वाच स्वादनम, हमारी वाणी में मिठास हो जो मन को हरने वाली हो, आपके ऐश्वर्य धन हर धन के आसक्त बनाते रहे, जिसे चित में आपके धन की इच्छा आजीवन बनी तो रहे। और उन हाम सुदीनत्वम, दिनों की उत्तमता को पाकर ऐसे दिन व्यतीत कर सके।

जिसमें शुभ कार्य होती रहे। ऐश्वर्य ईश्वरीय धन से हम याचक याचना कर प्रभु सानिध्य ज्यादा सुख पाते हैं। हम सदा प्रभु से प्रार्थना करते कि हमें दान में वह धन चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय शांतिमय हो सके। आज हम कनिष्ठ वरिष्ठ धनिष्ठ या बहुत बड़ा धनवान बनना चाहते हैं। धन के कारण चोरी डकैती अपराध हिंसा छल कपट अहम बहम मतभेद व्यसन वैर विरोध अविश्वास दुराचार आदि धन आकर्षण का कारण होता, जिससे दूर कर लोभ वृत्ति के ताप वृद्धि काम वृत्ति की दावाग्नि क्रोध के ज्वार की ज्वालामुखी अर्थव्यवस्था को चौपट कर डालती है। इसलिए धन के स्वामी से ऐसे धन की चाह रहती जो धन को हमारे साथ सदा रहे। जैसे मंत्र कह उठता इंद्र श्रेष्ठाणि द्रविणानि देहि, हमें वह धन की इच्छा नहीं है जो धन पदार्थ साधन के प्रति जड़ता चित्त में ला सके, जो मिठास हमें अस्वस्थ बना दे, पर हमारे लिए ऐसे साधन की आवश्यकता है जो जीवन पूर्ति में सहायक बनता। श्रोताओं, धन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक धन जमीन जायदाद मोटर बंगला मकान दुकान जो शारीरिक सुख देता। आध्यात्मिक चैतन्य गुण धर्म जिसे संतुलित जीवन का काम आते हैं, जैसे प्रार्थना उपासना भक्ति मन बुद्धि आत्मबल बढ़ता। जड़ संपत्ति भौतिक आवश्यकता पूर्ति करती और आध्यात्मिक धन गुणवान बनाकर सुख शांति से संपन्न करता। गुणहीन दुख अशांति से विपन्नता में रहता, इसलिए इंद्र से श्रेष्ठतम धन की कामना करते हैं। आगे मंत्र की पुकार है, चितिम दक्षस्य सुभगत्व मस्मे, चित की दक्षता से सदा सुकर्म अहिंसा से हम करने की विनम्र निवेदन करते, ताकि सौभाग्यमय जीवन जीने के लिए शांति तो पा सकें। स्थूल धन प्राकृतिक होता, जैसे वन वनस्पति जल खनिज पदार्थ हीरे जवाहरात होते, मनुष्य कृत होता, जैसे वस्त्र आभूषण मुद्रा वाहन और विभिन्न जीवनोपयोगी वस्तु। प्राकृतिक प्रदत्त धन हम प्राणियों के लिए होते, जिससे हम पाप पुण्य कर्म से पाते हैं। अध्यात्म धन ज्ञान आत्मिक गुण शक्ति या श्रेष्ठ कर्म के प्रारब्ध से पाते। श्रोताओं, जो हमारे साथ जाते इसलिए सौभाग्य गुणों से अच्छी आदतों से दूरदर्शिता से अनुशासन से संतोष से और परमात्मा के मैत्री भाव से धनवान बन जाते हैं। जो ज्ञान धन आचरण में दूसरों को सुख देने का अज्ञानी की सेवा करने के काम में आने की भी नहीं है कि श्रेष्ठ ज्ञान गुण और शक्ति उपयोग में लाने का सामर्थ्य तो पाकर मंगल शुभ शुद्ध सौभाग्यमय कर्म कर सके। जिस क्रिया में लोभ शून्य सर्वस्व त्यागी परोपकारी संतुष्ट से हमें ज्ञान गुण शक्ति की अखूत सौगात मिले, सौभाग्यमस्तु एवं शुभम भवतु का आशीष तो मिले। सूक्ष्म धन का उपयोग चाकरी करने से बचाकर हमारा चाकर बन जाता, यह धन खरा एवं अविनाशी होता। इसलिए मंत्र का कथन है, पोषम रयिनाम अरिष्टिम तनुनाम, हे प्रभु हमें धन की अरिष्टिम अहिंसा के लिए हमारी आराधना है। रई की ज्योति से हमारे अंगों एवं संतानों को ज्योतित कीजिए। हमें पौष युक्त संपत्ति की कामना है जिसे दीर्घायु तक हम निरोग स्वस्थ शरीर पाकर सात्विकता से जी सके। गुणों के आगे धन की शक्ति पराजित हो जाती, आध्यात्मिक मार्ग भी चयन कर लेते। इसलिए इस दान को हम स्वेच्छा से अपनाते हैं। जो धन हम ज्ञानी को गुणहीन महत्वहीन से महत्वपूर्ण बनाते, जो धन न छीना जाता न त्याग ही सकती न

0: अभी स्थूल धन की तरह नष्ट ही होता, जिससे श्रद्धा एवं सम्मान हमें मिलता जो धनाढ्य को नहीं मिलता, जिससे धनाढ्य और ज्ञानी एक दूसरे का सम्मान करते, जिसका महत्व है ज्ञान जो हीन दिन या खीन लोगों को औरों से भिन्न एवं पूर्ण बनाता। श्रोताओं, यह धन बांटने से समाप्त न होता, जो ज्ञान धन सर्व ऐश्वर्यमान से ही पाकर लंबी आयु तक ज्ञान का अमर प्रकाश फैलाते हैं। हमारा तन निरोग और सात्विक रहता, ऐसे धन के लिए सदा अपनी प्रखर बुद्धि से अध्ययन करते, जिसकी कृपा की विशेषता जल्दी प्रकट हो जाती, अंततः वेद मंत्र द्वारा अपनी वाणी को मधुर बनाने की कृपा चाहते, जैसे स्वादमानम वाचः सुदीनात्व महनाम, हमारी वाणी इतने सरस हो कि दिनहीन दुखी बड़े छोटे से सर्व संबंध जोड़ अपना बना लेती, अपनी बोली के स्वाद से सभी में मधुरता भरती, आत्मदीप में ज्ञान घृत भरती, जो लंबी आयु तक जो योग कृत होता, हमें सुख शांति समृद्धि का पूरा प्रकाश देती। वाणी द्वारा हमारे उदाहरण से जग बदलता, राय से नहीं, इसलिए हमारी वाणी शक्तिशाली महत्वपूर्ण होने से कल्याण होता। वाणी से देव दानव मानव ज्ञानी की पहचान होती, और मंत्र के स्वादु सुमधुर वाणी से हम प्रेम शांति एकता भाईचारा परोपकार दया सहकार समान दिव्य गुणों से विभूषित रहते, हमारा दिन भी शुभ एवं सुदिन बनता। शुभ बोल हमारी रात्रि भी चैन से सोने की शांति देती, ऐसी वाणी बोलती कि रात की नींद उचाट न हो, हमें मन न मारे, बुद्धि भ्रष्ट न होए, सुख चैन पाते रहें। नम्रता की पोशाक पहनने से स्नेह सम्मान और सहयोग का वरदान मिलता रहता, इसलिए हमें यह बहुत इसलिए मानवीय संबंध और भौतिक जीवन के धन से संतुलन बनाते रहें। प्रभु, हम धन की खुशी पद में प्रतिष्ठा में संबंध में ढूंढते हैं, उसका सृजन हमारे सात्विक विचारों में होता। आज हम नेत्रदान अंगदान रक्तदान को अमूल्य दान समझते, लेकिन ज्ञान एवं खुशी के दान ही सफलता की कुंजी है। बच्चे बड़े जड़ निर्जीव जीव जंतु सभी प्रभु धन के दान के भूखे होते, जो हम न बेच सकते न खरीद सकते, ये एक दूसरे को देकर बढ़ाते या धनवान बनते हैं, जिससे समस्या का समाधान मिलता, मानवीय संबंध में वाणी की मधुरता का विस्तार होता, समाज राष्ट्र में सकारात्मक सहयोग मिलता, जीवन की सकारात्मक शक्तियों का विकास होता। इसलिए धन का दान बांटने से बढ़ता, जैसे सूर्य का प्रकाश चांद की चांदनी की शीतलता, पृथ्वी की सहनशीलता, आकाश की विशालता, अग्नि की ऊर्जा और जल की निर्मलता हमें याद दिलाती। अपना ज्ञान धन बांटते जाओ, बढ़ती जाएगी। इसलिए हम अपने संकल्पाग्नि जागृत करते कि ईश्वर के अनुपम खजाने को अपने में भरते रहेंगे और दान कर समाज संसार पृथ्वी स्वर्ग सी प्रतीत होंगे। श्रोताओं, यह विनय अंजलि का संदेश रहा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोतागण, अभी आपने आदरणीय पंडिता प्रेमिला शिरतन जी को सुना। उनके संदेश के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम में टेक्नीशियन के रूप साथ दिया श्री कुमार रामा जी, उनके प्रति आभार। आपने सुना, धन्यवाद। अंत में आप एक गीत का रसास्वादन करेंगे और हमें अनुमति देंगे। फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।

0: के श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको धन्यवाद देते हैं।
1: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
0: और चलिए ईश्वर की भक्ति हम भी करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इतनी कृपा बनाए रखना कि कभी किसी गलत रास्ते पर हम न जाएं, कभी किसी बुराई का साथ हम न दें, और सदैव जहाँ तक हो सके सच्चाई के मार्ग पर बने रहें।

हमसे नाराज हो जाए, लेकिन ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को नहीं ठुकराते हैं। ईश्वर अपने भक्तों को कभी अनसुना नहीं करते हैं। ईश्वर अपने भक्तों की पुकार को सदैव सुनते हैं। ईश्वर जो है अपने भक्तों की इच्छाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। ईश्वर जो है अपने भक्तों का मार्गदर्शन सदैव करते हैं। बस हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। कभी कभार जो कुछ हम मांगते हैं हमें समय पर नहीं मिलता है या उसमें देरी होती है तो हम ईश्वर पर से विश्वास खोने लगते हैं, लेकिन वहीं पर तो विश्वास की ज़्यादा आवश्यकता होती है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिन के 10:50 हो रहे हैं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। शमी ग्रहणी के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। शमी ग्रहणी के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 21 मई को दोपहर के एक बजे से शाम के साढ़े पाँच बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक जरूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, भक्ति गीतों के कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं और चलिए इस आरती की ओर हम बढ़ेंगे। जिस प्रकार एक प्रथा सी हो गई है ना कि कार्यक्रम का आरंभ हम भगवान गणेश के नाम से करते हैं और जाते जाते एक आरती के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं, तो भगवान की अपार कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आपको कभी क्षति न पहुँचाए और सदैव आपका जीवन खुशहाल रहे, आप स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते रहें और जीवन में जहाँ तक हो सके एक दूसरे के काम हम आते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। इन्हीं मंगल विचारों के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। इस आरती के साथ 11 बज जाएंगे, 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोसा। अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
0: रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार राधा। पर्यावरण पुलिस कचरों के फेंके जाने के सिलसिले में सख्त रवैया जारी रख रही है। गुडलैंड्स में फेंके कूड़ों में से एक रसीद मिली, जिससे पता चला कि हरकत के पीछे कौन है। पुलिस एक एक बात पर ध्यान दे रही है। गए दिनों में कई कार्रवाइयां चलाई गई, 3 लोगों को कंट्रावेंशन दिया गया है। सऊदी अरब में हज अदा करने गए करीब 50 मुर्शिदों को अल अजीजिया में होटल से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके लिए नए होटल का बंदोबस्त किया गया। इस्लामी सकाफती सेंटर के सदर शामाद अयूब साहब ने बताया कि उन्होंने खुद हज मिशन के साथ हाजियों के लिए नया होटल ढूंढा और हमारे हमवतन इत्मीनान से रह रहे हैं और जियारत कर रहे हैं। पुरानी जेंडर इक्वालिटी मंत्री कल्पना कुंजुशा ने अपने वकील के जरिए कौफो रिश्ते में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पर एतराज जताया है, जो पुलिस ने प्राप्त की। कल पोंपलेमु जिला अदालत में उन्होंने सुनवाई के बाद ये बात कही। कल्पना कुंजुशा पर चोरी का इल्ज़ाम है और वो अपनी बेगुनाही का दावा करती हैं। पुलिस आईटी यूनिट से कांस्टेबल बेग से मांग की गई कि वो पिछले 19 सितंबर को घटी इस घटना की तस्वीरें अदालत में पेश करें। प्रतिरक्षा वकील आइवान कुरेंडाविलु ने इसे पेश करने से मना किया, ये कहकर कि पहले ये पता करना चाहिए कि वीडियो असली हैं। मामले को अगले 11 अगस्त के लिए स्थगित किया गया। पूर्व मंत्री पर 2000 रुपये लागत कॉस्मेटिक पैदावारों की चोरी करने का इल्ज़ाम है। विदेश में थाईलैंड ने वीज़ा को लेकर कुछ मुल्कों के लिए नई पाबंदियां लागू की हैं। सन 2024 से 93 देशों से आने वाले पर्यटकों को 60 दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ताकि थाईलैंड की अर्थनीति में मजीद योगदान हो। लेकिन अब कुछ देशों को 30 से ज़्यादा दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की अर्जी भेजनी पड़ेगी, उनमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू कॉर्डिनल नंबर 5 पाई में 72 साल की 72 years old बीबी जहाइमुन जिनाली, बीबी जहाइमुन जिनाली जो मिस कानाउआ के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा 11 बजे इनके घर एवेन्यू कॉर्डिनल पाई से उठाकर दफनाने के लिए पाई का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आँखों में बसारत, कानों में समात और ज़ुबान में जायके के एहसासात, मेरे रब ने इस मिट्टी में क्या क्या कमालात भर दिए। बेशक उसकी शान भी निराली है और उसकी हिकमत भी कमाल। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉर्शस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, बयान और नातो सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समात फरमाएंगे सूरह इब्राहिम का दूसरा हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अपने परवरदिगार के हुक्म से वो हमेशा उनमें रहेंगे, वहां वो हर मुलाकात पर एक दूसरे को सलाम कहेंगे।

क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमा तैयबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीजा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में फैली हों, वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर मौके पर फल लाता हो, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें।

और नापाक बात यानी गलत अकीदे की मिसाल नापाक दरख्त की सी है कि वो जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करार और सबात नहीं। अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा, और अल्लाह बेइंसाफों को गुमराह कर देता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है।

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, यानी दोजख में के सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रस्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोजख की तरफ लौट कर जाना है।

अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेघ बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेरे फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेरे फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्र है।

और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रखियो, ऐ परवरदिगार उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला है, मेहरबान है।

اے پروردگار मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है, ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। ए परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में।

अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार,

और मोमिनो ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है, वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान कयामत की तरफ दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा, तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो जवाल नहीं होगा, और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें अल्लाह के यहां लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं।

तो ऐसा ख्याल ना करना कि अल्लाह ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है वो उसके खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन दूसरी ही जमीन बना दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के सामने निकल खड़े होंगे, जो यकता है बड़ा जबरदस्त है।

0: ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको उससे डराया जाए और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अल इब्राहिम की तिलावत। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:25 हो चुके हैं। बुध का दिन है, मई की 20 तारीख है और आज माह ज़िलहज की 2 तारीख है। आइए समाअत फरमाइए चंद ऐलानात। जी हाँ, 26 मई सुबह 10 बजे बैतुल नूर सिते मौशाल पोर्ट लुइस में आलिमा शमीमा असुब्राची की सरपरस्ती में एक नूरानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। जी हाँ, बैतुल नूर सिते मौशाल पोर्ट लुइस में तमाम ख्वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा जुम्मा 22 मई सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिजविया निकोले रोड पोर्ट लुइस में ज़िलहज के मौके पर शैला अयूब रिजवी की सरपरस्ती में ख्वातीन के लिए एक रूहानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा और इतवार 24 मई दिन के 1 बजे इतरीस गुमानी सेंटर हॉल ए मागों स्ट्रीट पोर्ट लुइस में मुस्लिम सीनियर लेडीज़ एसोसिएशन और म्यूनसिपैलिटी ऑफ पोर्ट लुइस की जानिब से ज़िलहज के माह मुबारक में एक नूरानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख्वातीन को शिरकत की दावत है।

सहाबी रसूल हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, के हर साल हमारे ऊपर हज करना फ़र्ज़ होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अकरा इब्ने हाबिस, अगर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में हाँ कह दूँ हाँ, तो अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम, फिर हर साल ही हज फ़र्ज़ हो जाएगा, जिसकी तुम ताब नहीं ला सकते, जो तुम्हें मुश्किल होगा। इसलिए हज एक ही मर्तबा ज़िंदगी में है जो फ़र्ज़ है। फ़मन ज़्यादा फ़तवाउन, अगर हर साल करो या उससे ज़्यादा करो तो वह नफली होगा और उसका अल्लाह ताला तुम्हें अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। हज़रत इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक और रिवायत है, अबू दाऊद और दारमी में यह हदीस पाक आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, इब्न अब्बास قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل, यानी जो शख्स हज का इरादा करे तो फिर उसे जल्दी करे कि वो उसे पूरा कर ले। इसलिए कि जो आदमी हज करता है और हज अल्लाह ताला उसका कबूल फरमा ले, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका सवाब सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इबन मसूद रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, यह हदीस पाक तिरमिज़ी में और नसाई में आई। हज़रत अब्दुल्ला इबन मसूद कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फ़रमाया? قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنما هو ينفيان الفقر والذنوب كما ينفيل كبار خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यानी हज और उम्रा को यके बाद दिगरे अदा करो, यानी एक के बाद पहले उम्रा करो फिर उसके बाद हज, यानी किरान का अहराम बांधो। ये हज किरान, हज की तीन किस्में होती हैं, हज तमत्तु, हज किरान, और इसके अलावा जो हज किया जाता है ये हज इस यानी अहराम पहले बांधे उम्रे का और उसके बाद फिर हज का अहराम बांधे, इसको हज किरान कहा जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में यही हज फरमाया। दोनों को मुत्तसिल कर दो, इसलिए कि ये दोनों अफलास और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे चांदी और सोने के मैल को दूर कर देती है। और हज मकबूल का सवाब सिर्फ जन्नत है, सिर्फ जन्नत है। अब आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज मबरूर की और हज मकबूल की जो अजमत और उसका मकाम बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि उसका सवाब सिर्फ जन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बहकी हदीस पाक को लेकर आए, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज या उम्रा या जिहाद के इरादे से निकला और फिर रास्ते में ही मर गया, तो अल्लाह ताला उसके हक में हमेशा के लिए मुजाहिद हाजी उम्रा करने वाले का सवाब लिख देता है। हज़रात गिरामी, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिनके किस्मतों में था और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस 2026 यानी 2026 का हज करना जिनकी किस्मतों में था और जिनको अल्लाह के दरबार से बुलावा था, वो कशा अपनी अपनी आबादियों से, बस्तियों से, अपने अपने शहरों से शहर मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच चुके। इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा का माहौल देखने का है और लोग देख रहे हैं, और जो लोग वहाँ जाकर फिज़िकल देख रहे हैं उनकी तो निगाहों का क्या कहना, और उस खुशनसीब हज्जन और हाजी की किस्मतों का क्या अंदाज़ा कर सकता है कोई कि जो इस वक्त अहराम की हालत में काबतुल्लाह के सामने उसका तवाफ़ कर रहा होगा, कोई हजरे अस्वद का बोसा ले रहा होगा और कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर खाने काबा का दरवाज़े का बोसा ले रहा होगा, कोई गिलाफ़े काबा चूम रहा होगा, कोई मकाम इब्राहिम के करीब खड़े होने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हुजूर में जो है नमाज अदा कर रहा होगा, कोई हतीम में बैठा होगा और हतीम के अंदर अल्लाह के बारगाह में सरबा सुजूद होगा, और कोई तवाफ़ के अंदर मुस्तगरक होगा, कोई सफ़ा मरवा की सही कर रहा होगा, और कोई बंदे मोमिन और जमजम के पानी से पी करके अपने आप को मुशर्रफ कर रहा होगा। और हज मकबूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के हज के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह

में हज के फरीज़े की अदायगी के सिलसिले में काफ़िले मीना की तरफ रवा दवा होंगे। कितना खूबसूरत मंज़र होता है कि जब दुनिया देखती है कि दुनिया के कोने कोने से आने वाला इंसान, हर एक का अपना ट्रेडिशनल है, अपना कल्चर है, अपना अपने यहाँ का माहौल है, अपने यहाँ के लिबास हैं, अपने यहाँ के खाने हैं, अपने यहाँ का माहौल है। बहुत बड़े बड़े अमीर और कबीर, बड़े बड़े गरीब और फ़कीर, सभी एक जगह जमा होते हैं। ये फ़र्क अमीरी गरीबी का, शाही का बादशाही का फ़र्क मिटा दिया जाता है, कल्चर मिटा दिए जाते हैं। एक ही कल्चर है, एक ही तरह का लिबास है, एक ही तरह के लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर रंग और रोगन लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन लिबास एक है, यकजहती है। और ये दुनिया को मसावात का, अख़ुव्वत का पैगाम दे रहा है और दुनिया को बता रहा है कि इत्तेहाद ये होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में हज करने की वजह से अल्लाह ताला उम्मत को अता फ़रमाता है और अपने बंदों को अता फ़रमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अब अंदाज़ा करें वो घर कितने खुशनसीब लोग हैं जिनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अज़ीज़ व क़ारिब हज की सआदतें करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा हाजिर हुए हैं। अब अंदाज़ा करें कि कोई बादशाह है कि जिसका लिबास बहुत महंगा है, कोई फ़कीर आदमी है जिसका लिबास बहुत फटा हुआ है, लेकिन आज जब हमारी नज़र पड़ती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि बादशाह कौन है, फ़कीर कौन है, अमीर कौन है, कबीर कौन है। हमें ये पता ही नहीं चलता ये किस इलाके का है, इसका लिबास मसनून क्या है और ये किस तरह का लिबास पहनता था। आज देखा तो ऊपर भी एक वाइट कलर की चादर है, नीचे भी एक वाइट कलर की चादर है, जिसको अहराम कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पैगाम हज के ज़रिए अपने बंदों को दे रहा है कि अगर तुम चाहते हो जब मेरे घर में आओगे तो तुम फ़ाखराना लिबास, अपने जूते, अपना सारा तख्तो ताज छोड़ कर आना और मेरे हुजूर में मेरा बंदा बन कर के आना। और जब बंदा और बंदी बन कर के अल्लाह के हुजूर में हाजिर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें उनके ऊपर बरसती हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हज की सआदतों के लिए बंदा अपने घर से कदम निकालता है या उमरा के लिए कदम निकालता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक वो लौट कर अपने घर वापस नहीं आता, अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर बरसती रहती हैं और वह खुशनसीब जो भी अपनी ज़बान से दुआ निकालता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अंदाज़ा तो करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये बंदा जा कर के खाने काबा को पहली बार देखता है और खाने काबा पर जब इसकी नज़र पड़ती है तो जो भी दुआ करता अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर ये हजर अस्वद को इस्तिलाम करता है या बोसा देकर वहाँ से तवाफ़ को शुरू करता है तो अल्लाह की रहमतें इसके ऊपर बरसती होती हैं, उसकी रहमत व अनवार की बारिश होती है। फिर ये खाने काबा के दरवाज़े को जब चूमता है तो ऐसा ही है जैसे इसने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया है। और ये मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर जब नमाज़ पढ़ता है तो उस नमाज की लज्जतों का आलम ही कुछ और होता है। हम यहाँ सजदे करते हैं, हम यहाँ इबादतें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कालीन, महंगी कालीनों पर आप सजदा करें, लेकिन खाने काबा सामने हो और गिलाफे काबा और मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर जो आप सजदा करेंगे उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उसकी लज्जतें क्या होती हैं, उसका मिठास क्या होता है, उसका मजा क्या होता है, उसकी चाशनी क्या होती है। दिल ये चाहता है कि सर बस यहीं झुका रहे और सर उठाने को जी नहीं चाहता है। अल्लाह के हुजूर में बंदा पहुंचता है और जब वहाँ पहुंचने के बाद वो बंदा अपने आप को देखता है, अल्लाह मैं कहाँ गरीब सा, तरीन सा, गुनाहगार तेरा बंदा, और कहाँ ये खाने काबा, कहाँ ये काबा का दरवाज़ा, कहाँ ये हतीम, कहाँ मकाम इब्राहिम, कहाँ ये हजर अस्वद। तो अल्लाह तब्बर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, मेरे बंदे अब तू आ गया है, आना तेरा काम था, बेशुमार तेरे पास गुनाह थे, खताएँ थी, सब कुछ था, लेकिन जब तू ऐसे जैसे तूने अपना लिबास उतारा तो हमने तेरे गुनाहों का लिबास भी उतार दिया है। अब तेरा दिल भी साफ़ है, तेरी रूह भी साफ़ है, तेरा बदन भी साफ़ है, तेरी रूहानियत भी साफ़ हो चुकी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उसके बाद ये बंदे मोमिन खाने काबा से और जब ये तवाफ़ कर लेता है और उसके बाद जब हज के पाँव वो जो अयाम आते हैं और जब ये अपने घर से, अपने हुजरे से, अपने होटल से जब हज का
احرام باندھ کر منا کی وادی میں پہنچتا, اللہ اکبر, اس وقت کا عالم مت پوچھئے کہ اس وقت کتنی رحمت

0: की, इशा की और दूसरे दिन फजर की। और जब 9 तारीख लग जाती है तो फजर की 9 तारीख 9 जिलहिज्जा को अदा करके ये वहां से सफर बांधता है, कहां के लिए? मकाम अरफात के लिए। और ये मकाम अरफात वो जगह है कि यहाँ से जब बंदा यहाँ पहुँचता है और इसका वक्त वुकू का स्टार्ट होता है जुहर के टाइम से, उस वक्त से लेकर गुरुब आफ्ताब तक जो बंदा एहराम की हालत में यहाँ एक लम्हे के लिए भी गुजर जाए या ठहर जाए तो वो हाजी हो जाता है। और हज का सबसे बड़ा रुकन आज़म है ये। और उसके बाद फिर फरमाया यहाँ पर आपको जुहर, आपको यहाँ पर असर और मगरिब की नमाज को मिला कर पढ़ना है। यहाँ पर आपको जो है जुहर और असर को दोनों को मिला करके पढ़ना है। और फिर उसके बाद जनाब वाला आपको यहाँ से मुजदलफा की तरफ जाना है और मुजदलफा में जाने के बाद मगरिब और इशा दोनों मिलाकर पढ़ना है। अरफात में आपको जुहर और असर मिलाना है और वहाँ जाने के बाद आपको मगरिब और इशा दोनों को मिलाना है और इशा के वक्त में मगरिब की नमाज अदा करना है। और उसके बाद जनाब वाला वहाँ पर ठहरना है। और उसके बाद 10 तारीख जब आपकी आएगी तो फजर की नमाज आपको मुजदलफा में अदा करना है। और उसके बाद जनाब वाला आपसे जब सूरज उगने लगे उसके बाद आपको सफ़र करना है और वहाँ से कंकरी चुमकर बड़े वाले पत्थर शैतान को 7 कंकरियाँ आपको मारना है। और उसके बाद अपनी कुर्बानी पेश करना है और कुर्बानी पेश करके अपने बालों का कसर करवाना या अलग करवाना है। और उसके बाद आप अल्लाह के फजल व करम से हाजी साहब हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप तवाफ़ ज़ियारत कर लें तो तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद आपका हज कंप्लीट हो जाता है। आप घर से गए थे तो आपको लोग आपके नाम से जानते हैं, लेकिन जब आप घर से वापस आते हैं उधर तो फिर आपका आलम ये होता कि अब आप आम आदमी नहीं हैं बल्कि आप हाजी साहब हैं, आप हज्जन साहिबा हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये हाजी साहब और हज्जन साहिबा जिनका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया इनकी अजमतें और शान अल्लाह की बारगाह में इतनी बुलंद हो जाती है कि ये क़यामत का जब दिन आएगा तो अपने घर के 400 लोगों की शफ़ात करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला इनकी शफ़ात के ज़रिए से 400 इनकी फैमिली के लोगों की बख्शिश और नजात फरमा देगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिर मैं इस बात पर मैं बात को ख़त्म करता हूँ, मुबारकबाद के लायक हैं वो तमाम हाजी और हज्जन, वो तमाम खुश नसीब लोग जिनको इस साल हज नसीब हुआ। ए हाजियों, तुम्हारे कदमों को सलाम, तुम्हारे चलने को सलाम, तुम्हारे उठने और बैठने को सलाम, तुम्हारी मीना की वादी में जाने को सलाम, तुम्हारे अरफात में ठहरने को सलाम, तुम्हारे वकूफ़ मुजदलफा को सलाम, तुम्हारे रमी जिमार को सलाम, तुम्हारी अजमतों को सलाम। तुम दुआ करो उम्मत के लिए, अल्लाह तबारक व ताला उम्मत पर जो ये हालात हैं इसको आसानियों में तब्दील फरमा दे। और अल्लाह जो हमसे नाराज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला तुम्हारा हमार जितने लोग गए सबका हज कबूल फरमाए और सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। हाजी आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौसी सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा खात्री साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी इन दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, वाहिदा जुअन कातखबोन से वाहिदा जुअन अपने बेटे जैद और मरियम के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके बेटे जैद और बहू मरियम जो कि हज पर गए हुए हैं उनके हज में आसानियाँ अता फरमाए और उनकी तमाम इबादात कबूल फरमाए, आमीन। इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा एक मैसेज भेजा है मोहसिन ने। जी हाँ, मोहसिन ने, उन्होंने एक कलाम की फरमाइश की है अपनी तमाम फैमिली और हाजियों के लिए। इसके अलावा हमसे अपनी बेटी सुरैया, जी हाँ सुरैया के लिए बहुत सारी दुआएं और प्यार भेजा है उनकी वालदा यास्मीन, भाई निज़ार, अकीमी, और दुआ

दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी बेटी को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और तमाम हज पर जाने वालों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम हज पर जाने वालों को हिम्मत, हौसला और ताकत अता फरमाए। आमीन। जी हाँ, इसके अलावा हमें एक और पैगाम मौसूल हुआ है। वालदा हाफिजून, बेटी उमैरा, शहजाद, मुस्लिमीन, रुखसार, दीलान, तस्नीम, उबैदा, कामिल, तैयबा, तौफीक, उबैर, तमाम रुगिद और जीवन फैमिली और लाल मोहम्मद फैमिली ने बिल्किस और सना के लिए ढेर सारी दुआएं और प्यार भेजा है।

इसी के साथ वाकवा की जहां ग्लेन पॉक वाकवा की फौजाना अपनी वालदा स्वालिहा मुस्तफ़ा अदीला उनकी बेटी और तमाम फैमिली के मरीज़ों जहां सोमाली मौदागन और मुदन फैमिलीज़ के लिए दुआएं भेज रही हैं। और इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। दोपहर के 2:31 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और मैं उषा कौर साथ निभाने के लिए हर बुधवार की तरह, और आज बुधवार 20 मई 2026, एक और खूबसूरत दिन आप लोगों के साथ हम बिताएंगे। जी हाँ, 4 बजे तक साथ देंगे और आपको फ़ोन करना है 4028085402808 और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5251705251005। आपकी पसंद प्रोग्राम आपके नाम, और चलिए आपके इंतज़ार में ये पहला गाना आप सभी लोगों के नाम।

आपकी पसंद। चलिए आपके पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और आज की पहली फरमाइश जो है दर्द फिल्म से लिया गया और ये गाना खासकर हम चलाएंगे धनी जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं बुआ शेरी से। और ये गाना हम सुनेंगे शमशाद बेगम की आवाज़ में। गाना वो डेडिकेट कर रहे हैं अपने दो नाती के लिए, जी हाँ, यश और हेमिश के नाम।

कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पसंद प्रोग्राम और मैं उषा कौर साथ निभाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर अनीता जी हैं जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम ट्रियोली। जी हाँ, और गाना वो मांग रही है फिल्म संबंध का ये खूबसूरत गाना, चल अकेला। बेतियन जो दामाद वेद, बेटा सचिन, बहू पूजा और नाती पोते के लिए। तो चलिए गाना चल पड़ा मुकेश साहब की आवाज़ में।

चलिए रफ़ी साहब की आवाज़ में हो जाए अगला गाना, और गाना खासकर विश्वानी डुबन जी के लिए। वो रहती हैं वाक्वा और गाना वो मांग रही हैं बहन इंदिरा, शारदा, सहेली, नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए, और साथ ही साथ में आफेज जो हमें सुन रही है लावण्या से।

2:51 हुए हैं जादूगर का तेरे। जी हाँ, और यहाँ पर ये गाना हम चला रहे हैं खासकर मीला जी के लिए जो हमें सुन रही हैं। वाकवा से साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद।

2:55 और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे मीला जी। जी हाँ, एक और मीला है और वो है मीला रामस्वामी, जो इस समय हमें सुन रही है और गाना खास कर वो मांग रही है शीला बीमाना और संता पाडू के लिए जो रहते हैं काठरबोन। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: स्टूडियो में आगे पूजा उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मधुमक्खियां प्रकृति और कृषि दोनों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आज 20 मई को मनाए जा रहे विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने परागण करने वाली जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें मधुमक्खी पालक, कृषि तकनीशियन और स्थानीय उत्पादक शामिल रहे। शहद उत्पादन, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के बीच मधुमक्खियों की भूमिका मॉरिशस के लिए आज भी बेहद रणनीतिक बनी हुई है। अफ्रीका के पास अपने पेंशन फंड और संस्थागत निवेशकों के माध्यम से बिलियन रुपये निवेश किए जाते हैं, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल महाद्वीप के विकास के लिए कैसे किया जाए, साथ ही कर्मचारियों की बचत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सातवें अफ्रीका पेंशन फंड एंड रिटायरमेंट समिट में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से ये एक था। बुनियादी ढांचे में निवेश, शासन और सार्वजनिक विश्वास के बीच ये भी उजागर किया गया कि मॉरिशस इलाकाई वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। देश के परिवर्तन के साथ कदम मिलाने के लिए ज्ञान पर ध्यान देना, ये उद्देश्य रहा नेशनल हायर एजुकेशन स्ट्रेटेजी 2025-2035 का, जिसकी लॉन्चिंग आज बालाक्लावा के इंटरकॉन्टिनेंटल

0: होटल में लॉन्च की गई। ये रणनीति 5 प्रमुख पहलुओं पर आधारित है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर शोध और नवाचार, साथ ही वैज्ञानिक कूटनीति और डिजिटलाइजेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। विदेश में भारत के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी और बदलते मौसम का असर लगातार देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। रुसुफ्लर में बग में 81 साल की 81 years old बीबी मरियम उपिया जिन्हें लोग भत्तू नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज से पहर के तीन बजे इनके बेटे राजकुमार भत्तू के मकान रू सुफ्लर में बग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दे क्रोल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे 3 PM अवेन्यू बुगेविल तमारे में 71 years old शिलालदेव जगरनोथ जिन्हें लोग पाटना नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे मोसलमा वीओएस कास्कावेल के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल गुरुवार को दिन के 1:30 बजे इनकी बेटी करुणा जगरनाथ रंजीब के मकान अवेन्यू बुगेविल ये तमारें से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1:30 PM रॉयल रोड बोबासे में 70 years old श्रीमती जसमती बिकारू पैदाशी नाम नरसिंह और जिन्हें लोग बालिका नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे एलियनसन रॉयल रोड बोबासे से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM नंबर 14 बी डाउविन एवेन्यू कैचबोन में 92 साल की 92 years old श्रीमती कामुशालाई रामंजुलू पैदाशी नाम हमसामी और जिन्हें लोग सरोजिनी नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके दामाद पीले मौदे विनेश के मकान नंबर 14 B डाउविन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर सहमौते मो होश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो 11 AM और एक्स रेलवे रोड पदागुचिया में 80 साल के 80 years old श्री धनेश्वर सामुज जिन्हें लोग पोदीवन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनके मकान एक्स रेलवे रोड अपदागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्ता सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 9:30 AM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

आपकी पसंद। तीन बजकर छः मिनट हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ आपके पसंद प्रोग्राम। जी हाँ, यहाँ पर उषा कौर साथ निभा रही है चार बजे तक। तो चलिए समाचारों के बाद इस प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। नंबर है 4028085408 और जी हाँ, यहाँ पर गाना हम चलाएंगे। अगला गाना सुदेवी जी के लिए हमें सुन रही हैं वाकवा से, और गाना खासकर वो मांग रही हैं दीदी ललिता, कुशल परिवार जो रहते हैं त्रियोले, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवी नामालेंगा के अनुषा, किरण, निया, वीर, वर्षा, विमल, वंश, वैभव और पूरे राम गुलाम, राम रतन और कुआहू परिवार के लिए। तो चलिए उन

सभी माओं के लिए अगला गाना, क्योंकि अभी दो हफ्ते में हम मातृ दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आप जो घर पर है इस समय हमें सुन रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं वापस स्कूल आने के लिए, तो चलिए ये गाना आप लोगों के नाम

3:12 हुए हैं और आपकी पसंद प्रोग्राम आपके नाम हम चला रहे हैं। जी हाँ, खासकर आप लोगों के लिए। और ये कार्यक्रम 4 बजे तक, और आपको याद दिला दे के आप इस कार्यक्रम को देख भी सकते हैं लाइव फ्रॉम टिकटॉक। तो चलिए, यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे सूरज सजादा के लिए, जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और साथ ही साथ में सरिता जी जो रहती है कटरबोन, और गाना वो मांग रहे हैं अपने लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए। सत्ते पे सत्ता फिल्म से लिया गया जिंदगी मिलके बिताएंगे, और हाले दिल जो है गाकर सुनाएंगे।

आपकी पसंद। तीन बजकर 18 मिनट हुए हैं और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे माया हमडुस के लिए, जो हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। शिवा आकाश अर्जुन, आपके लिए भी ये गाना जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग और हमें देखने के लिए और जुड़ने के लिए। और यहाँ पर अमीना जो रहती हैं पोपाल है और गाना वो मांग रही है उन सभी लोगों के लिए जो हज पर जा रहे हैं, तो बस हम यही कामना करते हैं कि जो सफ़र है वो कामयाब हो। और ख़ास कर गाना वो डेडिकेट कर रही है उनकी बहन फ़ाइमा अफीज़ा तबस्सुम, भाई है नूरानी नजीम, पूरे बियारी फैमिली की ओर से यारू फैमिली, यजुब जमाली और रजुब फैमिली की ओर से ढेर सारी दुआएं। तो चलिए, भजरंगी भाईजान फिल्म से लिया गया ये गाना सुनते हैं।

0: की पसंद।
1: तीन बजकर 27 मिनट हुए हैं और आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। यहाँ पर गाना हम चलाएंगे माया जी के लिए, फिल्म जंजीर से लिया गया।

उनके लिए और उनके सभी परिवार के लिए। और सन जो है हमें सुन रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं, उनके लिए भी ये गाना जाएगा।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, बनाकर फिर बिगाड़ लेते हैं, क्या करें, यही ज़िंदगी है। आपकी पसंद प्रोग्राम, आपके नाम और मैसेजेस आप भेज रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर खास गाना तकदीर फिल्म से लिया गया, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम सुनेंगे। और ये गाना खासकर बंधु परिवार के लिए जो हमें सुन रहे हैं त्रियोली से, और साथ ही साथ में सुदेवी जी जो हमें सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमारी प्यारे और प्यारी और जय गिनीशा के लिए भी जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनके लिए हम गाना चला रहे हैं। 3:32 हुए हैं।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, कहते हैं ना, जो चला गया वो हमेशा पास में रहता है, और जो यादें छोड़ कर चले गए हैं हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो चलिए, अच्छी यादें पास में रखते हुए अगला गाना हम सुनने जा रहे हैं, फिल्म संजोग से लिया गया, और गाना खास कर आरती जी जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम ट्रियोली, और बेटी, उनकी बेटियां के लिए शिमला, आनंदी और रीमा के नाम, और साथ में उनके पति जो है सुरेंद्र, उनके लिए भी गाना हम चलाएंगे, और साथ में राहिश्ता सुविधा जो हमें देख रही है, सुन भी रही है, और उनकी प्यारी बेटी रियांशी के नाम गाना जाएगा, और प्रीतम जी, जी हाँ, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। फिल्म संजोग, चलिए मुकेश साहब और लता जी की आवाज़ों में।

आपकी पसंद। तीन बजकर 40 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पर साथ दे रही है बबीता जी और साथ ही साथ में सैंपिया के रहने वाली मारियोंज, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। और ख़ास गाना हम चलाएंगे साधना के नाम, जहाँ गाना वो मांग रहे हैं। और साधना जी जो रहती है रिविया दि क्रेओल और फरमाइश वो कर रही है फिल्म तकदीर। जी हाँ, फिल्म तकदीर का एक गाना हमने चलाया, एक और गाना इस फिल्म से लिया गया हम चलाएंगे। और गाना वो मांग रही है अपनी मामा, लेट मामा के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके भाई नारिन है और बहन नेविता, जो नारिन और भाई नाविन और बहन निवेता, जी हाँ निवेता, जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम गाना वो डेडिकेट कर रही है। और साथ ही साथ में पूरे बुडाहू परिवार की ओर से

और यहाँ पर विशाल जुमंजी जो हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही साथ में सागर भी है, धन्यवाद साथ देने के लिए।

और खास गाना हम चलाएंगे डिप्टी के नाम। जी हाँ, डिप्टी जो रहती है लामारी बाक्वा। 90s का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं, माफिया फिल्म से लिया गया, कुमार सानू और अलका याग्निक की।

3:53 हुए हैं जी हाँ। अब ये गाना दुश्मन फिल्म से लिया गया, खासकर राकेश राम किलावन की याद में उनके सभी भाई बहनों की ओर से और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है उनको याद करते हुए। तो चलिए अगला गाना उनके नाम और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में, तब तक उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: स्वर तरंग,
1: स्वर तरंग।
2: हेलो अगेन श्रोतनो एंड हेलो वेंसडे आफ्टरनून एंड ऑफ कोर्स हेलो

श्रोतागण, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आप सभी लोगों को नमस्ते और स्वागत। आज के कार्यक्रम में बात करब जा कैसे गन्ना के छोटा खेतीहर अपन खर्चा कम सकियन जा करे और मुनाफा बढ़ा सकियन जा। प्रिय श्रोतागण, गन्ना सत्रिय ने रोजगार निराय उत्पादन और हमारा कृषि दृश्य का संरक्षण में योगदान देली बा। आज भी हजारों मात्रा में छोटा किसान अपन जीवन ले जाए खातिर गन्ना के खेती पर निर्भर बनस। प्रिय श्रोतागण, आज के समय में गन्ना क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहल बा। खाद फर्टिलाइजर, घास के दवाई, मजदूरों के मजदूरी और ट्रांसपोर्ट के दाम बहुत बढ़ गल बा। मौसम परिवर्तन, अनियमित बारिश, सुखाड़ी और साइक्लोन भी गन्ना के उत्पादन को प्रभावित कर रहल बा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद कई व्यावहारिक समाधान है किसान को अपन स्थिति सुधारने में मदद कर सकेला। आधुनिक टेक्निक, बेहतर प्रबंध और उपलब्ध सहायता के सही उपयोग करके किसान अपन खर्चा कमी कर सकी और अपन आमदनी बढ़ा सकी। प्रिय श्रोतागण, अब हम कुछ डिपोजिटों कम करने के कुछ उपाय पर बात करब। पहला तरीका है छोटा गन्ना के खेतीहर लोग के मेकानिजेशन, यंत्रीकरण चाहेला अपनाए के। ऐसे में गन्ना के मैकेनिकल कटाई हो सकल जाए। इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ना की खेती में सबसे बड़ा खर्चा मजदूरी का होवेला। मैदेव महंगा हो गल बा और कई बार कटाई के समय मजदूर मिले के मुश्किल हो जाला। एक अच्छा समाधान है मैकेनाइजेशन यानी कि यंत्रीकरण। कूपर्स मैकेनिक का उपयोग करे खातिर मैकेनाइजेशन करे के चाहेला बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तू लाखू मैकेनिक करब इसे खर्चा कम कर सकल जाए और कटनी भी कम समय में भी हो सकी। एक और तरीका ये है कि खर्चा कम करने के लिए छोटा गन्ना के खेतीहर लोग के साथ जुट जाने के चाहेला उबिया कोऑपरेटिव के एगो मोम ढूके चाहेला। बहुत से छोटा किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अकेले लाखों मैकेनिक के व्यवस्था कर सकी। इसी वजह से कोऑपरेटिव या जुट देने से काम करे के बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे में किसान रिकॉल्ट मैकेनिक इरिगेशन सिंचाई और ट्रांसपोर्ट सकियन जा बॉन्ड करके सेवी करी। खर्चा कम करे के लिए छोटा किसान के चाहेला स्कीम जो ओ लोग के सुविधा में बनावल गलबा के फायदा उठाए चाहे के। खा छोटा गन्ना किसान के बजट का एक बड़ा हिस्सा है। मॉरिशस केन इंडस्ट्री ऑथोरिटी एगो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम लागू कर ले बा, लेकिन देखिया जा कि बहुत से किसान ये फायदा नहीं उठावत बनसा। स्कीम छोटा किसान के खाद कम दाम पर प्राप्त होला लगभग आधा फ्री पर, जिससे कुडिपोजिशो कमती हो जाला और ओकर कुफिनों से हल्का हो जाला। अब देखा जा कारों के काम सही समय पर करला भी बहुत जरूरी है ताकि कुडिपोजिशों सकी कमती हो जाए। जैसे कि गन्ना का रोपाई है, एप्लीकेशन फर्टिलाइजर है, सिंचाई है, घास के कंट्रोले करे के या लाकू करे के। तो ऐसे में जब तू अपन काम समय पर करब तो खर्चा नहीं बढ़ी। उदाहरण के लिए सही समय पर जब काम रोब
यानी कि गौन सीजों में जोंविये आ मौस में गन्ना जब कुंजिशो निमन है तो वो अच्छा से जमी और डेवलपे होगी। अब देखिए जाके कारों के जो काम है जो ऑपरेशन है समय पर करला भी बहुत जरूरी है ताकि पूरे प्रोजेक्शो नहीं मोटे हो। गन्ना की रोपाई खाद के डाले पे सिंचाई घास कंट्रोल करे के या फिर जब तू अपन कटनी के समय पर करब तोहर फसल अच्छा बीती और खर्चा कम हुई। उदाहरण के लिए सही समय पर जब गन्ना रोप जैसे कि घन सीजों है तो गन्ना अच्छा कंडीशन क्लिमाटिक पर बढ़ी और उकर डेवलपमेंट भी जोली हो जाए ना कि कमजोर रही। ऐसे में तोहर चीनी की पैदावार जब मूला विदा कर भकान तो अच्छा रही। खाद भी तोड़ा चाहेला उस समय डाले के जब कान बढ़ जा ताकि वो राशिन निमन से वो खाद अब्सोर्बे करी और कान के जो फसल है ओकर हॉर्मो जस्ती रही। प्रिय श्रोतागण घास कंट्रोल करे के भी समय पर बहुत आवश्यक है ताकि बाद में जब तू घास नहीं कंट्रोल कर लेब तो देखब कि तोहर पूरे प्रोजेक्शो उपमोते हो जाए आ बाद में तोरा जस्ती मजदूर लोग लगी काम के घास के कबारे के या एबीसी डाले के ऊ घास के कंट्रोल करे के ये भी हो जाला कि घास जब बढ़ जाला तो एबीसी से निमन से नहीं कंट्रोल और ये तोहर गन्मा के अफेक्टे कर देवला ऐसे में रेवेन्यू कमती हो जाला। अब देखब जा कि कटनी के समय में तोरा चाहेला अच्छा से एगो प्लान बनाए के कान के ताकि जब कटनी के समय आल तो तू सिर्फ आधा कोबे कान नहीं विदा कर बमूला ऐसे में एगो कोबे में फुल कान नहीं डलब तो तोरा जस्ती ट्रांसपोर्ट लगी तोहर कान विदा करके मूला और तोहर रेवेन्यू जिमनी हो जाए। प्रिय श्रोतागण हमनी बात करब जा कैसे गन्ना के छोटा खेतीहर लोग अपन आमदनी के बढ़ाए सकें जा तो हमने बोलब सा पहला है कि गन्ना सही समय पर कटनी करे के जौन वो ये

शुरू में जस्ती चीनी पैदावार करेला, जैसे कि N3312B00 है, ओके जूलियत उठ में काटे के, और जैसे कि वो इति M2090B05 है, जो बहुत देर में चीनी पैदावार करेला, तो ओके चाहेला अक्टूबर या अक्टूबर के बाद काटे के। और दूसरा, जब तू अपन कान मूला विदा करत वह तो तोरा चाहला एगो कानपोप विदा करे के, जोन में रासिन नहीं है, लापाई बेय नहीं है, सूखल लापाई नहीं है, ये सब एक्सट्रैक्शन के बेसे कर देला और चीनी पैदावार कमती होला। प्रिय श्रोतागण, तोहर आमदनी बढ़ाए खातिर तू सकबा एगो फेयरट्रेड कोऑपरेटिव में शामिल हो जाए। फेयरट्रेड कोऑपरेटिव में शामिल होने से तोहर आमदनी जस्ती मिली लगभग 200 रुपया दुकान पर। अभी देखा दे जा कि छोटा खेतीहर लोग मिरीशियस के अनुसार अडोप्टे करे, यानी कि एगो फौजी जोन है, जैसे कि फिजियाफोट है उ या मोजिस है, तो ओकर से तोहर चीनी ज़्यादा होगी। फिर सो रंगन यह कंपनी के कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता। जानने से पहले ये हमने बोला जा कि सुगर इंश्योरेंस पेन बोर्ड अभी अंश्रीमा करा था छोटा खेतीहर लोग के, ये अंश्रीमा वो जाए ले प्रेमी जाए ले। प्रसोदंगन, आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ था। उम्मीद है कि ये जो विषय पर बात करनी सा आपके लाभदायक हो। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद और फिर मिलेंगे।

0: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 5:16 हो गए हैं। मीठे मीठे बोल हमारे श्रोतागण, मीठे बोल, मीठा बोलने से सब कुछ हासिल हो जाता है।
1: अंताक्षरी, अंताक्षरी।

0: नमस्कार और आदाब प्यारे देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे श्रोताओं, अंताक्षरी प्रोग्राम में उषा जी और रोशन की ओर से स्वागत है आप लोगों का।
1: जी हाँ, नमस्कार आप सबको, और आपको भी हम कहेंगे नमस्कार भाई जी।
0: नमस्कार बहन जी, कभी आप आती हैं कभी नहीं आती हैं।
1: क्या करे क्या करे,
0: लेकिन मैं थक जाता हूँ जवाब देते देते कि कहाँ है उषा जी। क्या करें, कभी कभार आप बहुत व्यस्त हो जाती होंगी।
1: हाँ जी,
0: लेकिन
1: एक कलाकार होने के नाते हमारी जो जिंदगी है ऐसे ही है, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं,
0: नहीं मिलता है, समय के पाबंदी के कारण ये हो जाता है। लेकिन आज हम दोनों साथ साथ आए हैं आप लोगों के लिए अंताक्षरी प्रोग्राम लेकर।
1: जी हाँ, और वैसे ये जो अंताक्षरी प्रोग्राम है रेडियो मॉरिशस पर आप सुन सकते हैं, हमारे जो चैनल है, आज एक नयापन लेकर आया है, और वो है हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं, और यहाँ पर इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं।

0: है तो ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर लोग फ़ोन करते हैं और गाना गाते हैं साथ मिलकर। जैसे कि आपने देखा फ़ोन बज गया है, लेकिन आपका नाम हम बारी बारी लेंगे। तायाब बोला है जो हमें देख रहे हैं, आप हैं स्कोफिल्ड, हेलो यूश जो है, धन्यवाद आपको, रूमिता गुजुना धन्यवाद, नीतिश बुला की बासु धन्यवाद आप सबको।
1: इतने सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं
0: अब ये कार्यक्रम आप सुन भी नहीं पाएंगे, लेकिन सुन सकते हैं, लेकिन देख भी सकते हैं।
1: बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे श्रोतागण की जो आवाज है वो भी सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बहना बता दीजिए, आज है विश्व बी डे, यानी
0: विश्व बी डे
1: यानी मधुमक्खी का जो दिवस है।
0: मधुमक्खी जी हाँ।
1: इसीलिए हमने कहा कि मीठे मीठे बोलना चाहिए।
0: हाँ।
1: है ना, तो चलिए पहला गाना आप मीठा मीठा गाना गाएंगे।
0: अच्छा, मैं खुद गाऊंगी।
1: हाँ जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी गाएंगे।
0: अब आपने फंसा दिया हमें।
1: हाँ जी, कोई भी मीठा गाना गा दीजिए, तब हम श्रोतागण को बता देंगे कि ये उदाहरण है, ऐसे गाना गाना चाहिए। एक रोमांटिक गाना, एक हैप्पी सॉन्ग, कोई भी गाना जो मीठा हो, जिसे आप सुनकर आपके दिल को संतुष्टि प्राप्त हो।
0: ओके

0: और मुझे नहीं पता।
1: कोई बात नहीं, आपको पता है लेकिन आप ज्यादा जल्दी ये समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि आप श्रोताओं को मौका देना चाहती हूँ
0: क्योंकि यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं, फोन भी कर रहे हैं।
1: पहला गाना आपकी पसंद का होगा और दूसरा गाना आज आपको गाना पड़ेगा। हम उषा जी आपको फिल्मों के नाम बताएंगी और जो फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी यानी गोल्डन जुबिली, स्वर्ण जयंती, 50 साल हो गए उन फिल्मों का
0: और इसे उन्हीं फिल्मों से लिया गया एक गाना आपको गाना पड़ेगा। और यहाँ पर
1: पहला श्रोता
0: लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी जी हाय कह रहे हैं, हाय आपको। और चलिए हम देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
1: नमस्ते शमा जी।
2: नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते, नमस्ते आपको।
1: शमा जी ने कहा था गत बार की वो आपसे मिली थी शादी के दौरान।
0: जी हम मिल पाए उन्हें और उन्होंने गाना भी गाया और मैं कहती हूँ कि आप बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी हैं।
1: शमा जी आप प्यारी हैं तो प्यारी सी आवाज में आप जरा अपना पहला गाना गाइए, आपकी पसंद का गाना प्लीज।
2: जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पर ये समझ

0: आपने कौन सा वादा किया है?
1: वादा किया है और निभाया भी है आपने तो
0: और चलिए एक फिल्म का नाम हम आपको देंगे और फिल्म का नाम है अदालत।
1: अदालत
0: इसी फिल्म का एक गाना सुनाइए।
1: अदालत फिल्म का कोई भी गाना आप गाइए। अमिताभ बच्चन जी उस फिल्म में थे।
2: हाँ। ओ तुमसे दूर रह के

0: करती रहेगी।
1: जी हाँ, आपसे हम कभी दूर नहीं रहेंगे, ये वादा रहा।
0: बिल्कुल, हमेशा मिलते ही रहेंगे।
1: हाँ,
2: धन्यवाद शमा जी, हर बुधवार को आपसे वादा है। तो चलिए, आपने दोनों गाने बहुत अच्छी तरह से गाए हैं और आप बनती हैं फर्स्ट ऑफ द वीक। चलिए, अब हम दूसरे श्रोता को सुनेंगे। उषा जी
1: जी, हेलो। अरे हेलो,
3: हेलो उषा जी, नमस्ते जी, रोशन जी,
2: नमस्ते,
1: नमस्ते
2: जी।
1: आपको नीला जी,
2: नीला जी, कोई म्यूजिक बज रहा है
1: मेरे ख्याल से आपके यहाँ पर?
3: बुटा दिया। हाँ जी,
1: बुटा दिया,
2: बंद कर दिया वो म्यूजिक। कहाँ,
1: जल्दी जल्दी बुटावा।
2: जल्दी करो, जल्दी करो।
1: बुटा देनी हो, बुटा देली। हाँ, चलो, पहला गाना आपकी पसंद।

0: खुल गया दरवाजा।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नीला जी, गजल आपने गा दिया। चलिए, दरवाजा खुल गया
0: है, इंतजार है आपको दूसरे गाने को। और वैसे दूसरे गाने आपको गाना है फिल्म भैराग, फिल्म से लिया गया, एक गाना सुनाइए।
1: भैराग, दिलीप कुमार साहब, लीना चंद्रभाकर गाइए।
2: वो तो मैं फिल्म नहीं देखती हूँ ना, मैं एक गाना गाती हूँ। आपने बोला ना मीठी मीठी,
1: मीठी मीठी बोल।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नीला जी, नीला
1: जी, ये गाना गाइए, बैराग फिल्म का गाना। आपको विषय के अनुसार गाना चाहिए
2: मुझे।
1: ओके, तो कोई बात नहीं, उषा जी आपको बताएंगी।
0: सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। जी हाँ, ये गाना है।
1: ओके
0: ओके नीला जी, धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद नीला जी, बाय
0: बाय बाय
2: बाय।
0: और कार्यक्रम को हम कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर जो लोग जुड़ चुके हैं हम उनका नाम लेंगे। आप है हेमा वुडन, धन्यवाद आपको, हाई कह रही है। नमस्कार आपको माया रामदोस। और कौन है शेर खान, कहाँ से आप बोल रहे हैं, दरवाज़ा ऑलरेडी खुला है। आपने सही बोला। और यहाँ के जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अंताक्षरी प्रोग्राम पेश है ऑन रेडियो मॉरिशस। मैं उषा कौर और साथ में है रोशन भाई। एक और फ़ोन कॉल लेंगे और देखते हैं कि लाइन पर कौन,
1: कौन है।
0: हेलो
1: हेलो
3: हेलो हेलो,
1: नमस्कार, जय भाई।
3: हाँ नमस्ते भाई,
1: कैसे बा?
3: अच्छा भैया।
1: बहन के भी नमस्ते कर दा।
3: हाँ हाँ, बहना का भी नमस्कार बोलता
0: हूँ। नमस्कार नमस्कार आप।
3: हाँ, जोर से बतिया,
1: जोर से तो बतिया था ही सही जा।
3: हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा
1: अच्छा बाब, अच्छा सुनो, तो पहला गाना अपन पसंद के गावो भाई जी, गावो
3: अपन पसंद के,
1: अपन पसंद के, लेकिन अंतरा नहीं गई है, खाली एक स्थाई गई है, गावो।

0: खुशी से गम बुझा लेना, खुशी से गम बुझा लेना, अगर दिल को न चैन आए तो कुछ रो रो के गा लेना।
1: चलिए बहुत धन्यवाद आपको जय भाई, बहुत ही प्यारा गाना है वैसे
2: जी, बहुत ही रेयर गाना गाते
1: जी,
2: हैं
1: रेयर गाना गाते हैं आप, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं आप ऐसे ऐसे गाने।
0: मेला का गीत है
1: मेला। हाँ जी,
0: कुमार नरगिस,
2: बहुत अच्छा, हमारे दिलों का मेला कभी टूटेगा नहीं।
1: और यहाँ पर चलिए गाना आप गाएं, फिल्म चलते चलते से लिया गया एक गाना।
2: चलते चलते फिल्म का नाम है, कोई भी गाना इस फिल्म से आप गाइए, बहुत आसान है।
0: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
2: बहुत अच्छा,
1: तो
2: बहुत
1: कभी
2: अच्छा,
1: आपको अलविदा नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं,
2: कभी नहीं।

0: कभी नहीं कहेंगे जय भाई, ऐसे ही आप हर सप्ताह भाग लीजिए, अच्छा लगता है जब आप भाग लेते हैं
1: तो मौका ही नहीं मिला ना
0: क्यों
1: दो
0: नहीं, हम तो
1: सप्ताह के बाद।
0: हमेशा नहीं हर सप्ताह भाग ले सकते हैं अगर आप चाहें तो।
1: ठीक है
0: ओके जय भाई, धन्यवाद,
1: धन्यवाद भाई, फिर कभी मिलेंगे,
0: मिलेंगे।
2: फिर मिलेंगे।

0: जी नहीं, आपको हम अलविदा नहीं कहेंगे। और शेर खान जो है, हमने उनको उनसे पूछा है कि वो कहाँ है, वो मेबर्ग से है। स्कारली दी है, हेलो ऑजेस, हेलो टू यू। और हमारी प्यारी ऑजेस सुमिता भी है, साथ जुड़ चुकी है, वो भी हमारा अच्छा। जो प्रोग्राम है देख रही है। और परी जी है, नीला देवी हेलो आपको, और परी आपको नमस्ते बोल रही है।
1: नमस्कार परी जी।
0: तो चलिए यहाँ पर श्रोता जो है, शोभा जी कैसी हैं आप, हमारी प्यारी शोभा जी जो रहती हैं वाकवा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइव पर कौन है।
1: चलिए,
0: हेलो
1: हेलो हेलो, सुन रहे हैं आपको। हेलो
2: हेलो, नमस्ते प्रसाद जी।
1: नमस्ते सुदेवी जी फ्रॉम वाकवा पंबुका।
2: लाइन नहीं मिलती,
0: लाइन नहीं मिलती,
1: मिल तो गई लाइन।
0: हम तो आपको सुनते रहते हैं ना हर हफ्ते।
1: कोई बात नहीं, लेकिन आज जब लाइन लगी है तो प्लीज अब पूरा फायदा उठाइएगा। ओके, चलिए फटाफट अपना गाना गा दीजिए जो आप बेहद पसंद करती हैं, गाइए।

0: जी हाँ, बेताब का गाना आपने गाया है, जब हम जवान होंगे। बिल्कुल, आप तो हमेशा जवान रहेंगी जब आप गाती हैं ऐसी हैं तो। चलिए सुदेवी जी, ये रहा पहला गाना आपकी ओर से। उषा बहना, क्या है ये सुदेवी जी के लिए?
1: फिल्म का नाम है छोटी सी बात।
0: छोटी सी बात, जो 1976 में रिलीज हुई थी। चलिए उस फिल्म से कोई भी गाना गाइए। और हाँ, लता जी का गाना है, बहुत आसान है, विद्या सिन्हा और अमोल पालेकर हैं इस फिल्म में। गाइए। नहीं आता आपको? ओके, जब आप उषा जी को सुनेंगी तो खुद बखुद आपको आ जाएगा।
1: न जाने क्यों होता है यूं जिंदगी के साथ, अचानक ये दिल किसी के जाने के बाद।
0: छोटी सी बात, न जाने क्यों,
1: है ना, ये है।
0: हाँ, जानती हैं अब ना, यही होता है। आप हमेशा होमवर्क करते रहिए, रेडियो सेट के साथ आप जुड़ते रहिए। ओके धन्यवाद आपको,
1: बहुत धन्यवाद आपको, शुभ रात्रि आपको। और यहाँ पर प्यारी सुदेवी जी हैं जो हमेशा रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़ी रहती है। न जाने क्यों होता है, हाँ न जाने क्यों होता है
0: जिंदगी के साथ।
1: जी धन्यवाद आपको, और आपके फोन कॉल्स के लिए भी हम आपको कहेंगे बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखते हैं
0: लाइन पर कौन आया है।
1: हेलो
0: हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
0: अली साहब।
2: बिल्कुल सही पहचाना आपने।
0: क्यों नहीं, अली साहब फ्रॉम लिस्कालिए, कैसे हैं जी?
2: मैं तो बिल्कुल महफूज हूँ, आप लोग कैसे?
1: हम भी महफूज हैं जी।
0: और आप
2: कुतुब,
0: माहौल तो ठीक है, और टिकटॉक पर आप जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज सुनाई दे रहे हैं टिकटॉक पर भी,
2: मगर दिखाई नहीं दे रहा।
0: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन सुनाई तो दे रही है ना। अच्छा, तो आप अपना पसंदीदा गाना गाइए प्लीज।
2: ये दुनिया,
0: बहुत अच्छा।
2: ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।

0: रोटी खाना।
1: बहुत अच्छा, हिरांजा फिल्म का गाना आपने गाया है, ये दुनिया ये महफिल, बहुत सुंदर गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में। अब उषा जी ने आपके लिए क्या तैयार किया होगा?
2: फिल्म कभी कभी।
1: कभी कभी का वो गाना गाइए जो आप बेहद पसंद करते हो।
0: मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी रहती है, पल दो पल मेरी जवानी है। होती है ना?
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा गाना गाया है, बिल्कुल कभी कभी का गाना गाया है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। हमेशा आप शायरी करते रहें अली जी, हम खुश हो जाएंगे, और अपने परिवार के को आप हमारी ओर से नमस्ते और आदाब कहना। ओके, बाय
2: बाय।
1: तो ये थे अली साहब। उषा जी, इतने सारे लोग फोन करते हैं और टिकटॉक पर भी लोग कितने जुड़े हुए हैं ना,
2: इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। हम उनको कहेंगे चलिए जारी रखने से पहले इस कार्यक्रम को, तो जो लाइव देख रहे हैं तो इस पेज को आप फॉलो कीजिए ताकि, और शेयर भी कीजिए ये प्रोग्राम ताकि औरों को पता चले कि यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम चलता है हर बुधवार को शाम के 5:15 से 6 बजे तक।
1: 6 बजे तक बिल्कुल, और अंताक्षरी प्रोग्राम जो है बड़ा ही मज़ेदार प्रोग्राम है।
2: हाँ बिल्कुल, और देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो
3: हेलो, नमस्ते आप दोनों को।
1: नमस्ते सरिता जी,
2: जी सरिता जी
1: कैसी हैं
3: आप? कैसे हो?
1: ठीक है जी, अगर आप से बातें कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मजा लूट रहे हैं तो हम ठीक हैं। चलिए सरिता जी, जरा हमें बताइए कि आप कौन सा गाना पसंद करती हैं, गाइए
3: कौन सा गाना? दोनों, नए पुराने दोनों।
1: तो गाइए,
2: तो एक गाना सुनाइए
1: प्लीज। सुनाइए
3: मेरी ओर से।
1: हम क्यों नहीं जी, आप ही की ओर से तो होगा। आप क्या उषा जी को सुनना चाहती हैं क्या?

0: कर के दिल अभी भरा नहीं।
1: बहुत बिल्कुल सही गाना आपने गाया। दिल तो अभी
2: जाओ
0: जी, हम दोनों
1: लेकिन यहाँ पर हम तीनों हैं
0: जी।
1: और कभी दिल नहीं भरता ऐसे ऐसे गानों से, है ना उषा जी? चलिए सरिता जी, ये रहा आपकी ओर से पसंदीदा गाना, अब उषा जी की ओर से क्या होगा?
2: लैला मजनू।
1: लैला मजनू जो 1976 में 50 साल हो गए इस फिल्म की।
0: अगर हम
1: अरे वाह,
0: खुदाई खुदाई भी।

0: खफा हो जाए।
1: बिल्कुल खुदाई आपसे कभी खफा नहीं होगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और हमेशा आप ऐसे ही गाती रहें, हम आपको मौका दे रहे हैं और आपकी आवाज टिकटॉक पर भी सुनाई दे रहा है।
0: आप दोनों को हमें मौका और एनबीसी को भी हमें मौका देते हैं
1: बिल्कुल
0: अंताक्षरी में भाग लेने के लिए।
1: अंताक्षरी प्रोग्राम तो आप ही लोगों का है ना।
0: आप दोनों को भी
1: ओके, धन्यवाद सरिता जी, बाय।
0: आपको भी
1: शुभ संध्या।
2: वैसे हम तो कहते हैं कि ये जो ये रेडियो है, ज़्यादातर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ही लोग सुनते हैं। अब ये जो नयापन हम लेकर आए हैं, ये जो टिकटॉक पेज है और लाइव भी करते हैं, हमारे जो युवा है वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं। और हम आपको यही कहना चाहते हैं कि हम सबको मौका देना चाहते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
1: बिल्कुल, अगर आप गाना भी नहीं चाहते तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास और टिकटॉक भी तो है, आप लाइव हमसे जुड़े हुए हैं। सचमुच आपने कहा बहना कि ये जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन, देखिए कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं।
2: हाँ,
1: इस नई टेक्नोलॉजी के बदौलत तो ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और आपको पता चलेगा कि अंताक्षरी प्रोग्राम वैसे ही बड़ा ही क्या कहें, मजेदार तो है ही और कुछ सीखने को भी मिलता है गानों के जरिए।
2: ओके, देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो
1: हेलो हेलो
3: हेलो
1: हेलो।

0: नमस्ते।
1: जी नमस्कार रोशन भाई।
0: नमस्कार संगीता जी।
1: नमस्कार निशा जी।
2: जी हाय
0: कैसी हैं
1: हाय
0: संगीता जी? ठीक हैं?
1: जी, एकदम ठीक है।
0: गुरु का बुलावा आया, शिष्या कैसे नहीं आएगी?
1: क्यों नहीं शिष्य
0: आ
1: गुरु
0: गई
1: पार।
0: बिल्कुल। एक तरफ इस फोन के इस तरफ गुरु जी बैठी हुई हैं और उस तरफ
1: नहीं। हाँ
0: शिष्या जी
1: उसे
0: बात
1: मिस
0: कर रही
1: करते
0: हैं।
1: रहते हैं, हम उसे मिस
0: क्या
1: करते
0: बात
1: रहते
0: है।
1: हैं।
0: तो चलिए संगीता जी, जरा बताइए आजकल कौन सा गाना बेहद पसंद करती हैं?
1: जी आजकल तो क्या
0: कोई बात,
1: कहें,
0: जो भी मन
1: अभी
0: में है,
1: तो
0: जो भी दिल से आप गाना चाहती हैं, प्लीज
1: हाँ
0: यू आर फ्री,
1: हाँ
0: गाइड।
1: आज तो विषय है मीठा मीठा गाने की ही ना।
0: केवल एक श्रोता ने ये कहा, मीठा मीठा, क्या बात है, गाइए मीठा गाना, गाइए।
1: जी तो कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल गाइए।

0: हमें
1: किसी से प्यार हो जाए, हमको तो आपकी आवाज से प्यार हो गया।
0: गाना के साथ साथ हमिंग भी।
1: क्या बात है, ये तो आपने एक नयापन लाया है। आज हमने नयापन लाया है टिकटॉक द्वारा। तो आप बहनी, आपने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। चलिए, ये रहा आपकी ओर से जूड़ी फिल्म का गाना।
0: और यहाँ पर हम आपको एक फिल्म का नाम देते हैं, महबूबा।
1: महबूबा, हाँ जी, राजेश खन्ना साहब और हेमा मालिनी।

0: बहुत अच्छा,
1: बहुत
0: बहुत अच्छा।
1: धन्यवाद आपको।
0: आपने दोनों गाने विषय के अनुसार गाए हैं संगीता जी। बहुत धन्यवाद। वाशिकी में सभी लोगों को हमारी ओर से नमस्ते।
1: नमस्ते आपको, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय।
2: ओके बाय
1: जी। चलिए यहाँ पर एक दो लोगों से बात करते हैं। और माया हमदर्द जो है प्रोग्राम को बहुत ही पसंद कर रही है, और स्कॉली डी कह रही है कि ये कार्यक्रम हमें टिकटॉक पर करना चाहिए। कैसे करेंगे भैया?
0: और साविना हो रहा है वो तो हो रहा है अभी
1: जी। और साविना भी जुड़ चुकी है, लेकिन साविना आपको हम बताएं कि ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है। दिस इज अंताक्षरी प्रोग्राम, जहाँ पर लोग फ़ोन करते हैं और हम खेलते हैं, वो गाते हैं, हम विषय देते हैं और वो लोग गाते हैं जी। तो यहाँ पर हम देखें लाइन पर कौन है,
0: चलिए उनसे मुलाकात करते हैं।
1: वैसे होप यू आर एंजॉयिंग दिस भाई रोशन, कि यहाँ पर इतने लोग हमें देख रहे हैं,
0: सारे लोगों का प्यार हम पर बरस रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। चलिए बहना, देखते हैं कि कौन है, किसका स्वागत हम करने वाले हैं अभी।
1: जी बिल्कुल। हेलो
0: हेलो
3: हेलो,
0: नमस्ते।
3: नमस्ते रोशन भैया, नमस्ते उषा बहन।
1: इंदिरा बहन, कैसी हैं?
0: इंदिरा बहन फ्रॉम मेबर,
1: फ्रॉम मेबर।
0: अच्छा जी, बहुत बढ़िया। याद रहे कि आप मिलकर या हमें सुनकर,
1: हमें सुनकर या मिलकर।
0: कोई बात नहीं, अंताक्षरी के द्वारा तो हम मिलते हैं ना। बिल्कुल, ये मिलन बड़ा ही अनमोल है।
3: जैसे आवाज सुनते हैं तो मांग लिए मिल गया।
0: ओह क्या बात है, इतना प्यार, इतना प्यार हम सहन नहीं कर पाएंगे।
1: प्यार दुलार। प्यार तो चलिए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। जी हाँ इंदिरा जी, पहला गाना सुनाइए आपकी पसंद।
3: कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो छुप गया आसमां में, इश्क मेरा रंग लाए वो प्रिया।
0: जी हाँ बिल्कुल।

0: ओ प्रिया, यानी झुक गया आसमान फिल्म का गाना
1: हम्म,
0: आपने गाया, बहुत ही सुंदर गाना है ये इंदिरा जी। अब देखते हैं कि आप ये गाना, आपको पता होगा या नहीं,
1: नागिन।
0: नागिन, जिसमें सुनील दत्त, फिरोज खान और रीना रॉय नागिन बनती है। याद आया आपको?
1: नहीं
0: नहीं याद आया आपको? कोशिश तो करें।
1: नागिन
0: नहीं याद आया आपको?
1: नहीं,
0: तेरे संग प्यार है नहीं तोड़ना,

0: बिल्कुल नहीं तोड़ना, हमेशा आपका जो प्यार है हम हमारे अंताक्षरी से कभी कम नहीं होना चाहिए इंदिरा जी.
1: ओके
0: धन्यवाद आपको, बाय.
2: चलिए यहाँ पर हमें बाय इंदिरा जी. जी यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि नंबर क्या है. 4028085 देवी जी अगर आपको फोन करना है तो कर सकती हैं. 4028085 और क्या कहें, यहाँ पर समय बहुत ही जल्दी जल्दी
0: जा रहा है और तो, लोगों का नाम ले रहे हैं तो और जल्दी जल्दी गुजर रहा है समय.
2: चलिए यहाँ पर कौन है. हेलो
0: हेलो
3: नमस्कार उषा बहन.
2: नमस्कार.
3: नमस्कार भाई रोशन.
0: हाँ नमस्कार हरीश भाई फ्रॉम बोबासे.
3: यस
0: ठीक.
3: तो ये जा करते हुए
0: अच्छा
3: गाइए. मैं कोशिश करता हूँ कुछ मीठे मीठे बोल गाने के लिए.
0: गाइए मीठा गाना गाइए.
3: क्या की तरह सोनू निगम.
0: ओ जी हाँ.
3: धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई आप सा जैसे नहीं.
0: क्या बात है. सो काइंड ऑफ यू हरीश भाई.
2: कोई हमसे नहीं
0: जी. अंताक्षरी जैसा प्रोग्राम भी कुछ नहीं है, है ना. कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है. आप लोगों का प्यार
3: करते हैं आपके प्रोग्राम,
0: आप लोगों की आवाज, यही तो हमारा मकसद है कि हम आपकी आवाज को पूरे मॉरिशस तक पहुंचाएं. अभी तो टिकटॉक के माध्यम से देखिए कितने लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना बहना
2: जी.
0: तो चलिए अब दूसरा गाना आप गौर से फिल्म का नाम सुने.
2: जी हाँ फिल्म का नाम है फकीरा.
0: फकीरा बिल्कुल. फकीरा
3: फकीता?
0: फकीरा फकीरा शशि कपूर शबाना
3: आजमी
0: फकीरा. हाँ गाइए.
3: दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद.

0: शबाना आजमी गाती है इस फिल्म में
1: बिल्कुल शबन अजमी और शशि कपूर, लता जी की आवाज और हरीश भाई ने क्या खूब गाया, और लगता है कि उषा जी को इस गाने से प्यार हो गया।
2: हाँ जी, लेकिन हम गाएंगे नहीं।
1: ओके, तो ये रहा बहुत ही सुंदर सा गाना, हरीश भाई यू आर द बेस्ट है।
0: शुक्रिया।
1: ओके बाय बाय
0: बाय बाय, फिर मिलते हैं।
1: फिर से मिलते हैं।
0: बाय।
1: ये गाना किसी दिन आप अवश्य गाइए बहना।
2: बिल्कुल,
1: कि सारे जो चाहने वाले हैं आपके टिकटॉक के द्वारा आपसे जुड़ रहे हैं।
2: क्या करें, एक और फोन कॉल ले।
1: बिल्कुल।
2: हेलो
1: हेलो,
3: नमस्ते रोशन जी।
1: नमस्ते शोभा जी, फ्रॉम बाकुआ।
3: जी हाँ, और उषा जी को भी नमस्ते।
2: नमस्ते, आपको कैसे हैं?
3: मैं ठीक हूँ, और रोशन जी कैसे हैं?
1: हम भी ठीक हैं जी। और आपने टिकटॉक पर एक मैसेज भेजा है ना,
2: वो बहुत ही कैसे बोलते हैं, क्लेवर है, शातिर है,
1: शातिर
2: वहाँ टिकटॉक पर देख रहे हैं और यहाँ पर फोन कर रहे हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है, देखा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइव के लिए।
1: धन्यवाद,
3: हम लोग तो बहुत खुश होंगे, अब तो अब लाइव देखने को मिलेगा ना।
1: ओ क्या बात है शोभा जी, तो चलिए
3: बहुत धन्यवाद,
1: अब लाइव गाना भी गा दीजिए।
3: ओके
1: गाइए।
3: जीवन के दिन छोटे सही

नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच मॉरिशस में रिपो रेट यानी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने इसमें 0.25% की वृद्धि करते हुए इसे 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया है। मॉरिशस में 2021 से 2025 के बीच 650 से अधिक किशोरों को नशीली पदार्थों से जुड़ी समस्याओं के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती करना पड़ा। राष्ट्रीय सभा में कल मंत्री अविनाश रामतोहल ने कहा कि ये बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिए अधिक लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। प्रकृति के संतुलन में मधुमक्खियों की भूमिका बेहद अहम। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने रेजी में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत में भीषण गर्मी, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज जैसे आग बरसा रहा है। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुँच गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बढ़ते दबाव के बीच मॉरिशस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी लाई गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रिपो रेट में 0.25

0: 25% तक की वृद्धि करते हुए इसे 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया है। समिति का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर मध्य पूर्व संकट के संभावित आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए मॉरिशस अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। एसामग्ला की आगामी समीक्षा से पहले बालाक्लावा में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। निजी क्षेत्र, सरकारी संस्था और नियामक विभाग ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि कानून सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीनी स्तर पर भी उसके ठोस परिणाम दिखाई दे। दासा पलासोमी, यचना मिश्रा।
1: इस अमला द्वारा किए जाने वाले पारस्परिक मूल्यांकन के करीब आने के साथ उम्मीदें मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित हैं कि स्थानीय संस्थान मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ाई में वास्तविक प्रभावशीलता दिखाने में कितने सक्षम हैं। प्रभावशीलता केवल सरकार के प्रयासों से हासिल नहीं की जा सकेगी बल्कि इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को एक साथ लाना होगा। तैयारी के लिए क्या करना चाहिए ताकि कानून का सही तरीके से पालन किया जाए जिनसे ठोस परिणाम सामने आएंगे। सभी देशों के लिए परीक्षा कठिन है क्योंकि इस बार प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा रहा है। क्या प्रणाली प्रभावी तरीके से काम कर रही है या नहीं। पिछले मूल्यांकन के बाद से कई नई अपेक्षाएं जोड़ी गई हैं और 7 देशों पर मूल्यांकन किए जा रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि मॉरिशस को कैसी तैयारी करनी पड़ेगी। इस बैठक में अपेक्षित ठोस परिणामों पर जोर दिया गया, जाँच, सजा, निगरानी और सुशासन। मकसद है ये समझाना कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार क्या कर रही है, नियामक संस्थाओं को कौन सी अपेक्षाएं हैं, 2027 के अगले मूल्यांकन के लिए कौन सी तैयारियां बाकी हैं। अटर्नी जनरल गाविन ग्लोवर के अनुसार यह मूल्यांकन पूरे देश से जुड़ा हुआ है और सरकार के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। ये मात्र फैटएफ की शर्तों को पूरा करने का सवाल नहीं। चुनौतियां बढ़ रही हैं, रोज बदल रही हैं। वर्चुअल परिसंपत्तियां रोज विकसित हो रही हैं और उनके गलत प्रयोग के खिलाफ संघर्ष इतना आसान नहीं। एक जिम्मेदार देश होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता, संस्थाओं और अर्थनीति को इन नए वित्तीय अपराधों से बचाएं। समय सीमा नजदीक आने के साथ ही तैयारियों और सक्रियता में तेजी आ रही है।
0: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बढ़ते दबाव के बीच मॉरिशस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रिपो रेट में 0.25% की वृद्धि लाई है। समिति का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण ऐसा करना पड़ा है।
2: There was consensus within the MPC that raising the key rate by 25 basis points was best aligned with the bank's mandate of price stability and orderly and balanced economic development. The MPC wishes to emphasize that the decision to raise rates is a calibrated response intended to reinforce price stability at a time of elevated external risk while maintaining support for sustainable economic growth over the medium term. The MPC will continue to closely monitor the evolution of the Middle East conflict and its spillovers to global energy markets, supply chains, financial conditions, and domestic price dynamics. Monetary policy decisions will remain data-driven and will continue to be guided by evolving inflation dynamics, domestic economic conditions, financial market developments, and the external environment.
0: खबरों को हम जारी रखते हैं। डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रसभा में कल

0: इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट बिल पर बहस हुई। मंत्री अविनाश राम दोहल ने कहा कि इस संशोधन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से जुड़े कानूनी ढांचे को मजबूत करने के साथ उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को प्रस्तुत किया। मॉरिशस में 2021 से 2025 के बीच 650 से अधिक किशोरों को नशीले पदार्थों से जुड़ी समस्याओं के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती कराना पड़ा है। राष्ट्रसभा में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री अविनाश राम दोहल ने कहा कि ये बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और इसके लिए अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में नादक माध्यमिक स्कूलों के छात्रों में सिंथेटिक ड्रग्स के सेवन पर एक विस्तृत अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है।
1: These figures indicate a concerning upward trend in recent years.
2: ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्थिति कितनी बिगड़ गई। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल द्वारा Prevalence of Determinants of Synthetic Drugs Among Secondary Students in Mauritius विषय पर एक अध्ययन चलाया जाएगा, स्थानीय स्तर पर खतरा, हस्तक्षेप आदि पर। मंत्रालय के पास नौजवान लड़कों के लिए लॉन्ग माउंटेन में एक रिहैबिलिटेशन केंद्र है, एक केंद्र महिला मरीजों के लिए है जिनमें बुबासा की युवतियां शामिल हैं, और एक रिहैबिलिटेशन केंद्र आने वाले हफ्तों में फ्लक में कार्यरत होगा।
1: Currently, the ministry has one residential rehabilitation center for male adolescents at Long Mountain, one for female patients, including adolescents of Beaubassin, and there is one additional rehabilitation center which will become operational in the coming weeks at FLAC.
0: 114 मिलियन रुपए से जुड़ी सूद के इस मामले में आज पोपलेमुस अदालत में एक अहम फैसला सुनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ की उस मांग को अदालत ने खारिज कर दिया जिसमें एफसीसी जांच के संभावित गवाहों के नाम जानने की अनुमति मांगी गई थी। मैजिस्ट्रेट बीमा बोयरू ने कहा कि इस तरह का आदेश देना इस अदालत के अधिकार में नहीं आता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अनिश्चितता में रखना उचित नहीं है। इस मामले में प्रवीण जगनाथ की ओर से वकील रवि येरिगादू पेश हुए। अगर प्रकृति का संतुलन आज भी कायम है तो उसमें मधुमक्खियों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। फूलों से खेतों तक और शहद से खाद्य सुरक्षा तक ये छोटी सी जीव कृषि और जैव विविधता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने आज रिजवी में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जहां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सागा उनू की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण याचना मिश्रा के साथ।
2: विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि और पर्यावरण क्षेत्र के कई प्रतिनिधि एक साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए ताकि मॉरिशनों के दैनिक जीवन में मधुमक्खियों के महत्व को बेहतर ढंग से समझाया जा सके। हम प्रकृति में ही रहते हैं और मधुमक्खियों के साथ रहना सीखना चाहिए। 10 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। मधुमक्खियों पर कोई कीटनाशक न डालें, उनके बिना जीवन ही नहीं। अगर ये लुप्त हो गई तो 4 साल बाद हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, खाना ही नहीं मिलेगा। कुछ पौधों के धीरे धीरे गायब होने से इस क्षेत्र के पेशेवर चिंतित हैं। ये पौधे मधुमक्खियों को पराग यानी पोलन और रस प्रदान करते हैं। ऐसे पौधे बढ़ाने चाहिए और उन्हें संरक्षित करना चाहिए। निर्माण आदि के कारण मधुमक्खियों की संख्या काफी कम हो गई
3: है।
2: भूमि विकास, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया ताकि मधुमक्खियों का अस्तित्व सुरक्षित रहे। विकास जरूरी है लेकिन प्रकृति का संरक्षण भी। हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। खेती वाली कई जमीन हम गंवा चुके हैं लेकिन भूमि और कृषि की ओर वापस जाना मन से होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र

0: के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलें किसी न किसी रूप से परागण यानी पोलिनाइजेशन पर निर्भर हैं।
1: मॉरिशस में क्वाड बाइक गतिविधियां लगातार लोकप्रिय हो रही है और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि अब इसे बेहतर ढंग से संगठित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही ऑटोमोबाइल सर्किट परियोजना को भी जल्द ही आगे बढ़ाने की मांग उठ रही है। इससे जुड़ी इन अपेक्षाओं और चुनौतियों पर पेश है ये रिपोर्ट कुणाल गोजी के साथ, विवरण रचनी बीकर।
2: क्वाड नए बिकते हैं या फिर कुछ सेकंड हैंड भी, न केवल बिक्री करने वालों के यहाँ बल्कि नेट पर भी। कुछ वर्षों से मॉरिशस में क्वाड की संस्कृति सी पैदा हुई है। एक्सकर्शन्स एजेंसियों के माध्यम से ये उपलब्ध। बिग फुट एडवेंचर के ऑपरेशंस मैनेजर क्रिस्टोफर लम ने कहा,
3: C'est un plaisir comme un autre, c'est un sport comme un autre.
2: ये दूसरे स्पोर्ट्स की ही तरह है, चलाने में आनंद मिलता है। यूट्यूब इंटरनेट आदि के साथ लोग देखते हैं कि दूसरी जगह पर क्या हो रहा है और ऐसा करने की इच्छा होती है, कोशिश भी करते हैं। कुछ प्रयोगकर्ता मना ही एवं नियंत्रण के बावजूद अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं। इस दिलचस्पी के चलते क्रिस्टोफर लम का मानना है कि ऐसे में इसके प्रयोगों को व्यवस्थित करना चाहिए। उन्होंने कहा, एक संगठन कायम होते देखना चाहते हैं जिसे स्पोर्ट्स मंत्रालय और सरकार से मान्यता प्राप्त हो, साथ में स्पोर्ट्स गतिविधि की ही तरह भी इसे मान्यता प्राप्त हो। मॉरिशस में मोटर राइडर संगठन तिवारा बाइकर मॉरिशस की भी यही राय है। तिवारा बाइकर मॉरिशस के अध्यक्ष प्रवीण गणपत ने कहा,
4: क्वाड
2: चलाना अच्छा लगता है, फन है। क्वाड के लिए अगर एक उचित जगह मिले तो बहुत अच्छा है। शिकार वाली जमीन से हटकर अलग जमीन, सीखने के लिए और चलाने के लिए भी। इस बीच परिवहन मंत्रालय याद दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी पाया जाए तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और 5 साल जेल की सजा भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो निजी इलाकों के बाहर क्वाड चलाते हों।
1: फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिव के नेता पॉल बेरांजे का कहना है कि इस बार सरकार के पास पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आर्थिक गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने मूडीज और IMF की हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। ये बयान उन्होंने आज बजट से जुड़े प्रेस सम्मेलन के दौरान दिया। उपभोक्ताओं के हितों और कीमतों पर बेहतर निगरानी के उद्देश्य से सरकार ने प्राइस कंट्रोल कमेटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। आसिम ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि वो 2015 से इस समिति की स्थापना की मांग कर रही थी। इसी दौरान नेशनल होलसेल मार्केट को वुटन से डिसेंट्रलाइज करने की परियोजना पर भी प्रतिक्रिया दी गई। नीतुषा जीहा, याचना मिश्रा।
0: आसिम के महासचिव ने उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा के लिए कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित करने के सरकारी फैसले पर प्रतिक्रिया दी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा इस समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस आम होंगे ताकि हम सुझाव दे सकें। जयंत चेलम ने वुटन स्थित नेशनल होलसेल मार्केट की विकेंद्रीकरण परियोजना पर भी अपनी बात रखी। वुटन में 15 रुपए का ककड़ा प्लेन विलियम्स की मंडी में 115 रुपए में बिक रहा है। रीजनल मार्केट दोबारा स्थापित करने की मांग मंत्री बुलेल से की जा चुकी है। आसिम ने बैंकिंग सेवाओं में अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की ताकि विशेष रूप से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों से बचा जा सके।
1: विदेश में भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज जैसे आग बरसा रहा है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि उत्तर प्रदेश में तापमान लगातार दूसरे

दिन 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण लू, गर्म हवाएं और तपती रातों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला किया तो संघर्ष मध्य पूर्व से बाहर भी फैल सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध को बहुत जल्द खत्म करना चाहता है और ईरान समझौते के लिए तैयार दिख रहा है। कोंगो में फैलते इबोला प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक 514 संदिग्ध मामले सामने आ चुके, जबकि 136 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप की तेज रफ्तार और बढ़ते फैलाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। और अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं, जहां भारत और इटली के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। रोम में प्रधानमंत्री श्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसमें दिखाई दिया कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास, मजबूत होती साझेदारी और साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश। और अब आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, वर्षा भी होगी और कुछ इलाकों में कोहरा भी छाया रहेगा। कल शाम को भी बादल घिरे रहेंगे, हवा हल्की रहेगी और दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 24 से 26, सारे इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:33 पर होगा।

0: 6:21 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ हमें पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। बुआ द्वाजो रोड पुदोदो विलाज में, बुआ द्वाजो रोड पुदोदो विलाज में 79 साल की 79 years old श्रीमती बेदवंती नेहल, श्रीमती बेदवंती नेहल पैदाशी नाम सियाम्बा और जिन्हें लोग बेदाम नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ ही कल दिन की 11 बजे, कल दिन की 11 बजे इनके पति बागरीत नेहल के मकान बुआद्वाजो रोड पुदोदो विलाज से उठाकर बेलमो गुडलैंड से कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉयल रोड बुबासे में लाशापेल ऑडोंट इलियंसन, रॉयल रोड बुबासे में 82 साल के 82 years old श्री पूरन दौलत, श्री पूरन दौलत जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे नंबर 23 ग्लैडस्टोन स्ट्रीट रोज हिल के रहने वाले थे। इनकी अर्थ ही शुक्रवार को दिन के 1 बजे, शुक्रवार 22 मई को दिन के 1 बजे लाशापेल ऑडोंट इलियंसन रॉयल रोड बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 1 PM।

एक्स रेलवे रोड अपडागुचिया में, एक्स रेलवे रोड अपडागुचिया में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री धनेश्वर सामुज जिन्हें लोग पु दीवान नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके मकान एक्स रेलवे रोड अपडागुचिया से उठाकर सेकोस्तान सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 9:30 AM। एवेन्यू बुगेनविलिये तमारे में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्रीलाल देव जगरनोत जिन्हें लोग पार्टनर नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे मुसलमान वीओएस कास्कावेल के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी बेटी करुणा जगरनोत रंजीब के मकान एवेन्यू बुगेनविलिये तमारे से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। रॉय रोड बुबासे में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जसमती बेकारू पैदाशी नाम नरसिंह और जिन्हें लोग बालिका नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे रामनारायण रोड कुतेज के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे एलियनसन रॉय रोड बुबासे से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। नंबर 14 बी डॉविन एवेन्यू कैटरबोन में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कमुशलाई रमन जुलू पैदाशी नाम रामसामी और जिन्हें लोग सरोजिनी नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके दामाद पीले महोदय विनेश के मकान नंबर 14 बी डॉविन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर सहमौते मोहोश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। Funeral tomorrow at 11 AM. Holdem Avenue Elvisha Saint-Pierre 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड श्री जागराजन मौदे जिन्हें लोग दुना मौदे नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी शुक्रवार 22 मई को दिन के 12:30 बजे इनके मकान होल्डम एवेन्यू एल्वेशा सैंपिया से उठाकर सैकोस्ता सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल ऑन फ्राइडे एट 12:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा यह विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड श्रमिक ऋणी तथा आसपास के ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से कल गुरुवार 21 मई 2026 को दिन के 1 बजे से शाम के 5:30 बजे तक बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। मरम्मत कार्यों के पूरा होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: आज की सूचनाएं।
1: उर्दू भाषा में नेशनल ड्रामा फेस्टिवल का फाइनल गुरुवार 21 मई के लिए तय है। जगह सेज कॉन्स्टेंटिन थिएटर वाकवा, सुबह 10 बजे से। रुद्रनाथ मंदिर, तुलसी भवन, सोलफिर नंबर 1 वाकवा,

श्री अजय याग्निक ग्रुप जो भारत से हैं, उनके सहयोग के साथ एक महीने का रामायण पाठ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। शुरुआत हुई 16 मई से, जो चलेगा रविवार 14 जून 2026। जगह रुद्रनाथ मंदिर, तुलसी भवन, सुल्फरिनो नंबर 1, वाकवा। रोज का कार्यक्रम इस प्रकार होगा, रामायण पाठ और प्रवचन। समय रहेगा शाम के 7 बजे से रात के 9 बजे, जो प्रस्तुत करेंगे मॉरिशस रामायण मंडली, जिसके बाद होगी आरती और महाप्रसाद भी दिया जाएगा। गुरुवार 21 मई शाम 6:30 बजे लावोंचुया झरना शिवालय रामायण सत्संग का आयोजन कर रहा है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी भक्त जनों को अनीता का प्रेम सहित नमन स्वीकार कीजिए तथा भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम इस क्षण रेडियो मॉरिशस की लहरों पर प्रसारित हो रहा है। श्रोतागण, एक सुविचार इस प्रकार है कि चरणों से कांटा निकलने के पश्चात ही चलने में जो आनंद आता है, वही आनंद मन में अहंकार निकलने के पश्चात जीवन जीने में आता है। तो आइए इसी सुविचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, गीता में कहा गया है कि निरंतर अपने नियतानुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का

पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ आप कर्म करेंगे उसी नियत के अनुसार आपको फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है।

प्रियजन, मान्यता है कि जीवन कल से शुरू नहीं होता, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता है। जो आप आज नहीं कर सकते, उसे आप कल भी कभी नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर कल की प्रतीक्षा में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस एक पश्चाताप ही बाकी रह जाता है। यदि जीवन है तो आज से ही लड़ना सीखे, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए लक्ष्य सदैव दूर होता है। अपनी मेहनत को कल पर मत डालिए, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता।

भक्तों, एक श्लोक इस प्रकार है, आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः, परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। कहने का तात्पर्य है कि इस जीवलोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीना है।

श्रोताओं, कहा गया है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। तो इसी सुविचार के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे असवद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह उसे कयामत के दिन इस हाल में उठाएगा कि उसकी दो आँखें होंगी जिससे ये देखेगा, एक ज़बान होगी जिससे ये बोलेगा, और ये उस शख्स के ईमान की गवाही देगा जिसने हक के साथ यानी ईमान और अजर की नीयत से उसका इस्तलाम किया होगा। बहवाला जामे अत-तिर्मिज़ी।

निगाहों की तलाश बस इतनी सी है, या रब आखिरी सांस से पहले रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। एक दिन हम भी इंशाल्लाह गिलाफ़े काबा चूमेंगे, हम भी काबे को जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए यज का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब बखैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: सब संगतियों के और जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलामी हत और मनपसंद रेडियो चैनल और इम्प्रियो रेडियो मनोरंजन। रात के 9:02 हुआ था, आज बुधवार की रात 20 मई 2024। सबको के स्वागत बा और आज से ही प्रोग्राम चली लाइव टिकटॉक पेज पर भी, रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। तो जितना कोई हमने के देखा था सबको के नमस्ते और सलाम, सबको के स्वागत करे थे। जा अभी से 9 बज रहे, सब बच्चा अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत मांगे पर। और हमने के अभी ढेर कोई साधे होता, सूर्या हवन, फिर बिब और दिखाते सुल्ताना भी हमने के साधे होते, हाय सुल्ताना। और रिपेल का गाना तो हर खाते चली मोरिसवा, अनिल सिंह रमी सर मनहिर अमृत की आवाज़ में, मनहिर अमृत और अनिल सिंह रमी सर की आवाज़ में चली ये गाना मोरिसवा। और जितना सकबर शेयर करे ये टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस के शेयर करा जा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत आलोक हमने के साथ दे। अरविंद बिसोनी हमने के साथ दे वतवन, वेलकम भाई जी। फिर अभी देखते हैं हमने के साथ बा रूपाश शिवरम, प्रमिला ओकला, सुस्वागतम प्रमिला ओकला जी। हमने के बहुत प्यार से दिखाते हुए और सुनाते हुए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर भी। वृंदा भी हमके साथ देवतन, चले एक साथ सुने गीतवा मोरिसवा।

पूछा था संगतिया लोग कि सर्दी के मौसम में चला रही सर काय की दिखा रही सर फजीर के समय और रात के समय कोहदे में बहुत कोहदे जो है बड़ी ठंडा ठंडा रहेला और ऐसा मौसम में बस जरा गर्मा गर्म पानी पिए के गर्म गर्म कपड़ा पहने के और साथ में चेहरा सब प्रकोश होने की कहे कि सर्दी के मौसम में देखो कि खोंकी और सर्दी हुआ था और जब फजी की देखभ 6 बजे या 6 बज के आधा ही अंधार कर लगभग तो जान जा कि इलीवेयर के महीना है ठंडा के महीना है और शुरू गलबा और शाम से बखत 5 बज के आधा 5:45 बजे जो है अंधार हो जाए यानी कि ठंडा के मौसम सर्दी के मौसम चला बा और बस ऐसे मौसम में ग्लासे चीज़ नहीं पिए ना ग्लासे पानी ना सॉफ्ट ड्रिंक वो तैमूस ले लीजिए या गोद ले लीजिए जेकर मैं गर्म पानी रखिए और समय समय पर गर्म पानी या चेत पानी पिया जाए और अभी देर को हम की शादी होता बीच मावती समत गीत मंगले हवन रतन निहाल गाँव भी से फिर ओकर पत्नी रत्ना पापा बीजे और सब परिवार माया उगा गी तोहर खातिर अनवर साहब है गी तोहर नाम वर वर दस्ता है गी तोहरों खातिर और ढेर कोई हमने के साथ देवत हवन टिकटॉक पेज पर भी और सैतुब SSS के ग्रेड 13 के सब स्टूडेंट्स लोग जो हमने के लिखा था टिकटॉक पेज पर वो लोग खातिर भी ये गीत चली बीज मावती संपत के गीत गवाई में चले के बा और हर ही सप्ताह जगह शादी हो के बाद गीत है तो लोग के नाम गीत गवाई में चले के बा चलोगे चंद

संगतिया लोग, जब ठंडा के मौसम आवेला तो हमने की चाय के याद आवेला। ढेर प्रकार के चाय बा दुनिया में, जैसे कि अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय, कड़क चाय, जो कि लेमन टी बढ़िया सर, ग्रीन चाय, ग्रीन टी, आसाम चाय, दार्जिलिंग चाय, नीलगिरी चाय और कश्मीरी चाय। और जब अदरक वाली चाय की बात कर दी, जब ढेर ठंडा गिरेला तो थोड़ा सुन चाय बनेबा, चाय वहाँ बुई करबा, तो थोड़ा सुन दो तीन को अदरक के बूंद डाल दिया, वो जोन करेला हमने के खांसी सर्दी जुकाम से दूर रखेला। और जेकर गला सुसुराला या जो कि खोंकी सर्दी होला, तो जोन अदरक वाली चाय है बेस्ट चाय है, रोज फजीर के पीबा तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रही। अभी जैसे ठंडा कर रहता चला, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेके, विटामिन सी लेब तो स्वास्थ्य खातिर अच्छा बा। भोजपुरी तरह का प्रोग्राम जारी बा। सुनब जगह जुड़ी संगीत, जोली छोकरी से प्यार करीला, आय है या जुड़ी जोली छोकरी जो कोई हमको देखा था, सबको की बोला सा सुस्वागतम, जितना जुड़ी जोली पापी और लड्डू हमने के देखा था लाइव तो गीत चलो कि नाम। और संगतिया बा, हेलो सर, यस फ्रॉम सतुबे एस एस एस, ओके वेलकम वेलकम। नेक्स्ट गाना फॉर यू फॉर सतुबे एस एस एस ग्रेट टीन रेड के स्टूडेंट्स लोग के नाम जोड़ी छोकरी है कि तो संगे संगे गावप सा और नाचप सा संगे। ओके आली 1 2 3 हैव वी गो।

0: जोली छपरी से प्यार कर।
1: कैसे बतलाब दोगे, कैसे समझाब दोगे, सदाए हमको जोली छोकरी से प्यार करीला खातिर हम रोज जीला। कैसे समझाबोगे, कैसे समझाबोगे, कोई न कोई बताए दे हमको। SMS करा हंस अंचलो, यस लेट्स डांस टुगेदर हंस अंचलो, कम ऑन, जोली छोकरी से प्यार करीला।

0: कैसे बतलाओगे, कैसे समझाओगे, कोई न कोई बता दे हम। झोली झोकड़ी से प्यार करी ला जेकर खातिर हम रोज जी, कैसे बतलाओगे, कैसे समझाओगे,
1: कोई न कोई बता दे हमके।
0: हाय सबूलाल चौधरी, यस सनीलाल चौधरी, हाय हाउ आर यू, वेलकम ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस। जोड़ी छोकरी से प्यार करी रहा तेजस, कम ऑन डांस, कम ऑन तेजस डांस।
2: फजीर फजीर जब राजू दिखेला, कैसे बतावा,
0: कैसे बतावा,
2: दुनिया

कैसे प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला, कैसे बदलाबो के कैसे समझाबो के कोई ना कोई बताए दे। छोली छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला, कैसे बदलाबो के कैसे समझाबो के कोई ना कोई बताए दे हमके। प्यार करीला हम रोज जीला, कैसे बदलाबो के कैसे समझाबो के कोई बताए दे हमके। इसे प्यार करी लज कर खातिर हम रोज जीला, ऐसे बदलाबोगे कैसे समझाबोगे

0: जी हाँ, एक से एक बढ़िया भोजपुर गीत, एक से एक बढ़िया म्यूजिक तोहर खातिर तोहर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर भी। और जैसे कि बोलते सर कि भोजपुरी तड़का जो प्रोग्राम है ये रोज के चले रहा है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन की लहरों पे, और आज से लाइव चला था ये प्रोग्राम टिकटॉक पेज पर। और आजकल देखिए ऐसे संगत है लोग कि वेज खाना ढेर कोई वेज खाना खाता कहे कि एक में टॉक्सिन कम रहेला, दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए कि सब कोई जागृत बा। और देखते जैसे कि ढेर माना देश में आजकल ढेर कोई वेज खाता, जैसे इसराइल, ताइवान, इथियोपिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और कनाडा ढेर माना लोग वेज तो कर बढ़ता। तो अच्छा बात है शाकाहारी भोजन करबा तो अच्छा स्वास्थ्य खातिर अच्छा रहेला, शाकाहारी वेज तो भोजन करबा तो ढेर माना बीमारी से बचब जा, जैसे दिल के रोग से, मधुमेह से, तौशों से, जाबित से दूर रह जा। और चल अगला गीत सुनब जा, अंजू गैलक बा जिंदगी बा। यस, अंजू के गावल गीत नहीं, अंजू के गावल गीत था जलसाबा। चलो गीत खोजे ढेर को एक गीत मांगत है अभी जलसाबा, तो हम यो जलसा करब सत लोग के संगे संगे रात के 11 बजे ले जलसाबा अंजू के साथ गीत खास कर चला होता है। जितना कोई काम करता अभी रात के वक्त नाइट शिफ्ट में तह गीत तो लोग के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ, और जितना स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग दोस्त हम की सुनता वो लोग खातिर भी। और एक गीत संजय बिहारी की ओर से कर पत्नी सुरेखा, फिर बेटा कुशल, बेटी रिंकू, दामाद, बहू सब परिवार के नाम। शुभम एम जी हेलो है गीत और खातिर भी, अंकुश ऑल्सो हम के साथ, नीलम भी हवन टिकटॉक पेज पर हम के साथ होते हैं गीत। और जितना कोई टिकटॉक पेज पर हमकी देखा था हमने के सुना था तो गीत तो लोग के नाम जलसा बा। चला जलसा करें
1: Ladies and gentlemen, namaskar, the boat will...

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। एक से एक जोली

0: खुलेगी प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: जैक से एक बेहतरीन गाना, एक से एक बेहतरीन म्यूजिक तोहर खातिर एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मनोरंजन पर। भी वो संगत है गीत मांगलेवन, बरका मामा बरका मामा बरका मामा के कर पतोया एकर पतोया एकर पतोया बरका मामा एकर पतोया। हाँ गीतवा बात गीतवा मंगले हवन बरका बरका मामा की मंगलाक भाई गीतवा को संगत या मंगलाक भाई टिकटॉक पर भी खोजते इसे को नाम बरका मामा के गीत। यस हेलो सर, प्लीज प्ले बरका मामा मनी प्रिया ते गीत और खातिर चली। और अमला देवी तो यो लोग को भी एम के साथ देवथवन अम्बिसा। हेलो जी नमस्ते, सुस्वागतम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर। और 140 है गीत तोहरों खातिर जोशी हम के साथ देवथवन जोशी है गीत तोहरों नाम। और जितना कोई भी नाचता गावता हिस रेन है गीत तोहर खातिर अंधोनिहा नेट्स बी बेबी हम के साथ देवथवन टिकटॉक पेज पर। और बोलतवन प्रताप जी प्रोग्राम एकदम बढ़िया बा, नाचते ही सा गावते ही सा तो सबको नाचे गाव। और साध परमा और ढोरा बिहन के साथ देवत हवन नूरमान है गीत थोड़ो खातिर। संगीता मिरन हवन लागोजा से गीत मांगले हवन माता जी रीता सीतालू खातिर। रोहबी से बोलते हवन हैप्पी बर्थडे माता जी और हैप्पी मदर्स डे। और हम के साथ देवत हन मोनी बरन का निकोल वर्दे वर्दन अनुदी रीना और राय है गीत तो लोग के नाम बरका मामा।

सबको हमने के संगे नाचा था गावा था झूमा था इसे ही नचते गाते रहिया। भोजपुत्र का प्रोग्राम रात के 11 बजे ली। आजकल ठीक से धीरे माना घर में छोटा छोटा बात के लिए कि मियाँ बीवी में झगड़ा होला नोक झोंक होला कभी कभी को मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पति पत्नी झगड़ा करने लगेला और जब पति पत्नी झगड़ा लेगा कर में हिला तब प्रॉब्लम और गड़बड़ हो जाला। तो जब देखभा कि पति पत्नी में झगड़ा हो तब एक जना के जहाँ से दे हो के अगर दोनों जना मुँह चलाए इधर उधर की बात बही तो मारपीट तैयार हो लगी। इसी का घर में महाभारत भी हो चला और एक से बच्चे कहते जब पत्नी ढेर मुँह चलावा था तब पति के चेहरा चुपचाप घरवा में से निकल के थोड़ा समय कर दी बाहर चल जाए या जब पति ढेर बतियाता था पत्नी के चेहरा समा में से निकल के थोड़ा देर बाहर चला जाए जब स्थिति कंट्रोल पर आ जाए तब एक दूसरे से चाह बात करेगी। आजकल देखिए ऐसे स्ट्रेस के कारण तनाव के कारण कब पैसा के कारण पति पत्नी में नोक झोंक होला तो ये सब चेहरा कम करेगी कहे कि इसे घर में किरकिर होला और किरकिर जो घर में होला वो घर में प्रगति नहीं होला लक्ष्मी माँ नहीं आवेला। चलक लगी सनम जय धोती पोती पगरी अमृता गणेश समी के साथ देवधवन लीला और ललिता ललिता कुशल हवन थयोले से गीत तोरो खाती तो सब परिवार के लिए और चाची प्रभावती लोल हवन नुवेल फ्रांस के साथ देवधवन गीत तोरो नाम प्यारा संगीत विक्रम कोलाचंद की आवाज़ में धोती पोती पगड़ी चला एक साथ सुना है गीत तो चला दी सद्दी के नाम किरण जी के नाम देवी के नाम जतुना के नाम हाय जतुना जतुना की हाय बोलाता टिकटॉक पेज पर हेलो हेलो दी गीत हो रोखातिर हेलो किरण गीत हो रोखातिर और जितना कोई हमने की सुनाता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई हमने की टिकटॉक पेज पर दिखा था तई पेज शेयर कर और ताकि ढेर कोई हमने की सकी देखे और सुने अनिता पर तो बह गीत और खातिर वैष्णव ननकू सुनीता सुकन प्रतिमा बहादुर जतोना गीत हो नाम धोती पोती पगरी आश एम और आश एम के गीत पसंद बात है गीत तोरो नाम।

गरीबी से खुजबा निकले के तय के गो रास्ता बा वह शिक्षा के रास्ता। मॉरिस में सब कोई के चेहरा पढ़ा लिखल रहे के पढ़ा लिखल रब त कोई तो रह नहीं सकी ठगे कोई तो रह नहीं सकी कुछ नहीं करे। त पढ़े लिखे के चेहला भैया कहे कि दुनिया जो न पढ़े लिखे के दुनिया है और ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति बनब ते तोहर खातिर अच्छा बा आगे आने वाला पीढ़ी के लिए भी अच्छा बा। देखिए जो घर में माँ बाप जो पढ़ल लिखल है तो उनके लड़का लोग भी पढ़ल लिखल बा। नया मौके कल मॉरिस में ढेर जो माँ बाप लोग लोरिया निकले रहन से वो लोग के लड़का भी स्वीप करेला एक जीते है लड़का लोग भी लोरिया निकाले। हम इन्हीं बोलते हैं कि जो लड़का के माँ बाप लोरिया नहीं निकल पाते लड़का लोरिया नहीं निकाले रहन से पर जो बुद्धिमान जो इंटेलिजेंट लोग रहेला तो लोग अपन लड़का के छोटा से कैसे को माँ बाप हो बैसे बा। तो जसीला मोहताज सबको लड़का के कहे कि घर में माँ बाप लोग सिखावा था लेकुल में तो लड़का सीखत भी बा पर माँ बाप जितना बतावेला लेकुल में तो दोनों मिल के लड़का ज़्यादा इंटेलिजेंट होला। अब जो घर में माँ बाप नहीं पढ़ल बा तो एगो लड़का जब देखो करके आए घरे पर माँ बाप की बताए तो माँ बाप नहीं सकी कहू से करे ना पर माँ बाप जो पढ़ल लिखल रही है घर को घर में माँ बाप दोनों देखे के लग बा तो लड़का लोग चाहे फर्स्ट से लेके एच एस सी या डिग्री लेकर अपन को देवुआ नहीं सीखे ना माँ बाप के बोले कि माँ है देवुआ हम नहीं जानते हैं कि पिताजी है देवुआ हम नहीं जानते तो माँ बाप सकेला लड़का लोग के बताए। इस खातिर बस शिक्षा जो है सब कोई के जहाँ ग्रहण करे के मंत्री की ओर से हमने की प्रधानमंत्री की ओर से हमने की शिक्षा के मंत्री की ओर से सब प्रकार की सुविधा सब प्रकार के लाभ अवतार दिवल जाता वो चाहे प्रीमियर हो सेकेंडे हो तैसे हो कि तेसरे जो आजकल फ्री है फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहाँ मिली संदेश जहाँ पर लड़का लोग के फ्री यूनिवर्सिटी में मिला था पढ़े के। तो ये खातिर बोला सर पढ़ा लिखल चेहरा रहे के बहुत जरूरी है पढ़ा लिखल नहीं रह तो आदमी तोहरा क्यों नहीं करी आदमी तोहरा ठग दे। दुनिया में बड़िए मोहे आदमी बा अच्छा आदमी भी बा पर आजकल देखा रहे ढेर मोहे वो आदमी लोग बा छोटा छोटा बात में लोग आदमी के नीचा दिखावेलन सर और आदमी के मजाक उड़ावेलन सर तो ये बहुत बुरी बात है। ये खातिर बोला सर कि शिक्षा सब कोई के चेहरा शिक्षित रह के शिक्षित रह पढ़ा लिखल रह तोहरा सब कोई गदानी तोहरा सब कोई तोहर मान करी। ऐसे में चला सुनब जाए अगला गीत भोजपुरी बजावा जो बॉइज गीत गैले हवन एगो फटफटवा किन देगे मोरा जा गीतवा चलावती से खास हम खास आशा जानू खातिर ओके मामा कुमारी फिर शुभम फिर दीदी आरती जीजाजी और सब जानू परिवार के लिए एगो फटफटवा

0: कमल कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
1: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour un pot d'étiquette chacun pour un Helicopter Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, restez à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé votre compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
2: सुनते लोग आजकल के लेखा लोग बहुत थितर और ढीठ हो जाते हैं सर, और छोटा में तो माँ बाप के पीछे पीछे रहे लन सर, पर जैसे लेखा लोग कॉलेज जाए लगे लन सर, माँ बाप से लिखिला सर लोग दूर हो ले जा लन सर, और माँ बाप को बात बताया तो लेखा लोग बड़ी फ्रौते करेला मुँह चलावे लन सर, और लेखा लोग जब कॉलेज जा रहा था ढेर लेखा लोग दिखिला सर बड़ी तेजी माँ बाप के नहीं सुने लन सर, खाली संगतिया की बात सुने सोच लन सर, संगतिया लोग के भगवान है, पर लोग भूला जा लन सर कि संगतिया लोग खाली सुख में साथ देवेला, दुख में कोई साथ नहीं देवला माँ बाप के छोड़ा के कहते लड़का लोग के चेहरा सिखाए के कि माँ बाप के आदर सत्कार करके क्योंकि संगतिया बलाइन पे कुछ मिल जा। हेलो जी नमस्ते।
3: हेलो नमस्ते जी,
2: के हवा जा
3: श्रीमती,
2: कहाँ से?
3: चुलिया से।
2: तो हर स्वागत बा श्रीमती, बोला
3: आईगो गीत डाल दिया।
2: कौन गीत?
3: बेलेला बेलेला
2: बेलेला बेलेला
3: बेलेला
2: बेलेला की दासपुरी बेलेला के
3: दासपुरी बेलेला
2: दासपुरिया पकाई बतंगे बोलिए आओ तो हाँ, लगे
3: काहे नहीं ए और खाती विदा कर पुस्ते कर देव लापुस में
2: ते लापुस में तो कहां फैक्टर खा ली
3: नहीं नहीं नहीं तो रान के दी
2: एता
3: नाम डाल दे बुना
2: आले नाम में डाल दिया जोड़ी से
3: और जी डाल दिया सब मोहिश परिवार की तरफ से और चंद्रमुनि
2: और उनके भाई मोहिश जो अध्यापक रहल अब कहां रहते रहते
3: ब्यास ब्यास
2: ब्यास अभी कहां कहां वन करे
3: अभी तक

0: घर पर हूँ।
1: हाँ रिट्रीट हो गल बा ना।
0: हाँ रिट्रीट हो गल बा।
1: अब जाला घूमे में थोड़ा सा।
0: अभी तो टेलीविजन में गीत गावा था, चमका था गीत।
1: गीत गावे मुकेश के सब गीत गावेला।
0: सब मुकेश के गीत। हाँ सब मुकेश के।
1: तू गावे, तू भी गावेला थोड़ा बहुत?
0: नहीं भाई नहीं।
1: एक बहुत गादम नहीं खाते?
0: नहीं नहीं नहीं।
1: अरे गीत सब परिवार खाते?
0: हाँ, डाल दिया।
1: आले बहुत धन्यवाद और ढेर कोई खुशी रहेला भोजपुर का प्रोग्राम कर में ढेर वाना बात करेला सब कहानी भी रहेला और शिक्षाप्रद बातें भी होला ज्ञान के भंडार भी होला तो ढेर कुछ सीखेला सर गीत भी मांगेला सर ढेर कुछ सजा के लाया सर रिसर्च करके ये प्रोग्राम के दिलचस्प बनाए खातिर भोजपुर का जुन चल से लेकर दिमाग से रात के 9 से 11 बजे लिए और संगते लाइन पे राजन लक्ष्मण जी लाफलोवा से। हेलो राजन जी नमस्ते। हम ठीक हैं तो राजू धे जोर बा कमती कर दे भैया प्लीज। जब भी टेलीफोन हाँ जब भी टेलीफोन एक बार राजू कमती कर दिया वरना उनकी कान फटी
2: है। अब ठीक बा?
1: अब ठीक बा बोला राजन भैया।
2: हमारे लिए एक गाना डाल देना।
1: कौन की था?
2: सुमिता नानकू साजन के देवल सारी।
1: साजन के देवल सारी फट गईली ना।
2: बिल्कुल
1: रात के 11 बजे ले राजन लक्ष्मण जिला फ्लोरा से। शालिनी हीरो से वन और पति विशाल को दुगो बेटी और सब हीरो परिवार के नाम भी गीत जाता बहुत ही प्यारा सन गाना है। सुंदर परी चली गीत एक बात चली गीत भाई लक्ष्मण की। अनीता फ्रीकॉन फ्लैग से। अनीता जी नमस्ते।
3: नमस्ते प्रताप जी,
1: कैसे समाचार?
3: आप कैसे हो?
1: हम ठीक हैं, तू कैसे हो?
3: मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी बारिश हुई है आज ठंडी हवा बह रही है।
1: ठंडा है गबा फजीर के 6 बज के आधा अंधार के लगवा बाप हम बताई है ले हवा बिस्तर में लेके लोग जाते तो कैसे अंधार में बीस लोग का की नहीं हाँ तो लेके लोग आप पीछे को बना
3: तो हमरो दुगो लड़का रहल छोटा छोटा रहल सब सारी उगल तब लेसों ले वाता रहल सब बिस्वा देखा था नहीं कब हमारे लड़का आए कब हमारे लड़का
1: हमें को बात बोला था राम फजीर के मालिक के जरा बिस्तर थोड़ी 6 बजे बिस्तर में झलका था। अब हम सोचते है कौन सी पुपे था का कोई सुना न गे हम सुनते कौन सी दुगो कोई पुपे छोड़ के जब भीड़ी जाते लुत्ता में से दिशा के भीड़े बिली तो म्याओ म्याओ कदम जो कहते डर के मारे बगली नहीं तो बीजा बैठ गए अंधरवा में जब चिबुआ मारा था अंकुआ में तो अंकुआ झलका था। अब दुगो बिली हम बोलते दुगो पुपेत को छोड़ के झलका
3: बहुत अच्छा लगा तुम्हारा लोग बहुत अच्छा लगेला।
1: हाँ यार बोला
3: था अच्छा लगेला तो ठंडा में इसमें हो जाना लिविया में।
1: हाँ तो लिविया में तो फजीत के हम तो बोले रे 5 बजे उठ जाएगा सर जब रोटी आने अब रोटी आने बता चाव बनाए के अब ले क्या लोग के जाके बीच में छोड़ हमने की तैयार होके कॉलेज जाके काम करे के पास ही नहीं है
3: हमारा तो फिनिश हो गल ना माँ हमारे ड्यूटी फिनिश हो गल लड़का लोग अब शादी कर
1: तो हर लास्ट जो रिट्रीट था यानी कि अवकाश पा ले लिया हुआ।
3: हाँ हाँ तो हम खूबे उतनी भाई जी
1: सैक्रिफाइस है ना लड़का लोग
3: रोटी चाहे ना खोजे के रोज लड़का की दाढ़ी की रोटी नहीं मिले ला बुलाऊं में रोटी नहीं मिले
1: आज तो कहाँ जाला रोटी आने
3: हमारे लगे तो अभी मिलेला बुटीक में सब मिलेला बाकी आगे जब लड़का लोग निकोल तब बहुत दुख होता
1: तिल की रोटी मिलेला जो रोटी में तिल रहे चोरी चोरी रहेला
3: सब प्रकार के रोटी मिलेला है जाता स्पो सब बा ना
1: हाँ भिरी में
3: हाँ भिरी में स्पो बा हाउ जा कास्काबेल जाए बा तो हाउ जा विनेस बा अभी
1: हर सुविधा मिलेगा आजकल अनिता बोला तो अगला गीत के खातिर कौन गीत मांगने हुआ
3: हम सब परिवार के लिए आपके लिए आपके सभी टीम के लिए आपको बोनक्वाज आप काम करते हुआ
1: 11 बजे ले

0: काम करते रहा बोंकू काज आपको
1: हम कहते प्रार्थना करिए अभी काफ हजीर के दुगु बिलियन के नहीं ताकि विस्तो में तल बोल कोई पुपेट छोड़ के चल
0: चोरा के सबको सचमुच के दुगु पुपेट मिल जाए
1: है ना सुना ना तो हम दिखाते नहीं मन से तब खुशी रही ना जानवर से खेले गीते ई तो बिलियन के देखे म्याओ कर जो कहते हम तो लिखे तो ढग से कर दिला
0: अभी डर भी लगे ना हो का बोल बा
1: तो बिल सुना ना बिलिया जे
0: एगो बांदर आर हर फजीरी हमर लगी बनान रहल बहरा में लताब में अब खाता
1: हिरगा भीतरे
0: हमर पति जो है ना भगा दिला हम तो हमर पति के बोलत हैं हम तो दरवाजा बंद के भाग जात
1: नहीं उ लोग नोचे ला ना बांदर लोग नोचे ला ना
0: हां तो डर लगिला ना सगरु सगरु
1: हां हां सगरु जालंस का बुझ फिर कुओं में रहला फिर कुओं में टंग अब सकिन से तो चेना मिनिस्टर की कुलचे का जनाए के लोग आकर मास के चल जाए
0: ढेर दिन से बाद
1: कई आवेला की रोज क्या आवेला
0: नहीं कबो कबो आवेला कबो
1: नहीं तो शक करिए घर में कबो हिल जाए तो
0: का लोग बा
1: हां तो हम के कहे गोमित दे सिर कर तर अंधार का तक बस दुगो करिया बिल्ली अब अंधार में ना बिल्ली के गो
0: बहुत दुख के बात
1: ना बिल्ली के ना बिल्ली के मुंह लोकता ना कान लोकता है दुगों का मुझे हवा में दुगों कैसे से खड़ा बा अब तो डर गई थी
0: तू डर बात अलग का लोग काम को चुका
1: था डरी नहीं तो अंधेरा में खाली चिबा अंकुआ तो अंकुआ कुलो ये चीन जोड़ी लोकता हमें दुगों पुपेटे के चल देती गाड़ी
0: ओके बहुत अच्छी लगी आपसे बात करते हुए
1: बहुत बहुत धन्यवाद आता होला बिस्तर में जेबा फजी के देखिया आंखों चमकी था नहीं सोचा भूत कुछ बाप रे भूत है कार दुगो आंखलाहो में लोग था ये भूत नहीं है बिल्ली लोग है लोग बिस्तर के इच्छा में बैठा लोग उनसे हम कहाँ जानते भैया हम भीरी गए थे बिल्ली म्याँ उनसे कर हम तो लुथ में छटक चगरी बन गरी शोभा जी क्या चुपो उनसे चला शोभा से मिलब जाए हेलो शोभा जी नमस्ते हेलो कैसे समाचार
2: ठीक है आप ठीक हैं
1: बिल्कुल ठीक और आज के दिन कैसे बीता हेलो
2: ठीक हूँ
1: हाँ दिन अच्छी तरह से बीता ना ढेर दिन के बाद सुने का तो किशा कर रहा कहाँ हमने से
2: पानी रहा
1: हाँ हाँ वो खाते उतना नहीं निकला था वो
2: गर्म गर्म ठंडा हुआ था
1: हाँ तो गर्म गर्म चाय तो कारी पकाई के गर्म गर्म चाय
2: नहीं
1: आप बीचे हुआ गरम करे लगी अभी कहते हैं सगरो मुजोन हिलाता दिन के वक्त घर में मुजोन ठंडा से मुजोन लोग खिलाता भीतरे
2: ठंडा में नहीं काम करवा तो वो अपने ठंडा भाग जाएगा
1: नहीं फजर की जब उठ जाए अपन हाथ पानी में डाल देगा तो ठंडा सब भाग
2: फजर की जब उठिला जिस पोला
1: ठंडे में नहा ले कबू
2: रोज
1: अब चो हम नहीं यहाँ के चाहे गर्म पानी थे कोई बस की ठंडाऊ की रहता आजकल ना
2: ठंडाऊ भाग
1: जाला
2: पानी में धूप रहता सीनी
1: हाँ पंजाब में है गए भाई कुत्ता को रेख हाँ जी अरे बोले तो कौन गीत सुनबा बोले तो शोभा
2: लाली नहीं मिलेला
1: हाँ बोला कौन गीत सुनबा
2: हाँ गीत डाल दिया ढेर दिन से नहीं बजलवा फटफटवा उड़ जाला कस के पकड़ ले चाची सब कोई खातिन जितना कोई सुनता
1: है फटफटवा
2: के लिए जन्म रात के काम करो जितना कोई फटफटवा पर जाता सब
1: अभी रतवा के फटफटवा में जाते वंश बाप रे बाप रात के घूम में जाते वंश फटफटवा में बोलता अरे तो की चला दिवस ओके आले बाबा बहुत धन्यवाद अनिकेत सुनने कर ला शुभ रात्रि और कुछ संगत वाला लाइन पे हेलो हेलो
3: हेलो प्रताप जी नमस्ते
1: जी के हवा जा
3: हम मनु है रोजवेर से
1: हाँ मनु बोला
3: हम तो लाइन नहीं खोले हो क्या नौ बजे
1: नहीं नहीं लाइन खोलने से देखो की बचाता ना वो खाते
3: हाँ, हाँ, क्या करवा ये तो हमने के बोलचाल हजे जस्ती सबले बारा है ना
1: ये हमने के आनंद है ना सब कोई बच्चा प्यार से और ढेर मना स्मृति का ही रास्ता कैसे कैसे था ये प्रोग्राम में ढेर कुछ सीखी रास्ता मिले ला सीखे के
3: हाँ सच्चे कैसे बोल रहा एक दिन भी जाएगा माटी का मोर जग में रह जाएगा प्यारे तेरे बोल
1: एक दिन भी

0: जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक गीता जुड़ी के रखबा मुकेश है।
1: हाँ हमें बताए गीता सच है ना।
0: हाँ जी तो बात सच है।
1: नहीं हम सब गीता सब कोई ना हमने के बात बताए।
0: हाँ नीमन काम कर बे

0: भी कह कही मार रहल दासी मंथरा उतना पालाप करके राम को बनवास भी जाकर दिलक ऊ भी को मार रहल पर आज ले कोई के प्यार नहीं करेला ओकर करतूत खातिर बाद में पछता तब होता और राम तो चल गए बनवास
1: खून
0: खराबा वो के वहाँ दिलक वो के नापी कर दिलक
1: बाप जो हमने आगे के दुनिया लकड़ी में पकावा है अठी है सब दुनिया में रही सर जस्ती निमन से सुख
0: अभी फजी के घर से निकलबा शाम के काजी घर में हिलबा की नहीं
1: नहीं नहीं सिया होवा हवे
0: बोल कौन कहते आदमी से अभी आदमी छोटा छोटा बात में गुस्सा हो जाता
1: हां गुस्सा जाता तो जाने ला पूजा पाठ करब त भगवान तो हर गुस्सा तनी दूर करी
0: अभी कमती आदमी पूजा पाठ में भाई खाती ना
1: हां सच्चे के बोला तो पूजा करब बाबा हे भगवान हमके क्रोध बा हमके कुमाजे हमके निकाल दे है
0: सब बुद्धि द ज्ञान द क्रोध के ठंडा कर हां
1: ज्ञान द हमके बुद्धि द काहे हमके बुद्धि नहीं बा ई सब छला भगवान से
0: मांगे के
1: हां तब निमन से सब त सगवा कुमाजे कोई को बतो तोरा बोली ऊ सतो बात बोली त तोरा तोह लिए ई बतवा डाला अच्छा बा छोड़ दो ऐसे हां तब हाय हम एगो गीत मांगा था हमर छोटा बाबू के अभी नौ महीना हो सिया
0: हाँ
1: सिया गंगा और हमार नाती है वन फ्लैक रहेला वो मिहान मिहान
0: कुछ एगो ललना चला के की को बर्थडे गीत हैप्पी बर्थडे एगो हैप्पी बर्थडे की गीत
1: देखा तू दो नो मे को नो एगो गीत
0: आली आली चला दो
1: हाँ दादा आली बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद तुम मुझे टेलीफोन कर लो ओके जी ओके
1: बाबा कहे बोला सुने कर अब सोचो जाए ला सत आज घरे है आतान कर थोड़ा कब से
0: आज दुकान से मिनर बची आई की
1: अरे शुभ दिन बहुत धन्यवाद आपको
0: शुभ रात्रि ओके
1: सब ले तोहरो परिवार के सब लइका लोग के
0: आली बाय आली बाय राजन लक्ष्मण जी गीत मांगने सुनतान को के साजन के लेवल सारी और फट आर को संग फटफटवा मांगलक बाग टू बाग दू गाना सुना साजन की सारी और फटफटवा

0: sont avec Mauritius Helicopter Limited, puis ouvrir la chance des grands gagnants pour un pot d'étiquette Sakane pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la sens, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
1: हमने में से ढेर कोई कुसिरेला सिनेमा घर जाए के भरा पर्दा पर फिल्म देखे के तो ये महीना मई 2026 के अंत में ये दो फिल्म रिलीज हो के बा एगो कॉमेडी मूवी है हाउसफुल 5। फिल्म के कलाकार है अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बावजा, नरगिस वाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पालेकर, चंकी पांडे, जॉनी लवर, श्रेयस तलपड़ी, फरदीन खान और चित्रंगदा सिंह। फरदीन खान पर कमबैक करता है बॉलीवुड की दुनिया में। नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ भी रही। ईगो एक्शन, ईगो कॉमेडी मूवी रही, फुल कॉमेडी मूवी हाउसफुल 5 जो मई महीना के अंत में रिलीज हो के बा। एक बाद और एगो फिल्म आए एक्शन मूवी, और टाइटल है वॉर 2। ये फिल्म के कलाकार एगो एक्शन मूवी है। एक में देखबा ऋतिक रोशन, रामा राव जी आर को, गारा आडवाणी और आशुतोष राणा। ये दो फिल्म रिलीज मई महीना के अंत में फिल्म जरूर देखिया जा। एक हो एक्शन मूवी वॉर 2, एक कॉमेडी मूवी हाउसफुल 5। तो आशा करते हैं कि हाउसफुल 5 जो ना बड़ा ज़बरदस्त धमाका करी, क्या कि हमने खुशियाँ से हंसी खुशी के फिल्म देखे के तो स्ट्रेस के दूर भगाए करते ज़रूर देखिया हाउसफुल 5 मई महीने के अंत में। अभी कहते रात के 10 बज के आधा हुआ था और सुन अब जाएगो खूबसूरत गीत उमेश दोहू की आवाज़ में, जिले जिले जिले जिले, बहुत ही प्यारा सन गाना है। गीत चली किशन गोरियाप के नाम और अक्षय शर्मा खातिर जो नमनी के साथ देवतवन उदय धनी राम की बज बसेवन। राज मन्ना जी हेलो जी नमस्ते, गीत तुहर पत्नी तुहर बेटी दामाद और सब परिवार खातिर। जिमी दुखिया है गीत तुहरों खातिर तुहर सब परिवार के नाम। सुदेश माफ करिए सुदेश जसवा और माँ राजकुमारी और सब जसवा परिवार के नाम। जिमी दुखिया है गीत और खातिर और सब दुखिया परिवार के नाम। है गीत चली सब संगत्यालों के नाम जो न बेशक हमने की साथ देव तनी समय रात के बखत हमने की सुना तो रात के 11 बजे रे पूरा रात ले रेडियो के साथ जुड़ल रह बेर कोई के नींद नहीं लगता तो कोई बात नहीं, नींद नहीं लगता तो हमने की साथ दा जिले जिले जिले जिले। बहुत ही प्यारा संगीत उमेश दोहू की आवाज़ में।

अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर अच्छा बोले रहा, लेट्स ऑल ड्रिंक बी मैरी, लेट्स ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी शॉल डाई एंड कोट। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी लेखक रहा बोला कि खाला पीले जिले भैया जिंदगी में काबा, जिंदगी में कुछ नहीं बा कह के एक दिन मरी के बा। ये बात अच्छा बोले रहा ना, तो ये गीत हाई बोलता जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले रे, काल के कौन भरोसा बा भैया, अरे चोला के ठिकाने बा जोन बात आज ही जिला अभी जिला, नाचा गावो हमने के संगे संगे। रात के 10:36 हुआ था। अब थोड़ा सुन बात करब सब मिर्ची के बारे में। मिर्ची के हमने भोजपुर में पीमा बोला सर, तो ढेर प्रकार के पीमा बा, चिपीमा गोपीमा पीमा कारी। अब ढेर कोई सकल नहीं जानते तो पीमा कारी के खोजब और तीता सब दूर करे के, ढेर कोई सब पीमा कारी के तरकारी खाए के, तब पीमा कारी जब कटब तो कर सब बिया धो दिया, सब बिया जब तू धो देब धो के जब ओके तरब तो तुहर पीमा कारी तन को तीता नहीं रही, सकब ओके रोची संगे खाए पराठा संगे नान संगे खाए। तो ईगो हम एक एक्सपीरियंस कल यूट्यूब पर देखे रही कि कैसे तीता पीमा के तीता दूर खड़े काटे को सब बिया छह निकाल दे के और धो लिया पीमा के, नमक डाल के प्याज डाल के तार दिया, मजा से खेबा उस सकबा धो लिए बार पीमा खा ली कुछ पर ढेर कोई कुछ तीता मजा तीता पीमा खाए के पीमा का आगे था तब बिया।

সমিতি ছাড়া পাকাই কি ই জনদমি কি সুফম হোলা ওকে মন করতা পি মাঙ্গা কাহি খাই কি তা সব বিয়া নিকাল কে ধো কে তরিয়া তা মজা সে খাইয়া সুফম নই হই আব চিপিম চিপিম কে কোনচি হোলা চিপিম কে মাজা বাকু বনিলা পিম ওয়ে কে ভি পিম রুস কে ভি বনিলা ওর এগো হা গো পিম উ তা সব মে সে ভি হোলা চটনি মে তরকারি মে না और मिर्ची जो पीमा है भारतीय भोजन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकर उपयोग खाना के स्वाद बढ़ाए में तीखापन और सुगंध लाए खातिर ढेर प्ला में एक इस्तेमाल करी रहा सा और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पीमा में विटामिन ए बा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बी बा ये शरीर के रोग के दूर रखेला पाचन क्रिया डाइजेशन के बेहतर बनावेला सर्दी जुकाम से हमनी के दूर रखेला और शरीर में ऊर्जा और गर्मी पैदा करेला खेती और व्यापार में भी महत्व देवेला। भारत में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर होला मॉरिशस में भी खूब लौटाला पीमा यहाँ पर ही और मॉरिशस हर प्रकार के पीमा खुशी रहेला खाए के बाजार में जेबत सातों दिन दोहरा मिली पीमा चिपीमा गो पीमा पीमा का आगे सब कहते पीमा बा एक औषधि के रूप में भी प्रयोग होला। तो जाना था कि पीमा कुछ आयुर्वेद और घरेलू उपचार में मिर्च के प्रयोग होला जी हाँ सीमित मात्रा में और सेवन शरीर के लिए उपयोगी है। तो भूलिए नहीं जो पीमा हमने खाएला सा एक से दवाई भी बनेला और पर जो नदी की सुफमो होला वो लोग सुफमो से प्रेरित होला तो लोग के नहीं चाह पीमा खाए के हाँ थोड़ा मन करी पीमा का आगे खाए के तब पीमा का आगे के और बिया धो के तरिया तब सकबा पीमा अच्छी तरह से खाई। तो चला अभी सुन अब जाएगा गाना ललिता पुनीत की गावल गीत है इंद्रासन से ढोलक मंगाई दी है गीत तो हमने चलाओ तो सब पूनम जी के नाम और सब परिवार के लिए त्रियोले से सबका कत्या परिवार के नाम सब जीरा खान परिवार खातिर सब हर को परिवार खातिर और फिर है गीत चली प्रीतम राज जी मिला के नाम आप पस्त कर पत्नी को लेकर सब परिवार खातिर और सैंटोबैन SSS कॉलेज के हमारे सब स्टूडेंट्स अध्यापक और रेक्टर के नाम भी गीत इंद्रासन से ढोलक मंगाई दी खासकर गुरुजी गंगू और मिस्टर एडू खातिर है गीत चली बीना कुपुसामी के नाम आप रहेलन मीबग और है गीत चली विश्वानी बाबूलाल के नाम लाकोजा रहेलन और है गीत चली सब संगत के नाम जो इतम की सुनता रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर जाएला।

0: इंद्रासन से ढोलक मंगाई ली गमत करे जाए खातिर का क्या बात है। और अभी एगो संगतिया भन की संगे के सुनम जा। हेलो हेलो हेलो जी हेलो बात करा
1: टेलीफोन।
0: नमस्ते जी, तो शुभ नाम
1: पु देमनन सोते पु मो मामा
0: कोमो वापेले
1: छदवीर
0: छदवीर को तो अभी ते
1: कैपी
0: मामा को वापेले
1: कविता।
0: ओके, और मम्मी से क्या कहना चाहते हो? क्यों भी जा मामा जैन जैन जोली मोप मामा जी कविता पु मामा स्वांची मिसाज
1: रोजी से ना वैसे।
0: ओके, सो मामा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मामा मामा के लिए गीत गाओगे? संतानी गीत मामा औसा मामा एक नो आलू आलू संते। हैप्पी बर्थडे टू मामा, हैप्पी बर्थडे टू मामा। मामा का नाम क्या है?
1: कविता।
0: हैप्पी बर्थडे मामा कविता, हैप्पी बर्थडे मामा कविता। ओके आले ने मतलब जो ही संते पूरी ला। ओके बेटा आले बाय बाय गुड नाइट। ये था एक छोटा सा लड़का जो अपनी मामा को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता था। ठीक है, तो हो गल पर माँ का दीदी को हैप्पी बर्थडे का गीत चला सको जोली गीत देखा गोले का माँ की कितना खुशी रहेगा। अमृता गणेश पिताओं से टेलीफोनिक कर लन और बेशक मन करता है कुछ टेलीफोनिक करे कितना सकबा टेलीफोनिक करे। लाइन खुलल बा का जगोदे विद जगो विद सैंक विद का जगोदे विद सैंक। हम एक बात बोलते हैं, जब हम एगो गीत चलाएला तो गीतवा पूरा चलाएला, अब गीतवा के बीच में टेलीफोनिक करबा तो जिपसिल बा गीतवा काट के फोन लेके कहे कि ढेर कोई गीतवा बैठ के आप खुशी करता और आनंद ले होता। इस खातिर हम माफ़ी चाहते हैं, पर हमने के यहाँ पर एगो नियम है, एगो डिसिप्लिन है, जब एगो गीत चली तो गीतवा चला पूरा चलाए के गीतवा जब चला दे अब सर तो गीतवा के अंत में तब सकब टेलीफोन नहीं, तब सकब अभी कैसे एगो तापी पर बचाते तो अभी सकब टेलीफोन नहीं कहे कि अभी गीत नहीं चलाता। ठीक बा, समझदार की इशारा काफ़ी बा। और कुछ संगत वाला लाइन पे। हेलो
2: नमस्ते नमस्ते
0: नमस्ते भाई जी, तोहर शुभ नाम।
2: हम अच्छा हूँ, मैं दनपत हूँ वाकवा से।
0: हाँ दनपत चाचा, तोहर स्वागत बा, बोला।
2: हमारे देखा था देश में हमने जन्म ले लिया सर, जब जन्म लेके फिर से हमने की उम्मीद हो गल हमारी उम्मीद हमारे उम्मीद हो गल बा चार कोड़ी

0: 2.
1: 90.
0: अब 90 हो गया वा।
1: हाँ
0: तो क्या अभी हम लोग जीवन फिर से जन्म ले रहे सर, तो हम लोग के लड़का के चारा सूची के हम लोग के लड़का के बोले बोले संगीत डलिया हम लोग के बाप माँ जो जन्म दिले बा लेकिन फीस वो अथी में कुआ में नहीं डाल।
1: हाँ जी
0: बाप माँ के देखा
1: बाप माँ के दिल नहीं दुखाई के क्या माँ बाप हो तो अपनी के बागबान है ना।
0: बहुत बहुत
1: माँ बाप जितना करेला कोई नहीं करेला बाबू, जितना कोई माँ बाप करेला
0: बोले थे थोड़ा मॉरिशस में जितना पूजा हुआ था हम के लड़का के चल आगे आगे लागे और अभी से चला शुरू नहीं बोलियो नहीं पीता पीता तब ले चल रहा का हो जल। अभी देखो लड़का लोग बड़ा होता मगर इतनी लोग के बड़ा आदमी के अपन बड़ा बुजुर्ग के ऐसे कुटो से अपन चाकू से मार दे होते हैं।
1: हाँ जी मामा चाकून दुनिया
0: हमारे ये वो गीत बाब एक बहन ने वो गीत ऐसे बोला ना एक स्कूल कॉलेज में तब बोला माँ बाप को
1: माँ बाप की गीत को खोजे तो वो
0: बेटी बा दोनों बाहर हो अब जन चीज हो बाहर में अब वो लोग लौट के हो जाता आई के अब देखा तो कैसन जमाना चल रहा बा
1: दुनिया
0: डाल ली हमारे खाती भैया।
1: हाँ माँ बाप पर
0: हाँ माँ बाप पर वही जो कॉलेज में एक अच्छी बेटी जो बेटी साथ गावेला बोला माँ बाप के दुख नहीं दिया
1: एगो फिल्म एगो फिल्म के गीत मांगा था वह फिल्म के
0: नहीं जी बहनिया अपने के बहन वही गातवा बोलते हैं जी अच्छा फिल्म की नहीं है वो
1: एगो
0: भोजपुरी
1: के गीत आल चला दियो अब सर।
0: अच्छा
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमने की फोन कर ला चाह और अब रतन उगैली हवन नमवा बोलबा के गेलक बत हमने की फासिरी खोज के ला पा गई में ते ढेर गीत बा पर मां पर एगो गीत ओके मां बाप भगवान है गीत सब से चला यहाँ तक जैसे कि भाई जी बोला था कि लड़का लोग जब बड़ा होला तो बुझाला लोग के माँ बाप पोछ उछाल और माँ बाप के जाके कुओं में छोड़ देवे लन सर भाई जी को विनती करा था बोला था कि माँ बाप के कुओं में नहीं डाले के कहे कि माँ बाप के दिल तरसेला तो लड़का लोगों से करेला तो क्या करबा पर कभी कभी पति पति दोनों काम कर लड़का लोग अब लोगों भी असहला तो देखे लन सर कि जगह कबो समय नहीं रहला था जाके कुओं में छोड़ देवे लन सबका पर अपन विचार बा पर कहा लड़का लोग का बोल लड़का लोग बड़ा तो सब कुछ भुला जा लन सर माँ बाप कितना परिश्रम से मेहनत से लड़का लोग के जन्म दिलक बड़ा करलक परवरिश करलक पर लड़का लोग जैसे शादी कर लन सर ढेर कोई माँ बाप की भुला चला माँ बाप की सेवा करला भी एगो पुण्य के काम है। तू खाए तू खातिर तू कत में कितना भी पूजा पाठ कर कितना भी दान पुण्य कर अगर माँ बाप के तिरस्कार कर ला माँ बाप की दिल दुखेला तो फिर नहीं का तोहरा बोला भी कैसे जस्ती तू तो हमसे समझदार हुआ पढ़ा लिखा लोग हो जा कैसे अपन सास ससुर की सेवा कर रहा था कहे नहीं माँ बाप की सेवा होला जब कोई छोकरी शादी करके आवेला तो दिखी रहा थे छोकरी लोग खाली अपन माँ बाप के मान देवलन सा सास ससुर की गिनती नहीं अब छोकराओ अपन पत्नी की बात सुन के माँ बाप की तिरस्कार खाली सास ससुर की पूजा कर रहा था तोहर माँ बाप ओकर मान सम्मान नहीं बा दोनों के मान सम्मान बा माँ बाप सास ससुर दोनों के ध्यान सेवा करे के अभी फेत मामा हुआ था है लाफेत जी माँ के तो सब कोई जाए देर कोई अपन माँ लगे या अपन सास लगे जाए नमस्ते बोले अगर रोज के अपन माँ बाप अपन सास ससुर के नमस्ते बोलबा तो यही काफ़ी है माँ बाप के कादू नहीं चहला माँ बाप के यहाँ सब कुछ बा माँ बाप के चहला अपन लड़का लोग के प्यार अपन लड़का लोग के अपना अपन एगो माँ बाप के सबसे बड़ा सुख है जब ओकर लड़का को रोक के सामने बा खिलाता नाचता गावता और माँ बाप खुशी रह सब लड़का संगे रही बेटा पतु बेटी नाती हर माँ बाप के सपना है पर आजकल घर घर में दिख बा महाभारत वो कर से नहीं बतियाला वो कर मुन ने मंग कर रहा देखे कि कभी कभी छोटा छोटा बात कभी बड़ा आदमी हो लोग कभी वो लोग इधर उधर बतियालन सर तब बड़ा आदमी लोग से मांग कर अब जाके जानी ला सके तेलो के रेसिपी लड़का लिखा हो जाता

समय के साथ, पर कबो भी एगो बात सुन के बतवा के ऊपर चढ़ा के नहीं बचे या कबो एगो पतो के बात लेके दूसर पतो के बोल देवेला सा, तो जीवन भर परिवार टूट जाला। अब बिलसे बिलसे में तो जानेला कैसे होला, सगरो नहीं बावसे, पर कबो कबो सास लोग झगड़ा डाल देवेला, हम देख ले हैं। छोटा छोटा बात लेके हाई बहू के बात लेके हाउ बहू के बात कान में डाल देला कि हाउ बहू के कान बात लेके हाई बहू के कान में डाल तो जीवन फिनिश। तो ये सब नहीं चाहेला, चाहेला नहीं, मन से जिए के उम्र ढलते जाता जाए के समय आवाता, तो ऐसा काम नहीं करिए कि तोहर मरला के बाद भी आदमा तोहरा गाड़ी दी। तो खातिर बैला से जबले जीब अपन जीब संभाल के बात करे के सोचे का बचावत हवा, केकर से बचावत और कैसे बचावत हवा। हई मुँह से हमनी के चुनह, हमनी के लोग प्रशंसा करेला, हई मुँह खातिर हमनी पर ढेर प्रॉब्लम होला। तो हई जन मुँह एक संभाल के बात करे, सच्चे बड़ा आदमी लोग से बोलते हैं माफ़ी चाहते हैं, पर ढेर बड़ा आदमी लोग दिखिला से घर में कबो कबो झगड़ा डाल देवेलन से छोटा छोटा बात लेके। हम नहीं बोलते कि हमने की देखो में हमियों के नौजवानों की देखो, पर ढेर घर में सास लोग बहू बहू में झगड़ा डाल देवेलन से और बैठ के तमाशा दिखेलन से। हम तो चाहेला सब कोई एक साथ रही अच्छी तरह से, माँ बाप बेटा बहू चीज़ों फोन लोग सास ससुर सब कोई, पर ढेर कोई ताना दे वेला, ताना दे के रिश्ता तोड़ दे वेलन सब। चार दिन की जिंदगी में भैया अच्छा से जी लिया, मुँह संभाल के बात करिए। तो चला ऐसे में सुनब जाइए चार दिन की जिंदगी गिरीश रूपचंद की आवाज़ में।

और जाते जाते सुना जाई सूचना महतवा कैलाश नाथ सनातन धर्मपंथेर एसोसिएशन जोन शिवालालीन महतवा में स्थित बा सबको के आमंत्रण देवता अधिक मास पूजा में भाग लेके पूजा शुरू हो गल बा रविवार 17 मई से और पूजा एक महीना ले जाए सोमवार 15 जून ले मई से लेके जून ले पूजा हो और पूजा जुन है चली 15 जून ने रोज के सांझ के 6 बजे का पहले दिन रहल कलश स्थापना कथा और आरती फिर बाद में पूजा विधि 6:30 से रात के 8:30 फिर लिंदी 15 जून से रोज की चली पूजा सांझ के 6 बजे से रात के 9 बजे ले और सोमवार 15 जून को पूर्णाहम होती और महाप्रसाद की वितरण हुई। ये पूजा करियन पंडित आचार्य लवकुश त्रिपाठी जी त सबको आमंत्रित बा पूजा में भाग लेके पूजा आधिक मास पूजा होता मोहतबा कैलाशनाथ सनातन धर्म मंदिर एसोसिएशन शिवालालीन मोहतबा में वहाँ के कैलाशनाथ मंदिर में संडे 17 मई से लेके लिंदी 15 जून तक तो एक महीने ने पूजा चली। पूजा रोज के होई सांझ के 6 बजे से 9 बजे ले और 15 जून सोमवार 15 जून के पूर्ण होती हुई पूजा पूरा हुई महाप्रसाद मिली व्यासवाचक होयन आचार्य लवकुश त्रिपाठी जी। तभी सुना तला एक सूचना हई गीत के संगे और हई सूचना के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। हमने की तलों की मुलाकात हुई कल बीफे के सांझ के 4 से 5 बजे दिल से मिले दिल प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन पर और एक मुलाकात तक हमने की इजाज़त दा और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। फिर से एक बार आ गई हूँ मैं आप लोगों का साथ देने के लिए इन यो सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए इस खूबसूरत से शो में जब मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी या मुकेश दा जैसे लीजेंड्स की आवाज़ गूंजती हैं तो दिल खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। आज की शाम उन्हीं सुनहरी आवाज़ों के नाम और ख़ासकर हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम।

दिल से हम उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना जो हम पेश कर रहे हैं आपके लिए इन योर सुनहरे पल आपको दिल से अच्छा लग रहा है। दोस्तों बिल्कुल आज हम लेकर आए हैं म्यूजिक थेरेपी, जी हाँ ओल्ड बॉलीवुड गाने की थेरेपी, क्योंकि पुराने गीत सिर्फ कानों को नमी दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए आप अपने दिल को सुकून देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अगला नगमा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। नाम प्रीति मच्छू की, ये आपका भी फेवरेट हो सकता है।

पुराने गानों की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो इस प्यारी सी शाम को और भी हसीन बनाने के लिए बस हमारा साथ यूं ही देते रहना। तो चलिए जी, जितने भी लोग फिलहाल गाड़ी चला रहे हैं, सो मिस्टर ड्राइवर साहब, गाड़ी जरा आराम से चलाना, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट गाना खासकर आपके लिए इन्हीं सुनहरे पर।

वेल दोस्तों, ये वो दौर था जब गीतों में शायरी होती थी, आवाजों में मिठास और धुनों में सुकून। आज हम लेकर आए हैं उसी खूबसूरत दौर की यादें सिर्फ आपके लिए इन योर सुनहरे पर ऑन रेडियो मॉरिशस। रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया।

जिंदगी की भागदौड़ में अगर दिल को थोड़ी सी राहत चाहिए, जिंदगी की भागदौड़ में दोस्तों अगर थोड़ी सी आपके दिल को राहत चाहिए, तो ओल्ड बॉलीवुड गाने से बेहतर कुछ नहीं होता है जिंदगी में। तो आज बस रिलैक्स कीजिए और सुरों के सफर का आप दिल से मजा ले लीजिए। पुराने गाने हमें सिखाते हैं कि असली खुशी छोटी छोटी बातों में ही होती है। एक प्यारा सा गीत, एक मुस्कान और अपनों का साथ, बस इतना ही काफी होता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए ये अगला नगमा।

चलिए जी, आज का ये खूबसूरत सफर यही पे खत्म होता है। आपका अपना सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, गिनिशा को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड नाइट जी, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।

0: चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
0: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: अरे भाई एक दिन उसका टेलीफोन आया, हाँ, कहने लगी हेलो
1: हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है आओ।
0: जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
2: मैं था,
1: वो थी,
2: मैं था,
1: तन्हाई थी।